0: अभी आप सुन रहे थे स्वर रंजनी कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः की 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों के उपरांत 6:05 पर आप अंग्रेजी समाचार सुन सकते हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण

0: के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए दो उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks yesterday, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Mr. Misri said that both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: BJP National President Nitin Naveen held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi yesterday. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details highlighting discussions on the Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with advancement taking place across every sector. Mr. Patra said, today the Bharatiya Janata Party and the NDA have been given the opportunity to serve in government in 22 states. Uttar Pradesh government has constituted two separate high-level inquiry committees to investigate the collapse of the segmental span of the under-construction bridge over the Bethwa River in Hamirpur district. The committees under the district administration and the Uttar Pradesh Bridge Corporation have begun a comprehensive investigation.

अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज़ में ये भजन, और आइए 15 कार्यक्रम में सुनते हैं एक और भजन सुरेश वाडेकर की आवाज़ में।

के साथ आज का वंदना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं चिंतन गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों पर।

बात उस समय की है जब देश गुलाम था और देश पर अंग्रेजों का शासन था। स्कूल में भी बच्चे अंग्रेजों का नाम लेते हुए डरते थे, लेकिन गोपाल नाम का बालक बहुत निडर था। एक दिन खेल खेल में एक बच्चे ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अंग्रेजों से डर नहीं लगता? गोपाल ने कहा, मैं भला उनसे क्यों डरूं? डरना तो कायरों का काम है। तभी एक दूसरा लड़का वहां पर आया और बच्चे से बोला, अरे भाई, तुमने तो प्रश्न ही गलत पूछ लिया। तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि गोपाल, क्या अंग्रेज तुमसे डरते हैं? ये सुनकर गोपाल बोला, हाँ हाँ बिल्कुल डरते हैं। इस पर वह बच्चा बोला, ये बताओ, अंग्रेज भला तुमसे कैसे डरते हैं? इस पर गोपाल बोला, अंग्रेज मुझसे ही नहीं बल्कि सबसे डरते हैं, पूरे देशवासियों से डरते हैं। तभी तो वे घोड़े पर सवार होकर हाथ में चाबुक लेकर चलते हैं और बात बात पर गरीब जनता पर चाबुक चला देते हैं। वे हमें इसलिए डराते हैं क्योंकि वास्तव में वे डरपोक हैं। यदि उन्हें हमारा डर नहीं है तो वे निर्भय होकर क्यों नहीं घूमते, हाथों में चाबुक लेकर घोड़े पर क्यों चलते हैं? ये सुनकर उसकी कक्षा के सभी लड़के गोपाल की वाहवाही करने लगे और तालियां बजाने लगे। कक्षा का एक लड़का बोला, वाह गोपाल, तुम्हारे विचार तो बहुत उच्च हैं और तुम तो बड़े ही निडर हो, तुम्हारे साथ रहकर तो हम भी निडर बन सकते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आई, ये क्या हो रहा है? कक्षा के सभी बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया स्कूल के प्रधान

अध्यापक खड़े हुए थे। मुख्य अध्यापक को देखकर सभी बच्चे सहम गए। सबने उनको प्रणाम किया और खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बेंत को मेज पर मारा तो सभी छात्र घबरा गए। सबको लगा कि आज तो गोपाल की खैर नहीं, लेकिन गोपाल उनके आगे निर्भीकता से खड़ा रहा और प्रधान अध्यापक से बोला, सर भला हम अंग्रेजों से क्यों डरे? हमारा देश और वे हमें हमारे ही देश में आकर डराए, भला ये कहां का न्याय हुआ? फिर हम अपने देश में उन गोरों से क्यों डरे? गोपाल की बात सुनकर प्रधान अध्यापक ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, शाबाश बच्चे, बड़े होकर तुम अवश्य एक दिन देश का इतिहास रचोगे, मुझे तुम पर गर्व है। जी हाँ, आपने सही समझा, ये बालक कोई और नहीं बल्कि भारतीय जन जन में स्वाधीनता की अलख जगाने वाले गोपाल कृष्ण गोखले थे।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों पर। अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम रामचरितमानस, जिसमें आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 74।

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होंठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीली झंगली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस के बालकांड का भाग 74। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: अब प्रस्तुत है समाचार। जी हाँ, सबसे पहले आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद होंगे 7 बजे हिंदी में समाचार, और 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारतदेशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेऽपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेशसचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेशव्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है। ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द
1: रीजन। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपतिभवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ति राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमारदेशः भारतस्य दक्षिणपूर्व एशियादेशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियानदेशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक सम्बन्धान् दृढयिष्यति।

0: च महत्वपूर्ण रूपेण लाभो भविष्यति।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: of our shared future.
0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षासम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः प्रवक्ता च डॉक्टर संवितपात्रावर्यः नरेन्द्रमोदीप्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, सङ्घटनात्मकविस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
4: Both sides underscored the
5: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार

0: गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरू भाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुच्चेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार ऊ मिन ऑंग क्लाइंग हेल्ड डिटेल्ड टॉक्स ऑन द एंटायर गैमट ऑफ बायलैटरल इश्यूज इन न्यू दिल्ली यस्टरडे। द डिस्कशंस कवर्ड ट्रेड, डिफेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड कल्चर अमंग अदर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। ब्रीफिंग मीडिया आफ्टर द टॉक्स, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सेड द प्राइम मिनिस्टर रीअफर्म्ड इंडिया सपोर्ट for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India and the US have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement and negotiations are now focused on a few minor issues, commas and full stops. He said that the US team is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement BTA. The talks will take place in New Delhi from today till Thursday. India's chief negotiator is Darpan Jain, additional secretary in the Department of Commerce, while the US team is led by its chief negotiator, Brendan Lynch. 5 newly appointed Supreme Court judges will take oath today. Chief Justice of India, Surya Kant, will administer the oath of office to the judges. President Draupadi Murmu, after consultation with the Chief Justice of India, has appointed 5 new judges to the Supreme Court. According to a notification issued by the Law Ministry, Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Justice Sheel Nagu, Chief Justice of Bombay High Court, Justice Shri Chandrasekhar, Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, Justice Sanjeev Sachdeva, and Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court, Justice Arun Balli, have been elevated as Supreme Court judges. Senior Advocate Venkita Subramani Mohana has also been appointed as a judge in the Apex Court. BJP National President Nitin Nabin held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi yesterday. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details highlighting discussions on Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how

इसी के साथ आज का संगीतिका कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुने ब्रजेश मिश्रा की आवाज़ में भजन। हारमोनियम पर संगत कर रहे थे करीम नियाजी, बांसुरी पे विनय प्रसन्ना और राशिद नियाजी तबले पर, और कीबोर्ड पे थे लवीदास और दानिश असलम सरोद पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ आज मैं, आपकी दोस्त शोभा शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। और बहुत सारे गीत भी हैं और बहुत सारी बातें भी दिल में आ रही हैं, और सुबह की जो ये सुनहरी बेला है इसमें आपका बहुत स्वागत है। और यूँ कहें कि कार्यक्रम भी आपको ज़रूर अच्छा लगता होगा, क्योंकि पूरी ऊर्जा के साथ हम सोचते हैं अच्छे अच्छे गीत चलाएं, और जो सुबह होती है ना वो नई उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ शुरू हो तो वाकई पूरा दिन बन जाता है। कहते हैं कि सुबह का जो पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है, इसलिए आज का दिन सकारात्मक सोच, मुस्कुराहट और उत्साह के साथ शुरू कीजिए।

दोस्तों, सुबह की ताज़ी हवा, चिड़ियों की चहचहाट और मधुर संगीत, इन सब में अपना ही जादू है और इसी जादू को हम बरकरार रखते हैं। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गीत आप सुनते हैं फिल्म गुमनाम से लता मंगेशकर की आवाज़ में, कार्यक्रम वही गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

हाँ बिल्कुल, टेंशन्स गम ये सब छोड़ दे, डिप्रेशन में चले जाओगे, इससे अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जिए। और कहें कि मैं कहूँगी कि सबका ख्याल रखिए पर अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि अगर कहीं आप खुश होंगे तो सब खुश हो पाएंगे, अगर आप ही खुश नहीं हो तो आपके व्यवहार में वो फ़र्क नज़र आएगा, और फिर यूँ कहें कि खुशियाँ कहीं दूर चली जाती हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखिए, कभी उगते सूरज को देखिए, कभी परिवार के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लीजिए, यही पल जीवन को खूबसूरत बनाते हैं।

तो आज क्या, आज होगी तो मेरा गुड मॉर्निंग कार्यक्रम है। पर यूँ कहूँगी कि बस अब समाप्त होने के लिए कगार पे है। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम मुझे संपन्न करने के से इजाज़त दीजिए, पर चाहिएगा कहीं नहीं, बहुत ही प्यारा सा गीत आपके इंतज़ार में है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो गीत थे आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, और आप ज़रूर सकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर गए होंगे, क्योंकि हर सुबह एक नया अवसर है, नई उम्मीद है और नई शुरुआत है अपनी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बनाने का। बाकी मैं तो कहूँगी कि एक पॉजिटिविटी के साथ भर जाइए और अपने काम को दिल लगा के कीजिए, और जिस क्या को आप बहुत प्यार से और शिद्दत से करते हैं, आप उसमें ज़रूर सफल होते हैं। तो इसी के साथ मैं शोभा आपसे चाहती हूँ इजाज़त, नमस्कार, पर जाइएगा नहीं, बहुत ही प्यारा सा गीत आपके इंतज़ार में, और यूँ कह के अपना दिन बना देगा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
4: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउ लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउ लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी

0: तो संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2-3 branches also।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पंवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउन क्लाइन सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under 18 Asia Cup. Myanmar President Ou Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said, Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
9: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
8: The Foreign Secretary said that both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, health, education, energy, and critical technologies like artificial intelligence. The Myanmarese leader, accompanied by a high-level delegation, will travel to Mumbai today for business and industry interactions and site visits. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said, India and the United States have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement, and negotiations are now focused on a few minor issues, commerce and full stops. We have a report.
10: Commerce Minister Piyush Goyal said that the team from United States is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement BTA. The talks will take place in New Delhi from today and it will last till Thursday. India's chief negotiator is Darpan Jain, additional secretary in the Department of Commerce, while the US team is led by its chief negotiator Brendan Lynch. On 3rd of February, both sides announced the framework for the first phase of the BTA. The two sides have proposed to finalize the details of the interim agreement and take forward the negotiations under the broader BTA on multiple areas such as market access, non-tariff measures, customs and trade facilitation, and investment promotion. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
8: BJP National President Nitin Naveen held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi yesterday. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सियाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कुश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। और हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने कल नई दिल्ली में तजारत, दिफा, तवानाई और कनेक्टिविटी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए वसीतर मौजूआत पर बातचीत की। म्यांमा के सदर भारत के 5 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। बातचीत के बाद नामा निगारों को जानकारी देते हुए खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने म्यांमा के इकतदार आला और इलाकाई सालिमियत के तई भारत की हिमायत का इरादा किया और तरफैन ने अपने सिक्योरिटी मफादात के मुनाफ़ा सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के बेचा इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत उजागर की।
1: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
0: खारिजा सेक्रेटरी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने खास तौर पर तजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, तवानाई और मस्नूई जहानत जैसी अहम टेक्नोलॉजी के शोबों में करीबी इश्तराक कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। म्यांमा के सदर आला सतह के वफद के हमराह आज मुंबई जा रहे हैं, जहां वो कारोबारी और सनती रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है और अब मुजाकरात में चंद मामूली उमूर पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टीम दोतरफा तजारती मुआहदे के पहले मरहले को हतमी शक्ल देने के बारे में बातचीत के लिए नई दिल्ली आई हुई है। ये बातचीत नई दिल्ली में आज से जुमेरात तक जारी रहेगी। कॉमर्स के महकमे में एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन भारत के आला मुजाकरातकार हैं, जबकि अमरीकी टीम की सरबराही उसके आला मुजाकरातकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के आला अहदेदारों और कारकुनान के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और तर्जुमान डॉक्टर संबित पात्रा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल तंजीमी तौसी और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने से मुतालिक बातचीत के कलीदी निकात को शेयर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने 12 साल मुकम्मल कर रही है।

0: और हर किसी ने ये महसूस किया है कि कैसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत में हर शोबे में तरक्की रूनुमा हुई है। जनाब पात्रा ने कहा कि मौजूदा वक्त में बीजेपी और एनडीए को मुल्क की 22 रियासतों में खिदमात अंजाम देने का मौका हासिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों पर मरकूज़ मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज़ और निफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदाम पर एक खसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है। आज हम हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक किए गए इकदाम का जायज़ा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुज़िश्ता 12 साल में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक इक़दामात में नुमाया तब्दीली आई है। हुकूमत की जानिब से हिफ्ज़ान सेहत, तालीम, रोज़गार के मौक़े और मुआशी शमूलियत के लिए किए गए इक़दामात इस तब्दीली के मुहर्रिक हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, जिसका आगाज़ 2015 में किया गया था, करोड़ों ख़वातीन अपने कारोबार को शुरू करने और वसअत देने के लिए ज़मानत से मुबर्रा कर्ज हासिल कर पाई हैं। मस्कूरा स्कीम के तहत इस साल मार्च के आखिर तक 40 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत का कर्ज दिया जा चुका है, जिसमें से 17 लाख करोड़ रुपए ख्वातीन को दिए गए। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए तिरुपुर तमिलनाडु की रिहायशी वंशीरी ने बताया,
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ। 2-3 ब्रांचेस।
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और उमानिया जैसी कलीदी स्कीमों की बदौलत बैंकारी, बचत और कारोबारी प्लेटफार्मों तक ख्वातीन की पहुंच बढ़ी है। जनधन योजना के तहत ख्वातीन के 33 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश में शिमला की रिहायशी सरोज बाला ने कहा कि हुकूमत की स्कीमों से मुतालिक रकम अब सीधे उनके बैंक खाते में मुंतकिल की जाती है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: इख्तराई प्रोग्रामों और मौजू पॉलिसियों के साथ ख्वातीन एक खुद कफील और सबकी शमूलियत वाली मईशत को तश्कील देने में अहम रोल अदा कर रही हैं। आकाशवाणी न्यूज़ दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: सुप्रीम कोर्ट में 9 तकरीर शुदा 5 जज आज हलफ लेंगे। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत उन्हें ओहदे का हलफ दिलाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की तकर्री की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने तलबा के लिए नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच के लिए पोर्टल शुरू कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने ये जानकारी दी है। CBSE ने तलबा को ये सलाह दी है कि वो नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जाँच के लिए दरख्वास्त देने के तरीके के बारे में हिदायात के ताल्लुक से वीडियो को ध्यान से देखें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तराखंड में यूनेस्को आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सैयाहों के लिए खोल दिया गया है। मजकूरा मकाम रियासत के चमोली ज़िले में है। जंगलात के महकमे ने सैयाहों से अपील की है कि वो वैली के मालामाल हयातियाती तनवो और पौधों की कमयाब अकसाम के तहफ़ुज़ में तआवुन करें। महकमे के मुताबिक वैली ऑफ फ्लावर्स में सरेदस्त फूलों की 300 अकसाम और पौधों की मुतअद्दिद कमयाब अकसाम हैं। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चेतना खंडपाल ने बताया कि वैली 31 अक्टूबर तक सैयाहों के लिए खुली रहेगी।
4: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिक

0: की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: काबिले जिक्र है कि वैली ऑफ फ्लावर्स एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहाँ मुश्किल जुग्राफियाई हालात हैं। मौसमी हालात और सलामती के मेयारात को मद्देनज़र रखते हुए सयाहों को ज़रूरी रहनुमा खतूत जारी किए जा रहे हैं ताकि उनके सफ़र को महफूज और लुत्फानंदोज़ बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर ज़िले में बेतवा दरिया पर ज़ेर तामीर पुल का कुछ हिस्सा गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की दो इंक्वायरी कमेटियां तश्कील दी हैं। इस सानहे में 6 अफराद की मौत हो गई थी। हमीरपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तश्कील दी गई 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी इस वाक़े से वाबस्ता सभी इंतज़ामी, तकनीकी और तरीक़ाकार से मुतालिक पहलुओं की तफसीली जाँच कर रही है। ज़िला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस हादसे के सिलसिले में कुरारा थाने में केस दर्ज किया गया है। साल 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी अब कश्तीरानी के मुकाबले वाले बड़े बैन अल-अक़वामी खेल मुकाबलों के लिए तैयारी करेंगे जिसमें एशियाई खेल और वर्ल्ड कप सर्किट शामिल हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: खेलों के महकमे की वजारत ने कहा है कि इन कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया जाना तमकों के इनफरादी इम्कानात पर तवज्जो मरकूज़ करने के बजाय कश्ती के कई खेल मुकाबलों में पायदार इस्तेहकाम कायम करने की एक और कोशिश है। जिन खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है उनमें 2024 के पेरिस ओलंपिक में खेलने वाले बलराज पंवर, एशियाई गेम्स 2022 में चांदी का तमगा हासिल करने वाले अरविंद सिंह और 2022 के ही एशियाई गेम्स में 2 तमगे जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। शामिल किए गए बेशतर खिलाड़ियों को खासतौर पर 2026 के एशियाई खेलों को जहन में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: हॉकी में जापान में काका मेगाहारा के मकाम पर 18 साल तक की उम्र के एशिया कप में पूल ए के अपने तीसरे मैच में भारत ने कोरिया को 1-4 गोल से हरा दिया। भारतीय टीम के कप्तान केतन कुशवाहा ने खेल के तीसरे और 36वें मिनट में 2 गोल किए। वरिंद्र सिंह ने 5वें मिनट में 1 गोल किया जबकि शाहरुख अली ने खेल के 54वें मिनट में जोरदार तरीके से गोल किया। इस कामयाबी के साथ ही पूले में कोरिया और जापान के साथ साथ भारत के भी 6 पॉइंट हो गए हैं। भारत कल अपना आखिरी पूल मैच चीनी ताइपे के खिलाफ खेलेगा। केरलम में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनज़र 14 ज़िलों में से 10 ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन में बारिश में शिद्दत आने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला लड़ाई रोकने पर रजामंद हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की और सालिसों के तवसुत से लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप को इससे मुत्तला किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से फ़ोन पर गुफ्तगू के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। अमरीकी सदर ने कहा कि अब कोई भी फ़ौजी बेरूत नहीं जाएगा और जो फ़ौजी वहाँ रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। सदर ट्रंप ने बताया कि हिजबुल्ला ग्रुप ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि सभी तरह की गोलीबारी बंद हो जाएगी, इसराइल उस पर हमला नहीं करेगा और वो भी इसराइल पर कोई वार नहीं करेगा। तृणमूल कांग्रेस ने अपने 2 MLA संदीपन साहा और ऋतव्रता बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया है। ये कार्रवाई दोनों रहनुमाओं की जानिब से पार्टी मुखालिफ कार्रवाइयों, कलीदी मीटिंगों में अदम मौजूदगी और पार्टी क़्यादत मुखालिफ बयानात की वजह से की गई है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
3: शुक्रिया नीतिका। दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमा के सदर के दरमियान हुई बातचीत को नुमाया किया है। वजीर आजम ने म्यांमा के तई हिमायत का इरादा किया जबकि सदर ओमिन आ उलाइन ने कहा कि म्यांमा में भारत मुखालिफ अनासिर के लिए कोई जगह नहीं है। अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया की मंजूरी मिलने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की कुल तादाद 37 हो गई। रोजनामा इनकलाब की नीट इम्तिहान से मुतालिक सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट का नीट इम्तिहान कंप्यूटर से कराने से इनकार, पेपर लीक की वजह से दोबारा इम्तिहान के लिए 21 जून की तारीख मुकर्रर की गई है।
1: और अब आखिर

खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सियाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को एक के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रभुलाल धांधरा से सितार वादन, राग है जौनपुरी, तबले पर संगत की है अमजद अली ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: विज्ञान पत्रिका के संक में आप सबका स्वागत है। भारत में वैज्ञानिक चेतना साइंटिफिक टेंपर का विकास केवल तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि तार्किक सोच, साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण और रूढ़िवादी मान्यताओं से मुक्ति का एक सशक्त दर्शन है। आधुनिक युग में ये राष्ट्र निर्माण, नवाचार और आत्मनिर्भरता का मूल आधार बन चुकी है। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं ये भेंटवार्ता, भारत में वैज्ञानिक चेतना का विकास, आधुनिक आयाम, चुनौतियां और संभावनाएं। ACSIR के पूर्व प्रोफेसर और CSIR के मुख्य वैज्ञानिक, लेखक, कवि और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता गौहर रजा से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
1: आज जो हमारा विषय है और जो विशेषज्ञ हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। विषय का महत्व ये है कि वैज्ञानिक चेतना की बात अक्सर की जाती रही है, साइंटिफिक टेम्पर की बात की जाती है। हमारे संविधान में भी आर्टिकल 51 AH हर नागरिक के मूल कर्तव्य के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और सुधार की भावना के विकास की बात करने को कहता है। लेकिन जब विज्ञान, अनुसंधान और उसके प्रतिफल आते हैं तो क्या वो सर्वमान्य मानवता के लिए ऐसी हो जाते हैं? उसके प्रतिफल को उपयोग करने के लिए किस तरह के एक वैज्ञानिक चेतना के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण को भी अपनाए जाने की जरूरत है। विज्ञान को आम जनता तक सरल भाषा और सांस्कृतिक माध्यमों से पहुंचाने के लिए विशेष रूप से जाने जाने वाले गौहर रजा साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: बेहद शुक्रिया आपका यहाँ मुझे बुलाने के लिए।
1: आपने कल्चरल डिस्टेंस, मॉडल ऑफ पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस जैसी महत्वपूर्ण अवधारणा विकसित की है, तो इसके पीछे की मूल अवधारणा क्या है और किस तरह से लोगों को समझना चाहिए?
2: आपने दो सवाल रखे हैं, तो पहला सवाल अपने अंदर बहुत जटिल सवाल है कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो इतना फैलाव है और जो इतनी विविधता है, उसमें साइंटिफिक टेम्पर की या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की क्या अवधारणाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटी हैं और किस तरह से उसको फैलाया जा सकता है, ये एक बहुत जटिल सवाल है। और आजादी से पहले से हमारे पूर्वजों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया था। और अभी आपने जिक्र किया आर्टिकल 51 AH का, और इस आर्टिकल में एक बड़ी खास बात है, बल्कि दो बहुत खास बातें हैं। एक खास बात तो यह है कि हम अकेले देश हैं जिन्होंने ऐसा आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, दुनिया भर के देशों को अगर देखें। दूसरे, साइंस और ह्यूमनिज्म यानी मानवता को, दोनों को एक साथ रखा है। साइंस बिना मानवता के, और क्यूरियोसिटी को भी रखा है वहीं उसी बास्केट में रखा है,
1: पर्यावरण को भी रखा है,
2: पर्यावरण को रखा। तो ये जो चीजें हैं ये दर्शाती हैं कि हमारे पूर्वज कितने डीप थिंकर थे, कितनी गहरी सोच थी उनकी आने वाले वक्त को लेकर के भी, और जिस वक्त वो मौजूद थे उस वक्त को लेकर के भी। अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या परिभाषा, तभी बहस आगे बढ़ सकती है। मतलब अगर आपको परिभाषा नहीं पता तो मैं कुछ समझ रहा हूँ और आप कुछ समझ रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो अलग अलग गड़बड़ हो जाएगी। तो उसमें हमको सबसे ज्यादा जो मदद देते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू देते हैं। ये अलग बात है कि हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी उसके ऊपर बातचीत की है, लेकिन सबसे खूबसूरत परिभाषा हमको नेहरू के यहाँ मिलती है। और वो ये कह रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि आप नई चीजें खोजने के लिए हमेशा अपने दिमाग को तैयार रखें, जो अनुशासित हो और आजाद भी हो। ये बड़ी अजीब बात है कि अनुशासित और आजाद दोनों की बात नेहरू कर रहे हैं, और नए प्रमाण और नए डेटा के आधार के ऊपर आप अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हो। अब ये बात जो है ये बड़ी चौंका देने वाली बात, हम अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि दाल ऐसी पकती है हमारे घर में, जो पड़ोस में दाल पकती है जिस तरह की, वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा धर्म ये कहता है कि इस दिन ऐसे करके ऐसे ही खाना खाना है, कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। सूर्य ग्रहण हो जाए तो अपना खाना अलग रख देना है, खराब हो जाता है फेंक देना वो खाना। तो इन मान्यताओं को छोड़ने का आह्वान दे रहा है, अगर ये टकराती हैं साइंस के साथ, ये कह रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर इस डेफिनेशन को हम लें, बात काफी साफ हो जाती है। इस डेफिनेशन को लेने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि हमको साइंस की जानकारी का दायरा बढ़ाते हुए

0: इसका भी ख्याल रखना है कि पुरानी वो मान्यताएं जो साइंस की जानकारी से टकराती हैं या समाज के लिए बुरी हैं, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, धर्मों के बारे में बात करते हुए कहा है कि जो धर्म की अवधारणा या प्रैक्टिस दोनों में से कोई अगर मानवता के उसूलों से टकराती है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे समाज के अंदर जो डीपली रिलीजियस हो और धर्म बन जाए सुपरस्टिशंस का आधार और उसका एक मार्केट तैयार हो जाए, ऐसे में आवाहन दे रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि नहीं भाई, कुछ चीजें तो छोड़नी पड़ेंगी, साइंस आज की ये कह रही है। इसे फैलाने के लिए हमको समाज में एक माहौल तैयार करना होगा जिसमें नई जेनरेशंस, हमारी नई नस्लें जो हैं, वो कम से कम ये हिम्मत रखें कि भाई ये चीज जो है वो साइंस के हिसाब से गलत है। अब जैसे हमारे देश में जहां तक जाति प्रथा का मामला है वो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब में, और हमारे देश में जो मान्यता है जाति की उसके आधार के ऊपर इंसान गंदा होता है, यानी उसका साया पड़ जाए, वो कोई चीज छू ले, वो अंदर आके बैठ जाए, तब गंदा हो जाता है सब कुछ। तब आपको या तो गंगा जल से उसको करना है या आबे जमजम से करना है उस जगह को, या कुछ और करवाना। साइंटिफिक आइडिया जो है गंदगी का, वो ऐसे समाज में नीचे तक जा नहीं सकता, क्योंकि साइंटिफिक आइडिया है कि जर्म्स गंदे हैं, वो गंदगी पैदा करते हैं, मक्खियां गंदगी पैदा करती हैं, वायरस गंदगी पैदा करते हैं, वो कॉज है हमारे, ये साइंटिफिक आइडिया। इन दोनों में टकराव,
1: तो ये कल्चरल डिस्टेंस मॉडल आपका है पब्लिक
0: अंडरस्टैंडिंग। अब कल्चरल डिस्टेंस मॉडल की जरूरत पड़ती है, जहां टकराव है, जहां फिल्टर्स हैं, वहां साइंस की जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए। अगर हमें ये नहीं पता कि किसी एक आइडिया का कितना डिस्टेंस है हमारे कल्चर से, कितनी दूरी पर है, तो हम उसे लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, इफेक्टिवली नहीं पहुंचा सकते।
1: निश्चित रूप से, क्योंकि विज्ञान का भी अपना धर्म है, तो सत्यता की कसौटी पे परख के लोगों के सामने लाता है, और धर्म का अपना विज्ञान है जो हमारी मान्यताओं के अनुरूप हमारे मन मस्तिष्क पे छा जाता है, और जो चूंकि संस्कारों की गीली तीलियां जल्दी आग नहीं पकड़ती, ऐसे जनमानस में विज्ञान की सत्यता को पहुंचना, उसे स्वीकार्य दिलाना एक कठिन चुनौती विज्ञान संचारकों के बीच में रही है। तो आप जा विज्ञान लोगों की भावनाओं और जीवन में पर्याप्त रूप से जुड़ने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रयत्नशीलता में अगर आप देखें तो जैसे कि आपने चुनौतियां एक दो बताई कि जो हमारे अंधविश्वास हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे धर्म और समाज, जो जाति पे बटे हुए समाज है, ये सारी हैं। लेकिन इन सब तक पहुंचने के लिए एक भाषा, एक चीज बात जो है, एक जो सत्य है वो विज्ञान है, जो हर जगह है। अगर हम देखें कि इसके कल्चरल डिफरेंस की बात की, हमारा देश ही सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। सबसे जो विज्ञान है वो कुंभ मेला है, कुंभ मेले का भी अपना विज्ञान है, और विज्ञान के लिए वो कुंभ मेला एक चुनौती भी है। तो आपने 25 वर्ष तक अपने शोध से समाज और विज्ञान को खास करके कुंभ मेले से जोड़ के किया है, वो क्या है, किस तरह से वो आम लोगों के लिए जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए।
0: 1900 से लेकर के 1989 से लेकर के और 2019 तक मैंने कोई अर्धकुंभ और कोई कुंभ ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो, जहां टीम के साथ ना गया हूं मैं, उसमें मेरे बहुत सारे कलीग्स शामिल थे और वहां लोगों से साइंस के सवाल पूछे।
1: उन दिनों आप CSIR में थे, निस्केयर में मुख्य वैज्ञानिक के पद पे आप रहे वहां तक।
0: मेरे 34 साल वहां गुजरे और 30 साल मैं लगातार कुंभ में भी गया, तो इस पर मेजर काम रहा। जो अहम सवाल था हमारे सामने वो ये था कि क्या हम वेस्टर्न मॉडल्स अपने देश में लागू कर सकते हैं साइंस कम्युनिकेशन के, क्या हम उन मॉडल्स से परख सकते हैं अपने देश की जनता को। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल था कि अमेरिका में उस जमाने में इसके ऊपर काम शुरू हुआ जो यूरोप में फैला, और तभी हमने शुरू किया साइंस कम्युनिकेशन पे रिसर्च का काम। जो टीम्स वहां थी उन्होंने जो कुछ काम किया था उसको परखने की कोशिश की और इस नतीजे पर पहुंचे कि वो इंडिकेटर्स, वो पैरामीटर्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते जो वेस्टर्न सोसाइटी को परखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमें अपने इंडिकेटर्स चाहिए। तो कुंभ मेले में हिंदुस्तान पूरा रिप्रेजेंटेशन के साथ मौजूद होता है, दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा है, हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आते हैं और हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग आते हैं वहां, तो इससे खूबसूरत जगह कोई हो ही नहीं सकती थी। और इलाहाबाद का कुंभ मेले की बात कर रहा हूँ जो सबसे बड़ा होता है, जहाँ करोड़ों में लोग आते हैं, इससे खूबसूरत कोई जगह नहीं थी जिसमें मैं उस कम पैसे के साथ जो हमें प्रोजेक्ट के लिए मिला था मैं एक बेहतरीन हिंदुस्तान का सैंपल इकट्ठा कर सकूं जानकारी का, तो वहां चले। और फिर जो रिसर्च का और साइंस का नशा होता है वो बहुत गहरा होता है तो 30 साल तक लगातार जाते रहे। मैं काफी लोगों से कहता हूँ कि तुम धार्मिक होने का दावा करते हो, कितनी बार गए हो कुंभ मेले में, मतलब लगातार।

0: तीस साल तक कोई कुंभ मेला ना छोड़े, ऐसा अधर्मी देखा है मेरे जैसा? महाकुंभ हर 12 साल पे आते हैं, तो
1: आते हैं,
0: तीन महाकुंभ हैं उसमें और तीन अर्ध कुंभ हैं उसमें, और हर साल वहाँ माघ मेला तो होता ही है। मैं माघ मेले में नहीं गया, वहाँ लगभग 5,000 लोगों से इंटरव्यू करना अपने अंदर बड़ा चैलेंज था। खासतौर से महिलाओं से इंटरव्यू करना एक बड़ा चैलेंज इसलिए होता है कि हमारे यहाँ महिलाओं को अप्रोच करना, उनसे बात करना, लड़के नहीं कर सकते हैं, जाकर के मर्द नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए लड़कियों को भी ट्रेन करना पड़ा, एन्यूमरेटर्स को। तो 100 लोगों की टीम इलाहाबाद में इकट्ठा करके उनको ट्रेन करके कि कैसे इंटरव्यू करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों पर इम्फेसिस देनी है वगैरह, ये सब कुछ करके वहाँ हर साल जाते थे। और ऐसे में सवाल पूछ करके वापस लौट करके उसको कोड करके उसको कंप्यूटर में डाल के एनालाइज करना मुश्किल होता था। पर बड़ी चौंकाने वाली चीजें निकली। पहली बात तो ये कि लोग उन जटिल सवालों के बारे में जिसमें हम ये सोचते हैं कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग उनके बारे में सोचते हैं, यानी ब्रह्मांड कैसा है से लेकर के इंसान इस धरती पर कैसे पैदा हुआ, या पर्यावरण में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, या हेल्थ में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, और खासतौर से महिलाएं। कमाल की बात यह है कि महिलाओं की जानकारी हेल्थ के एरिया में मर्दों से कहीं ज्यादा निकली हर साल जब भी हम गए। और उसकी वजह शायद यही है कि बीमारी का सबसे बड़ा बोझ खानदान में महिलाएं झेलती हैं, तो वो डेटा से साबित हो रहा था कि महिलाओं की जानकारी, जिसका मतलब ये हुआ कि महिलाएं जो हैं वो हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हेल्थ से रिलेटेड है वो कलेक्ट करके जमा करके अपनी सोच का हिस्सा बना लेती। तो मैं ये कह रहा था कि आम आदमी जिसे हम जाहिल समझते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अनपढ़ है, गवार है, इसे क्या मालूम होगा, वो भी जटिल सवालों के बारे में लगातार सोचता रहता है, और उसके अंदर जिज्ञासा की भूख बहुत ज्यादा है हमारे देश। यानी हो सकता है कि कुछ लोग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को लेके परेशान हो जाएं और आपके कत्ल करने पे तुल जाएं, जैसा नरेंद्र दाभोलकर और पंसारे और इन सब लोगों के साथ हुआ, लेकिन आम नागरिक उसके अंदर इतनी भूख है जानकारी की कि वो बड़े आने वाले वक्तों के लिए वो हमको बहुत भरोसा दिलाती है कि हमारा देश सही दिशा में आगे जा रहा था।
1: आपने जब वहाँ सर्वे किया लोगों के साथ, जैसा कि आप 30 साल से लगे रहे, 5,000 से ज्यादा लोगों से बातचीत की, एक क्वेश्चन आयर किस तरह के होते थे जानकारी लेने के लिए, किस तरह के प्रश्नों आपने तैयार किए?
0: हमारे प्रश्न बिल्कुल बेसिक होते थे, जो अमेरिका और यूरोप में सवाल पूछे गए वो उनसे कंपेयर करके आपको इसका जवाब देता। वो सवाल ऐसे थे जिनमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई, तो हमें ये लगा कि देखिए हमारे देश में न्यूक्लियर साइंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे कभी डिबेट नहीं है। अगर अमेरिकन सोसाइटी में आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल पूछेंगे तो वो साइंटिफिकली लिटरेट करार दे देंगे उनको, और हमारे यहाँ अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में पूछेंगे तो हरेक का ऑलमोस्ट फैमिली ताल्लुक है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की जानकारी ज्यादा मिल जाएगी, साइंटिफिक जानकारी मिल जाएगी, और यही हुआ, ये कन्फर्म हो गया। तो जो आइडिया था हमारा कि जांचने की कोशिश करें कि लोगों में जानकारी क्या है, उसके लिए जो सवाल थे वो फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के सवाल थे, पर्यावरण और ज्योग्राफी के सवाल थे, हेल्थ साइंसेस के सवाल थे और एग्रीकल्चर के सवाल थे। ये एरियाज थे जिनमें हमने बेसिक जानकारी से शुरू करके बहुत कॉम्प्लेक्स जानकारी तक हासिल करने की कोशिश की।
1: ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिससे प्रायः देश का हर क्षेत्र का हर नागरिक जुड़ा हुआ हर तबके का है,
0: और इनमें हमारा कंक्लूजन ये है जो मैं किताब लिख रहा हूँ इस वक्त, उसमें भी यही बात है, पिछले 30 सालों में लोग भ्रांतियों से, अंधविश्वास से दूर गए हैं और साइंस के करीब आए हैं। कल्चरल डिस्टेंस हमारा साइंस के उन सवालों के ऊपर इन चार एरियाज में कम हुआ है इस बीच में, जो एक बहुत अच्छी खबर है। इसके बावजूद के इस बीच में बाबाओं का और खासतौर से प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स का बहुत बुरा रोल रहा है, हमारे जो राजनेता हैं उनका बड़ा बुरा रोल रहा है,
1: चमत्कारिक बातें करते हैं,
0: चमत्कार अंधविश्वास फैलाने की, नए नए अंधविश्वास फैलाने की बात करते हैं ये लोग। लगता ऐसा है कि शायद सारा देश अंधविश्वास के कुएं की तरफ जा रहा है, पर हमारी रिसर्च ये कह रही है कि ऐसा नहीं है, लोग साइंस की तरफ धीरे धीरे ही सही कदम बढ़ा रहे हैं और हम दुनिया के किसी देश से कदम बढ़ाने की रफ्तार में पीछे।
1: गोहराजा साहब, इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया।
2: भारत में वैज्ञानिक चेतना का विकास, आधुनिक आयाम, चुनौतियाँ और संभावनाएं। अभी आप वैज्ञानिक, लेखक, कवि और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता गौहर रजा से ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे दिलीप झा। और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 9:30 होने को हैं और ये समय है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 10 बजने को है। अब समाचार सुनिए, पहले हिंदी में फिर अंग्रेज़ी में।

0: म्यांमार के राष्ट्रपति ओमेन आउलाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान शेरोवाली कल लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम घने जंगलों में आतंकियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए अभियान चला रही है। व्हाइट नाइट कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा ने कल नियंत्रण रेखा से जुड़े अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था तथा सेना की तैयारियों का जायजा लिया। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य गठन दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में तेलंगाना वासियों की प्रगति और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली सांस्कृतिक साहस दृढ़ संकल्प तथा संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने तेलंगाना वासियों के बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की कामना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। और खेलों में 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। चयनित समूह अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। इस समूह में पेरिस 2024 ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में 2022 के रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और 2022 के दोहरे पदक विजेता जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज बेहतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran.

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ अल्पना। और ये देखिए, बहुत अच्छे अच्छे मेल्स आ चुके हैं मेरे पास, और इसमें से सबसे पहले जो हम संदेश ले रहे हैं वो है पलारी छत्तीसगढ़ से, नितेश कुमार का, दुर्गा प्रसाद, पराग पूना और राम देवगन और कृष्णा हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो संदेश आया है वो है मस्कीन जी का। जी हाँ, और इन्होंने संदेश भेजा है, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य चंडीगढ़ से, और राहुल खुराना, रजत खुराना, केशु खुराना लिख रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं कि सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। आपको भी गुड मॉर्निंग और धन्यवाद आप लोग का कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ग्राम मामना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण, विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा जिला हरियाणा से, हम सिरसा जिला से हरियाणा से हमारे पास हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नमस्कार हमें भेज रहे हैं खैल बाज़ार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्म मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भविका सिक्का भी हमें संदेश भेज रही हैं। और इस जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, फतेमा कॉलोनी से ये संदेश हमें मिला है, नासिर शेख का, नाजियर नासिर का, साजिद शाहिद का, गोविंदपुरा से है, अहमदनगर से जुनैद और साहिबा, मिखाइल और जैनब। और आप सबके ऐसे प्यारे प्यारे संदेश देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास संदीप मक्कन मक्कड़ और ज्योति मक्कड़ मन्नत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कमल सहानी, और ये हमें संदेश भेज रहे हैं जालंधर से। तो चलिए और भी संदेश लेंगे, इससे पहले सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है मोनाली ठाकुर की आवाज़ में फिल्मों मुँह के धागे से, संगीत से सजाया अनु मलिक ने और बोल हैं वरुण ग्रोवर के।

और जो अगला संदेश हमें मिला है वो नमस्कार भेज रहे हैं वांगिड खेड़ा से, पंजाब से। इनकी संदेश है मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और इसके अलावा तहे दिल से शुक्रिया भेज रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर, राही महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार से आपको भी शुक्रिया। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश वर्मा, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, जमशेदपुर से। और हमारे साथ जुड़े हुए उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू, अर्पण, अर्णव और सत्यम जो कि झारखंड पाकुड़ से, इनका संदेश हमें मिला है। और इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है जो कि नमस्कार और आदाब भेज रहे हैं, आपको भी नमस्कार, और लिख रहे हैं हमें निराशा है कि आप नज़रअंदाज कर रही हैं। देखिए नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और संदेश कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सबके ले सकें। ये हमें संदेश भेजा है छोटी बलिया करजन मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, दुख नी सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद और कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया आमना और आसमा परी परी, राबिया, आशु अहमद और समस फुले परिवार का ये हमें संदेश मिला है। इसके अलावा किशनगंज बिहार से हमारे पास रविंदर मोहनदास और आशा देवी जी का संदेश आया है, और रामेश्वर कटेरिया, उमाकांति, कमलेश, इनकी पुत्रवधु निशा और प्रतिमा और वेद बाबूजी हमें संदेश भेज रहे हैं मुंगीसापुर कानपुर देहात से, और रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान और जशीन खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। और एक और संदेश हम ले लेते हैं।

हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से संदेश रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का। और आप लिख रहे हैं कि अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो और आप उसे या तो दूर देख रहे हो तो आपके गुरूर से नहीं दे गुरूर अपने गुरूर से देख रहे हो। तो इसको इस बात की आपने जो लाइन लिखी है ठीक है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से आप लिख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल गुरूर नहीं होना चाहिए। और बाकी अच्छा है, आप लोग हम लोग को कुछ ना कुछ लिख के भेजते रहते हैं। और चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं, जुबिन नौटियाल की आवाज़ में बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गीत है, फिल्म ड्रीम गर्ल 2 से।

और जो अगला संदेश है वो है हमारे पास संजय डांडिया डांगिया और नमन का अपार का, और ये बागपत उत्तर प्रदेश से हमें संदेश भेज रहे हैं। और इसके अलावा हम बुलंदशहर से हमारे पास संदेश है मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन शहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहाना अरजान और अब्बासी परिवार का। और हमारे पास संदेश है एक और संदेश है, ये भी सेम संदेश है। तो साथियों बहुत सारे संदेश हैं और अभी हमारे कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। अगला एक खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर, तो सुनते रहिए इंद्रप्रस्थ चैनल।

ये आकाशवाणी है। भारत में व्यवस्थित रेडियो प्रसारण 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो नाम से शुरू हुआ था। इस प्रसारण को शुरू हुए 90 वर्ष हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में प्रस्तुत है वृत्त रूपक श्रृंखला प्रसारण की प्रतिध्वनिया का दूसरा भाग। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन और प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना और निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार।

सोया भारत अंगड़ाई ले रहा था। वीर जवानों में आजादी का जोश बढ़ रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान से सिंगापुर होते हुए आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए कोहिमा तक आ चुके थे।

0: एक ओर गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना चाहते थे, तो दूसरी ओर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन पर अड़े हुए थे।
1: एक दिन वो भी आया जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब भारत छोड़ना ही पड़ेगा।
0: अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन और तेज हो गया।
1: भारत को आजाद कराने की विधि व्यवस्था के लिए इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया।
0: मोहम्मद अली जिन्ना ने कमीशन के सामने मुस्लिम लीग का अपना एजेंडा रख दिया। वे मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे।
1: 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हो गया था।
0: 3 जून 1947 की सांझ ढल रही थी। सुगबुगाहट थी कि आज भारत की आजादी को लेकर नेता लोग आकाशवाणी आ रहे हैं। कुछ ही देर में वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार बलदेव सिंह दिल्ली के प्रसारण भवन आ गए।
1: स्टूडियो की बत्ती लाल हुई। माउंटबेटन ने अपने साथ बैठे सहभागियों के चेहरे पढ़े और अपनी बात कह दी।
2: A statement will be read to you tonight, giving the final decision of His Majesty's government as to the method by which power will be transferred from British to Indian hands. But before this happens, I want to give a personal message to the people of India, as well as a short account of the discussions which I have held with the leaders of the political parties, and which have led up to the advice I tendered to His Majesty's government during my recent visit to London. Since my arrival in India at the end of March, I have spent almost every day in consultation with as many of the leaders and representatives of as many communities and interests as possible. I wish to say how grateful I am for all the information and helpful advice they have given me. Nothing I have seen or heard in the past few weeks has shaken my firm opinion that with a reasonable measure of goodwill between the communities, a unified India would be by far the best solution of the problem. I have made no mention of the Indian states, since the new decisions of His Majesty's government are concerned with the transfer of power in British India.
1: उन्होंने जो कहा, उसका भाव था।
0: भारतीय लोग लंबे समय से आजादी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिक तनाव और पाकिस्तान की मांग को देखते हुए भारत विभाजन रोकने के प्रयास सफल नहीं रहे। 72 दिन में यानी

0: 15 अगस्त तक सत्ता हस्तांतरण किया जाना है। उससे पहले काफी काम करने हैं।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन का सार था,
2: यह एक कठिन निर्णय है जिसे हमने भारी मन से स्वीकार किया है, लेकिन यह फैसला हमें आजादी की ओर ले जाएगा।
1: मोहम्मद अली जिन्ना बोले,
3: हम जो चाहते थे वो हमें मिलने वाला है, बस थोड़े से सब्र की जरूरत है।
1: सरदार बलदेव सिंह के कथन का सार था,
3: मुल्क का बंटवारा होना कोई अच्छी बात नहीं है। देश के अंदर जिस तरह के हालात हैं उन्हें देखते हुए देश का बंटवारा करना एक मजबूरी है। जरूरी है कि हम शांति बनाए रखें।
0: भारत के प्रसारण इतिहास में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय बहुत खास था। इसी समय ऑल इंडिया रेडियो ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित सत्ता हस्तांतरण समारोह का सजीव प्रसारण किया था।

0: वतन।
1: सेंट्रल हॉल खचाखच भरा हुआ था, वातावरण बहुत खुशगवार था। रात के करीब 12 बजे थे, एक उद्घोषणा हुई और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की सत्ता प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दी। इस अवसर पर वॉइसरॉय लुई माउंटबेटन ने अपने संबोधन में कहा,
2: I have a message from His Majesty the King to deliver to you today. This is His Majesty's message. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebration. At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi.
1: प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने लोक प्रसिद्ध संबोधन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में कहा,
3: कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी, अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी न हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे। मुनासिब है कि ऐसे वक्त पहला काम हमारा ये हो कि हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आज़ाद खुद मुख्तार असेंबली होगी और Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity.

0: एक तरफ भारत की आजादी का जश्न था तो दूसरी तरफ विभाजन का दुख।
1: भारत के बंटवारे ने हमारी साझी विरासत को बड़ी ठेस पहुंचाई। दोनों ओर अनगिनत लोग हिंसा के शिकार हुए।

0: देश में बंटवारे के कारण जगह जगह शरणार्थी शिविर लगाए जा रहे थे। पाकिस्तान से विस्थापित कुछ लोग कुरुक्षेत्र में रुके हुए थे। गांधी जी को विस्थापितों से मिलने कुरुक्षेत्र जाना था, लेकिन व्यस्तता के कारण वे जा न सके। गांधी जी को सुझाव दिया गया कि वे रेडियो के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
1: गांधी जी पहली और अंतिम बार 12 नवंबर 1947 को रेडियो स्टेशन आए। 3 बजे उन्होंने कुरुक्षेत्र में ठहरे विस्थापितों को संबोधित किया।
2: मेरे दुखी भाइयों और बहनों, मुझे कोई पता नहीं है कि सिवाय आपके मुझको कोई भी सुनता है या नहीं। ये अनुभव मेरी जिंदगी में मेरे लिए दूसरा है। पहला अनुभव इंग्लैंड में हुआ था, जब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया। मुझको पता ही नहीं था कि मुझको इस तरह से कुछ बोलना है। मैं तो एक अनजान पुरुष हूँ, मैं कोई दिलचस्पी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन दुख के साथ मिल जाना वो तो मेरा जीवन भर का प्रयत्न है, जीवन भर का मेरा पेशा है। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं, और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी, और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। आने वाला तो कल था, लेकिन ये हो नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी। तो घनश्याम दास जी ने शायद सोचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है, या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूँ तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है।

0: गांधी जी 9 सितंबर 1947 से 30 जनवरी 1948 तक बिरला हाउस में रहे।
1: बिरला हाउस में शाम के वक्त गांधी जी प्रार्थना सभा करते थे और इंडिया रेडियो प्रार्थना सभा की रिकॉर्डिंग करने स्टाफ को बिरला हाउस भेजता था।
0: इस कार्यक्रम का प्रसारण स्टूडियो से

0: सब कुछ सामान्य चल रहा था। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर अचानक वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, गांधी जी की हत्या कर दी गई। पूरा देश दुख के अथाह सागर में डूब गया।
1: अगले दिन बिरला हाउस से बापू की अंतिम यात्रा निकाली गई।
0: इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ऑल इंडिया रेडियो के प्रतिष्ठित कमेंटेटर मेलविल डिमेलो ने किसी तरह एक वाहन में खड़े होने की जगह बनाई और वहीं से एक मोबाइल ट्रांसमीटर से उन्होंने अंतिम यात्रा का आंखों देखा हाल सुनाया।
2: Policeman sticks being raised to try and keep the crowds down. We're trying to move in closer to get a last glimpse.

0: 30 जनवरी 1948 को शुक्रवार था। गांधी जी की स्मृति को बनाए रखने के लिए आकाशवाणी से आज भी प्रत्येक शुक्रवार को गांधी जी के जीवन पर आधारित गांधी चर्चा या ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है।
1: इसके साथ साथ बापू के प्रति जन भावनाओं का सम्मान करते हुए वर्ष 2001 में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने घोषणा की कि प्रतिवर्ष 12 नवंबर को आकाशवाणी में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाएगा। यही वो दिन है जब 1947 में महात्मा गांधी पहली और अंतिम बार आकाशवाणी आए थे।

0: बहुत संघर्षों के बाद देश स्वाधीन हुआ। विभाजन के दंश ने समाज में दरारें पैदा कर दीं। दोनों ओर आपसी दंगे हुए। रेडियो से नेताओं की शांति की अपील बार बार प्रसारित की जा रही थी। इसका प्रभाव साहित्य और संस्कृति पर भी पड़ा। आकाशवाणी में अपर महानिदेशक रहे साहित्यकार राजीव कुमार शुक्ल बताते हैं,
1: 200 साल की ब्रिटिश औपनिवेशिक गुलामी से जब अगस्त 1947 में भारत स्वाधीन हुआ तो वो पूरे देश के लिए बहुत आनंद और उमंग का प्रसंग बना और पूरे देश में उसका उत्साह के साथ उत्सव मनाया गया। पर साथ साथ एक बहुत बड़ी विभीषिका भी उस नवस्वाधीन देश ने झेली जब भारत का विभाजन हुआ, दो देश बने। तो हुआ ये कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत बड़ी तादाद में लाखों लोग सीमाओं के आर पार आए गए और साथ साथ भयानक हिंसा भी हमने देखी, सांप्रदायिक हिंसा भी देश ने झेली। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी संकट की बात थी क्योंकि भारत का स्वाधीनता आंदोलन भी जो है वो नैतिक मूल्यों को ऊपर रख करके और उनका पालन करते हुए चलाया गया था। हमारे जो स्वाधीनता आंदोलन के सबसे बड़े नायक थे, सबसे बड़े नेता थे, जिन्हें हम उचित ही राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी, उनकी पूरी सीख ये थी कि हम अहिंसा की शक्ति से संसार की सबसे बड़े साम्राज्य का मुकाबला करेंगे। लेकिन आजादी के बाद भारत में हमने उस बड़े संकट को देखा। स्वाधीन भारत की जो सरकार थी, चूंकि इस देश ने शुरू से ही धर्मनिरपेक्षता को एक मूल्य के रूप में, आदर्श के रूप में स्वीकार किया था, तो वह हिंसा किसी तरह से भी स्वीकार्य नहीं थी। इसलिए पूरी तरह से प्रयास ये हुआ जो हमारे नेता थे आजादी की लड़ाई के और उसके बाद भारत की आजाद सरकार के, प्रधानमंत्री पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री सरदार पटेल और अन्य तमाम जो लोग थे, मौलाना आजाद और तमाम जो महत्वपूर्ण हमारे नेता थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में वो सब लगातार शांति स्थापना के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे, अपीलें कर रहे थे। और तय बात है कि उस समय आजादी मिल चुकी थी और इसलिए ऑल इंडिया रेडियो की भूमिका भी अब भारत के हित में काम करने की हो चुकी थी, भारत की जनता के हित में काम करने की हो चुकी थी। तो शांति की जितनी भी ये बातें थी, शांति के जितने भी प्रयास थे, उनको आगे बढ़ाना और साथ साथ ऐसे माहौल में एक दूसरा पक्ष ये होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का प्रसार, सही सूचनाओं का प्रसार, अगर सूचनाएं सही सही मिलती हैं तो अफवाहों का बाजार उतना गर्म नहीं होता, झूठ का उतना प्रसार नहीं होता। तो ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत जोर शोर के साथ ये किया। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण ये भी भाग था कि महात्मा गांधी की जो प्रार्थना सभाएं होती थी उनका भी फिर प्रसारण होता था और साथ साथ इस तरह से लगातार ये प्रयास होता था। हम जानते हैं कि ये जो विभीषिका थी, उस विभीषिका ने दोनों ही तरफ का गहरा असर इतना पड़ा कि हमारे साहित्य में, संस्कृति में भी इसका प्रभाव आया, चित्रकला में आया, साहित्य में। हम जानते हैं कि हिंदी की अगर बात करें, ये यशपाल का झूठा सच सबसे बड़ा, उसको एक महागाथा के रूप में लिया जाता है, विभाजन की त्रासदी की, भीष्म साहनी जी का तमस और ऐसी अनेक रचनाएं हैं। असगर वजाहत का एक बहुत मशहूर नाटक है जिन लाहौर नहीं देखा, इस तरह से अनेक रचनाएं की गई। कृष्णा सोपती की रचनाएं हैं, अमृता प्रीतम की रचनाएं हैं जो पंजाबी में लिखी गई, और उधर गर्म हवा जैसी एक महान फिल्म भी बनी, बहुत बाद में बनी, लेकिन उसमें उस पूरे परिवेश को जैसे जीवंत किया गया और अंत में ये संदेश दिया गया ये मनुष्यता का धर्म सबसे बड़ा है। ऑल इंडिया रेडियो ने पूरा प्रयास किया लगातार सद्भाव, प्रेम, सौहार्द बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम किया।
0: आज का अंक यही संपन्न होता है। आगामी अंक में मजबूत होते लोकतंत्र, रेडियो के विस्तार, विविध भारती की स्थापना, इन 90 वर्षों की यात्रा के प्रमुख पड़ाव होंगे। अब अनुमति दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे वृत्त रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनिया श्रृंखला की दूसरी कड़ी। वाचन स्वर देवेंद्र त्रिपाठी और निशा भारद्वाज। आलेख और प्रस्तुति पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन और प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना और निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।

0: आप सब, आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: Both sides underscored the
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज इटली के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत होती रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 322 अंक गिरकर 73,945 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक लुढ़ककर 23,229 पर कारोबार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Myanmar President U Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defense, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Mistry said the President of Myanmar reiterated the assurance

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सब रस। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत सुरमंजरी में लीजिए सुनते हैं सितार वादन राग गुर्जरी तोड़ी में। कलाकार हैं उस्ताद निशांत खान। अलाप और गत तीन ताल में निबद्ध है।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सितार वादन राग गुर्जरी तोड़ी में। कलाकार थे उस्ताद निशांत खान। अलाप और गत तीन ताल में निबद्ध थी।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 12 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुँचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए।

0: बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं। अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्याय

0: सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातेले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातेले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu is addressing the tribal beneficiaries of the Ministry of Tribal Affairs flagship scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan. We now go over live to the President's address.
4: कुछ ना करे क्या, कैसे करे, कैसे आगे जाए, लेकिन ऐसे परिस्थितियों में आपको नैतिकता के साथ ही नहीं, नैतिकता को कभी भूलना नहीं है और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जनजातीय समाज के हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए अनेक संघर्ष किए हैं और बलिदान भी दिए हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा तो केवल ना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बिरसा मुंडा ये देश के लिए, ये मट्टी के लिए, मिट्टी के लिए, लेकिन उनका इतिहास में नाम नहीं है। बलिदान दिए हैं, यह प्रसन्नता का विषय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय समुदाय की समृद्ध विरासत, अदम्य साहस

घर आंगन के शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड की 100.1 MHz पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर। और दोस्तों, आपसे मिलने का मन तो हर बार करता है, और लेकिन कभी कभी मिलने का मौका मिलता है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारा रिश्ता और आपका रिश्ता बहुत पुराना है और यूं ही ये रिश्ता चलता रहे हम यही कामना करते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है दोस्तों कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर सुबह के बाद रात आती है तो रात के बाद फिर से नया सवेरा आता है। इसीलिए वक्त चाहे कैसा भी हो, जैसा भी हो, हर हाल में मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: और अब बात करते हैं दोस्तों आकाशवाणी की 90 सालों की शुरुआत की, जिसमें डिजिटल सैटेलाइट युग की शुरुआत हुई। 27 फरवरी 2002 को आकाशवाणी ने अपनी पहली डायरेक्ट टू होम डिजिटल सैटेलाइट सेवा शुरू करके एक नई तकनीकी क्रांति का आगाज़ किया। इस सेवा के माध्यम से श्रोताओं को एनालॉग के बजाय सीधे सैटेलाइट के उच्च गुणवत्ता की स्पष्ट ध्वनि के कार्यक्रम मिलने लगे और इस डिजिटल सेवा में समाचार, मनोरंजन और लोकप्रिय एफएम चैनलों के कार्यक्रमों का एक बेहतरीन मिश्रण प्रस्तुत किया गया। इस पहल से आकाशवाणी की पहुंच भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गई, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्पष्ट प्रसारण पहुंचना आसान हो गया। तकनीक के इस नए प्रयोग ने रेडियो को डिजिटल युग की ओर अग्रसर किया और आकाशवाणी को एक आधुनिक और वैश्विक मंच पर स्थापित किया। और इसके अलावा ये ऐतिहासिक सफर देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण को दर्शाता है, जब एक ऐसी आवाज़ का जन्म हुआ जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। आकाशवाणी एक ऐसा केंद्र बन गया जहां आवाज़ों को पंख मिले और इतिहास को एक माइक मिला। इन शांत दीवारों को ऐसी गूंज निकली जिसमें एक राष्ट्र ऐसे राष्ट्र को आकार दिया, तब से लेकर अब तक भावपूर्ण और अविस्मरणीय बना हुआ है। तो ये रही आकाशवाणी की बात। अब हम सुनवाते हैं आपको इसी से संबंधित एक खास कार्यक्रम। आकाशवाणी के 90 वर्ष पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज की पत्रकारिता विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर शशि रानी से विशेष बातचीत, और बात कर रही हैं रश्मि कुकृति। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल एफएम गोल्ड, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप ये कार्यक्रम सुन पा रहे हैं। और दोस्तों, ये कार्यक्रम है घर आंगन। आप जैसा कि जानते ही हैं कि आकाशवाणी केवल प्रसारण सेवा ही नहीं, बल्कि हमारे देश की चेतना का वो अदृश्य तंत्र है जिसने मिट्टी से उठती आवाजों को, सीमाओं पर तैनात सन्नाटों को और घरों में भीतर धड़कते छोटे छोटे सपनों को एक तरंग में बांध दिया है। और आकाशवाणी के जो 90 साल है ना, उसके इतिहास में तो महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही ही है। ये जो भूमिका है वो केवल भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सशक्त उपस्थिति के रूप में सामने आई है। और इसी श्रृंखला में

0: इसी का एक उदाहरण है जो आज हमारे मेहमान हैं, जो स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर शशि रानी। डॉक्टर शशि रानी दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हैं। आप प्रोफेसर के रूप में मीडिया पढ़ाती हैं छात्र छात्राओं को। तो बहुत स्वागत कर रहे हैं उनका FM गोल्ड के स्टूडियो में। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर शशि जी, आप तो मीडिया पढ़ाती हैं
1: जी।
0: और मीडिया में एक बहुत सशक्त उपस्थिति है हमारे FM चैनल्स की, हमारे मीडियम वेव चैनल्स की और अन्य जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी। तो उनके बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे और आपके जो रेडियो का रुझान है उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो आप ये बताएं कि रेडियो से कैसे जुड़ी हैं आप?
1: रेडियो से तो मैं बचपन से ही जुड़ी हूँ। जब कभी मैं 10वीं 12वीं क्लास में थी तो मैथ्स के सवाल करते हुए भी रेडियो मेरा चलता ही रहता था, या कहीं एक कमरे से दूसरे कमरे में सफाई के लिए जाना है तो वहाँ पे भी रेडियो सेट लेके ही जाना था। रात को हवा महल देखना, गाने सुनना, तो ये तो पुराना ही रहा है। रेडियो सुनना तो मेरी हॉबी रहा है बचपन से।
0: जी, क्या बात है। देखिए, एक मीडिया पढ़ाना और रेडियो से प्रेम, ये तो जिसे कहते हैं ना सोने में सुहागा जैसी बात हो गई।
1: जी,
0: और इसके अलावा अपने बारे में कुछ बताएं।
1: मैं पिछले 28 वर्षों से अम्बेडकर कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, और मेरा जो काम है, जो मेरा रिसर्च वर्क था, वो कुकुरमुत्ता पर मैंने MPhil किया था, और हिंदी की प्रगतिशील कविता में लोक तत्व पर मेरा PhD है, जो कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ निर्देशन में करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार का जो पाठ्यक्रम है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला कॉलेज है जहाँ पर ये शुरू हुआ। और अगर मैं ये कहूँ कि ऑनर्स के स्तर पर ये पूरे भारत का पहला अगर कॉलेज है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ, डायरेक्ट UGC से ही ये कार्यक्रम जो आया था। अब तक अंग्रेजी वगैरह में थे लेकिन हिंदी में नहीं था, तो हिंदी माध्यम से पत्रकारिता में आगे बढ़ना, जबकि सोचा जाता है कि अंग्रेजी के बिना इसमें कोई भविष्य नहीं है, तो उस भविष्य को तलाशने की और एक ही कोशिश थी, अच्छा प्रयास था।
0: एक महिला प्रोफेसर के रूप में क्या लगता है कि कहाँ तक रेडियो वो भूमिका निभा पाया है?
1: मुझे लगता है कि यदि मैं ये कहूँ कि रेडियो हमारी जो भारतीय जीवन धारा है उसकी प्राण रेखा है, जीवन रेखा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी,
0: वाह, क्या बात है।
1: क्योंकि अन्य जो माध्यम है वहाँ तक जो हमारा हाशिए का समाज है उनकी बात नहीं की जाती है,
0: बिल्कुल सही।
1: लेकिन जो हमारा रेडियो है वो हाशिए के समाज की बात करता है, उन लोगों की बात करता है जहाँ तक और लोग नहीं जाते हैं। तो
0: आकाशवाणी,
1: इस रूप में जो आकाशवाणी है उसकी जो भूमिका है उस तक कोई जा ही नहीं सकता।
0: क्योंकि जब हम बात करते हैं हाशिए के समाज की, तो वाकई आकाशवाणी की जो सोच है, उसकी जो कार्यक्रमों की जो विचारधारा है, उसका पहला जो मंत्र है वो यही है कि ऐसे लोगों के लिए काम करें जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है वो आवाज वहां तक पहुंच पाए, कोने कोने तक पहुंच पाए। और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब उन्होंने अपनी बात को पहुंचाना चाहा तो उन्होंने आकाशवाणी को चुना ताकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो उनकी बात पहुंच
1: हाँ,
0: पाए।
1: क्योंकि एक रेडियो एक सेतु का काम कर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री के मन की बात हो या जनता के मन की बात हो, तो एक दूसरे तक जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक समस्याओं के समाधान नहीं निकलेंगे।
0: जी बिल्कुल, इसके कार्यक्रम भी समर्पित रहे हैं युवाओं
1: जी
0: के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, और कदम से कदम मिलाकर चलता रहा है। अब आपसे जानना चाहूंगी कि आप जब अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाती हैं उनका आकाशवाणी के प्रति कैसा रुझान है?
1: आजकल के जो बच्चे हैं वो आकाशवाणी की तरफ उनका रुझान, जैसे समाचार के प्रोग्राम हो गए, उनकी तरफ थोड़ा कम है। उनके जो FM के जो अन्य चैनल है उनकी तरफ जो रुझान है उनका ज़्यादा है। लेकिन जैसे अगर अगर मीडिया के स्टूडेंट्स होने के नाते अगर वो उनसे जुड़े तो बहुत कुछ मिलेगा उन्हें सीखने के लिए, जैसे बच्चों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तरह तरह के जो प्रोग्राम है इसमें होते हैं, और उनसे कुछ एक सीख मिलती है।
0: बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि जब नए गानों की सुनने की बात आती है तो जो नए बच्चे हैं वो FM रेनबो से जुड़ते हैं,
1: हाँ
0: और
1: बिल्कुल,
0: उसके बाद जब उनको समाचार सुनने होते हैं, क्योंकि भाई करियर भी तो बनाना
1: हाँ
0: है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: उनको जब समाचारों को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक फुल अप टू डेट रहना होता है, तो वो FM गोल्ड से जुड़ते हैं क्योंकि वहां समाचार भी है और गीत संगीत भी है, तो कहीं ना कहीं वो ये रेडियो से कनेक्ट बन ही जाता है।
1: बिल्कुल।
0: ज्यादातर आप आकाशवाणी कब सुनती हैं?
1: ज्यादातर मैं आकाशवाणी जैसे या तो ड्राइव कर रही हूँ तब सुनती हूँ,
0: जी,
1: या फिर रात को जैसे कुछ काम करना है तो उस दौरान मैं आकाशवाणी
0: यानी
1: सुनती
0: कि
1: हूँ।

0: आपकी जो दिनचर्या है उसमें से आप समय निकाल ही
1: हाँ, सुबह
0: लेती हैं।
1: जाते हुए भी सुना जाता है, दोपहर को आते हुए भी सुना जाता है, या शाम को कभी जा रहे हो तब भी सुना जाता है,
0: जी,
1: तो आकाशवाणी तो सुना ही जाता है।
0: तो यानी कि आप जुड़ी हुई हैं। कौन कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं?
1: जैसे कई बार दोपहर को जाती हूँ तो सखी सहेली आ रहा होता है,
0: जी
1: शाम को जाती हूँ तो सैनिक भाइयों के लिए प्रोग्राम आता
0: जय
1: रहता है, मार्केट
0: जी,
1: मंत्र आ रहा
0: मार्केट
1: होता है,
0: मंत्र एफएम गोल्ड पर आता है।
1: जी तो ये प्रोग्राम मैं सुनती
0: तो
1: हूँ।
0: देखिए, हमारे साथ यहाँ शशि रानी जी मौजूद हैं और हमारी एक प्रबुद्ध श्रोता हैं, एक समर्पित श्रोता हैं, मीडिया पढ़ाती हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं आकाशवाणी के बारे में। मीडिया पर एक

0: उसकी वजह से जो मीडिया के जो छात्र हैं उनके लिए संभावनाएं कम हो गई हैं, लेकिन मैं उसको दूसरी तरीके से देखती हूँ। मुझे लगता है कि जो AI है वो एक यंत्र है, तो लेकिन जो मनुष्य की जो चेतना है, मनुष्य का जो स्पंदन है, उसकी जो संवेदना है, उसका वो पर्याय नहीं हो सकता। तो उसके लिए तो एक मनुष्य की, एक संवेदना की, एक चेतन व्यक्ति की ही जरूरत पड़ेगी। तो उससे मुझे लगता है कि घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको साधन बनाए, साध्य ना बनाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जब कंप्यूटर्स के आने की बात हुई थी
0: जी
1: तो भी ये एक डर जनमानस में हुआ था कि अगर कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो लोगों की नौकरियां कम हो
0: कम हो
1: जाएंगे,
0: जाएंगे।
1: जबकि हमने देखा जैसे जैसे समय बीता कि कंप्यूटर्स के जरिए कितने लोगों को रोजगार मिले। तो मुझे लगता है शायद AI में भी कुछ ऐसा ही होने वाला
0: हाँ
1: है,
0: बिल्कुल,
1: बेहतरी की ओर जाएंगे। मुझे लगता है और जॉब्स क्रिएट होंगे, और लेकिन अलग अलग तरह के हो
0: अलग
1: सकते
0: अलग तरह
1: हैं।
0: के,
1: हमें अपने आप को दोबारा रचने की जरूरत है।
0: बिल्कुल
1: तो महिलाओं की क्या भूमिका देख रही है मीडिया में, कितना मुश्किल होने वाला है, कितना आसान होने वाला है?
0: जहां तक महिलाओं की बात है तो कोई भी जो समाज है, अगर जब तक वो महिलाओं को साथ नहीं लेके चलेगा तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता।
1: जी
0: वो एक गाड़ी के दो पहिए की तरह है, तो जब महिलाएं साथ होगी तभी समाज होगा। मुझे लगता है कि महिलाओं के आने से जो एक परिवेश है वो एक समरसता का परिवेश बनता है, और वो हमारे आसपास घरों में जितना ज्यादा बढ़ेगा, घरों में हो या कार्यक्षेत्र में हो या समाज में हो, जितना हम उनके लिए संवेदनशील रहेंगे उतना ही जो समाज है जवाबदेह भी होगा, और उनकी जो जिम्मेदारी है उसके प्रति वो महसूस भी करेंगे। तो महिलाएं तो साथ साथ चलनी ही चाहिए, क्योंकि जो क्रिएटिविटी, जो रचनात्मकता उनके अंदर है, उसका जो अभाव है वो नहीं रहेगा फिर।
1: बहुत सुंदर। डिजिटल मीडिया का क्या भविष्य देख पा रही हैं, और जो छात्र छात्राएं करके निकलते हैं, मीडिया की डिग्री लेकर निकलते हैं, वो किस प्रकार से उसके साथ समन्वय बिठा पाते हैं?
0: जैसे इसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए उनका अखबार में रुझान है, तो वहां पर उनका जो स्क्रिप्टिंग है, जो लेखन का स्तर है, जब वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है तो फिर वो कोई भी जो क्षेत्र हो तो उसके लिए मुश्किल नहीं रहता, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो रेडियो, क्योंकि लेखन से ही हर काम जो है वो शुरू होता है। अगर आपका लेखन अच्छा है तो आप मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो दूरदर्शन, आकाशवाणी, इसके अलावा जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं उन सभी में कार्यरत हैं।
1: और चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को?
0: चलते चलते मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप FM से, आकाशवाणी से जरूर जुड़े। जो भाषा FM के पास है, आकाशवाणी के पास है, वो आपको दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगी। भाषा के साथ खिलवाड़ की जो गुंजाइश है वो यहाँ पर नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाषा ही हमारा जो है माध्यम है और हमारी पहचान है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कौशूल। तो अपनी भाषा जो है वो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, तो उससे जुड़ना अपनी पहचान से जुड़ना है, और इसी को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा शशि जी ने। और आकाशवाणी भाषा का तो संसार है ही, बल्कि यहाँ स्मृतियाँ, संवेदनाएँ और सामूहिक चेतना का भी ये एक संसार रचता है। और हम ये भी कहेंगे कि महिलाओं ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इसकी आत्मा के समान रही हैं। तो नारी प्रतिभा, संवेदनशीलता और समर्पण ने आकाशवाणी को वो आत्मीयता दी है श्रोताओं, जिससे कि ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन गया है, जैसे कि ये कार्यक्रम है जिसका नाम है घर आंगन। और दोस्तों, आज इस घर आंगन में हमारे साथ हैं शशि रानी जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में मीडिया पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं। आज हमने उनसे ढेर सारी बातें की, तो हम उनकी पसंद का गीत सुनेंगे और फिर लेंगे विदा। इस मौके पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
1: वाह क्या बात है। तो आइए सुनते हैं दिल एक मंदिर फिल्म का ये गीत।

0: इतना सुरीला ये गीत था। इस गीत के साथ ही समेटते हैं ये मुलाकात, फिर मिलेंगे, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज की पत्रकारिता विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर शशि रानी से विशेष बातचीत। बात करी थी रश्मि कुकरेती।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: जी हाँ, आकाशवाणी के 90 वर्षों की शुरुआत कितनी खुशी की बात है ना। और सच में जब हम खुशी की बात करते हैं तो खुश रहना सेहत और रिश्तों के लिए फायदेमंद साबित होता है। जैसा आप जानते हैं, हंसी की ठहाके, मुस्कान, खुशियाँ आपके दिन भर की थकान दूर कर देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी इसका कारण जाना है? दरअसल गप्पे मारना समय की बर्बादी नहीं बल्कि सेहत का राज है। अपने साथी और दोस्तों के साथ गप्पे मारना आखिर किसे पसंद नहीं होता। अब साइंस भी इस बात को मानती है कि गपशप करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं और इससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो एक रिसर्च में पाया गया है कि जो साथी गपशप करते हैं वो काफ़ी खुश रहते हैं और ये गपशप आमतौर पर मज़ेदार और हल्की फुल्की होती है, तो इनसे रिश्तों में भी ताजगी बनी रहती है। ये बातें आपके अनुभव, मजाक या कॉमन आदतों से संबंधित हो सकती हैं। इससे एक दूसरे पर भरोसा और साझा यानी कि समझ पड़ती है और बातें करने से दो लोगों के बीच की दूरियां कम होती हैं। जब दो लोग बातें साझा करते हैं तो अक्सर एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ी होती हैं। जब आप किसी के साथ दिल की बातें करते हैं तो मन को राहत मिलती है और मूड भी अच्छा हो जाता है। और ख़ास तौर पर महिलाओं पर तो गपशप से पॉजिटिव असर भी देखने को मिला है और वे खुद को ज़्यादा खुश, संतुष्ट और इमोशनली सिक्योर महसूस करती हैं। तो है ना कितना आसान सा उपाय, गपशप करिए, खुश हो जाइए और अपने और रिश्ते को यानी कि सेहत को भी साथ साथ में मजबूत बनाइए।

आधा आधा बांट लीजिए, लेकिन उससे पहले कुछ काम भी कर लीजिए, अपने आप को स्वस्थ रख लीजिए। यानी कि सुबह की पहली किरण के साथ एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और महसूस कीजिए कि ये है योग। पर सिर्फ योग सिर्फ एक दिन का नहीं, रोज जीवन जीने का तरीका है, यही है योग की शुरुआत। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, थकान, कमर दर्द, बीपी, शुगर, ये सब आम हो गया है। गोलियां खाते हैं, पर हल कहाँ है? हल है आपके अंदर। योग करें, स्वस्थ रहें। योग मतलब सिर्फ आसन नहीं, योग है शरीर, मन और सांस को जोड़ना। रोज 30 मिनट काफी है। शुरुआत कीजिए अनुलोम विलोम से। सांसों को साथ लिया तो मन शांत, और फिर कीजिए ताड़ासन। रीढ़ सीधी, कद लंबा, आत्मविश्वास ऊंचा। बुजुर्गों के लिए सुखासन, ऑफिस वालों के लिए कुर्सी पर बैठे बैठे गर्दन के व्यायाम। योग सबके लिए सब जगह है। योग शरीर को लचीला बनाता है, पर असली कमाल मन पर करता है। यानी गुस्सा कम, नींद बेहतर, इम्यूनिटी मजबूत। जीवन में हमें सिखाया कि दवा के साथ दुआ और प्राणायाम भी जरूरी है। ना मैट चाहिए ना पैसा, बस एक संकल्प कि मैं रोज योग करूंगी, अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगी। क्योंकि जब आप बदलेंगे तभी देश बदलेगा। तो उठिए, सांस लीजिए और बोलिए अपने साथ, योग करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।

और अब बात करते हैं कुछ घूमने और घुमाने की। जी हाँ, यात्रा करना जीवन से तनाव को कम करना है, यानी यात्रा करना जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये व्यस्त दिनचर्या से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है। कई लोग यानी कुछ लोग नई जगह खोज करने और लोगों से बातचीत करने, अलग अलग संस्कृति, संगीत, त्यौहार और दुनिया के लोगों से जीवन जीने के तरीकों के बारे में जानने के लिए यात्रा करते हैं, जबकि कुछ लोग शांति, खुशी और आत्म प्रेम पाने के लिए यात्रा करते हैं। हमारा दैनिक जीवन तनावपूर्ण स्थितियों से भरा हुआ है, ऐसे में अपने दिमाग को शांत करने और तनाव मुक्त करने का एक आदर्श तरीका है यात्रा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए यात्रा बेहद ज़रूरी है, यानी यात्रा करने से ऐसे कौशल विकसित होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं था। यात्रा करने से आपको नई भाषा, संस्कृति सीखने को भी मिलती है, यानी यात्रा आपको अच्छी कहानियाँ भी देते हैं और इससे सार्थक रिश्ते भी बनते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, यात्रा करने से आपको अपने घर की याद बहुत ज़्यादा आती है और अपने घर से ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो यात्रा कीजिए और अपने तनाव को टाटा बाय बाय कीजिए।

और दोस्तों आप क्या सुनना चाहते हैं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल भेज सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।

अब हम यही कहना चाहते हैं कि हमें यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के इस शो में, और इसी वादे के साथ कि आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए आप रहें खुश, स्वस्थ और मस्त। तो दीजिए इजाजत सिमरन कौर को, नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता

0: सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu has said that education is a powerful means of empowerment as it enables individuals to become self-reliant, aware and capable. Addressing the tribal beneficiaries of scholarship scheme in New Delhi today, the President said true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically and educationally. She highlighted that the government scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities.
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न
1: The Ministry of Home Affairs has notified the Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026, introducing key changes to registration timelines and the appeals mechanism under the Immigration and Foreigners Rules 2025. The amendment allows registration to be completed at any time before the expiry of 180 days from arrival in India. Previously, registration had to be completed within 14 days after the end of the 180-day period. However, late registration beyond this period will now be permitted only under emergent circumstances. The Chief Justice of India, Justice Surya Kant, administered the oath of office to 5 new judges of the Supreme Court today. Justices Sheel Nagu, Sri Chandrasekhar, Sanjeev Sachdeva and Arun Valli and Senior Advocate V. Mohana took oath as judges of the Apex Court. The centre had cleared their appointments yesterday on the recommendation of the Supreme Court Collegium. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Deputy President of South Africa, Paul Mashatile, in New Delhi today. They discussed opportunities in trade, investments, MSMEs, digital and infrastructure domains. They also agreed on working closely in international forums. In a social media post, Dr. Jaishankar said he appreciates Paul Mashatile's strong commitment to deepening the long-standing partnership between the two countries. The anti-terrorism squad of Uttar Pradesh has arrested a young man named Mohammad Sheikh from Azamgarh, allegedly linked with Pakistani gangster Shehzad Bhatti. The ATS received information that Pakistan's ISI and terrorist organizations were collaborating with Bhatti with the aim of spreading terror and threatening India's sovereignty, unity and territorial integrity. Intelligence was collected about Mohammad Sheikh, who had connected with Shahzad Bhatti's terrorist gang via WhatsApp. The Central Board of Secondary Education CBSE portal for verification of issues in the supplied scanned copy of answer books and for re-evaluation of answers has been made live from today and will remain open till the 6th of June. The CBSE said the facility can only be availed by the students who have obtained scanned copy of their evaluated answer books. The board stated that Aadhaar verification has been included for security reasons. For children who do not have Aadhaar, the parents, relatives or guardians' Aadhaar details can be used. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over interior Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. IMD said coastal Andhra Pradesh, Gujarat, Odisha, Rajasthan and West Madhya Pradesh can experience thunder squall with wind speed reaching 50 to 60 kilometers per hour. The Met Department predicted

0: thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttarakhand, West Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for today. Similar conditions are likely to prevail over Konkan and Goa, Lakshadweep, Maharashtra, Rayalaseema, Saurashtra and Kutch, Telangana, the Andaman and Nicobar Islands and Himachal Pradesh. Benchmark domestic equity indices were trading on a negative note in afternoon trade today. The Sensex fell 81 points to 74,186, while the Nifty dropped 44 points to 23,338 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और 15 सेकंड, और ये वो वक्त है जिस में आपको रहता है उस मन पसंदीदा आपके प्रोग्राम का, जिसका नाम है एक ही फिल्म से। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम एक ही फिल्म लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। और आज इस खूबसूरत फिल्मी सफर में हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने दोस्ती, वर्ग, संघर्ष और इंसानी रिश्तों की नई परिभाषा लिखी है। एक ऐसी फिल्म जिसमें दो महान कलाकारों राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की अदाकारी ने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं आज 1973 की एक कालजयी फिल्म की, जिसका रिलीज हुआ था 1973 में। निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी, निर्माता थे जयेंद्र पांड्या और संगीत आर डी बर्मन साहब के थे। और गीत जो लिखे थे खूबसूरत, जो आप सुनेंगे कुछ ही देर में, वो आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। अब इतनी सारी दो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे ही दी है, और ये भी बता दूं कि ये फिल्म दोस्ती और सामाजिक असमानता के विषय पर आधारित थी। उस दौर में जब मसाला फिल्मों का बोलबाला था, तब इस संवेदनशील कहानी और शानदार अभिनय के दम पर इस फिल्म ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। थोड़ा बहुत हिंट आपको हो ही गया होगा, बाकी जो है वो इस गीत को सुनने के बाद हो जाएगा। तो आप इस गीत को सुनिए और पहचानने के बाद हमेशा की तरह अपने जवाब मेल के जरिए हम तक पहुंचा दीजिए। मेल आईडी है हमारा ip.radio@gmail.com। तो ये वो रास्ता है जिसके जरिए आप मेरे हम सफर बन सकते हैं। तो फिलहाल सुनाती हूँ किशोर दा की आवाज़ में इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बहुत आसानी से मिल जाते हैं संदेशों के जरिए। जी हाँ, प्रोग्राम कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके संदेश हमें एहसास दिला देते हैं कि आप हमारे करीब हैं। फिलहाल ढेर सारे संदेश पहुँच रहे हैं सही जवाब के साथ, और आपने पहचान ही लिया है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1973 की एक सुपरहिट फिल्म नमक हराम। ये फिल्म आनंद के बाद ऋषिकेश मुखर्जी की दूसरी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया था। दिए जलते हैं, अभी आपने जो गीत सुना, नदिया के से दरिया और मैं शायर बदनाम, ये सबसे यादगार गीत हैं जिन्हें किशोर दा ने दमदार तरीके से गाया था। और ये फिल्माए गए थे राजेश खन्ना साहब पर, जिन्होंने अपने भावपूर्ण अभिनय और चेहरे के भाव से लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और 1973 की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और इस फिल्म को तमिल में उनाकांगा नाम से रीमेक किया गया था। ये 1970 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे की जो कपड़ा मिल थी उसमें मुद्रा स्फीति की पृष्ठभूमि में श्रमिक संघ थे उनके उदय पर ये फिल्म केंद्रित थी। फिल्म में राजेश खन्ना, रेखा, सिमी ग्रेवाल, अमिताभ बच्चन, इनके अलावा नजर आए थे असरानी, रजा मुराद, ए के हंगल, ओम शिवपुरी। हमने आपको बताया कि संगीत आरडी बर्मन साहब का था, पटकथा गुलजार साहब की लिखी हुई थी और गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था और 1974 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का उन्होंने अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। राजेश खन्ना जो इस फिल्म में सोमनाथ चंद्र सिंह यानी कि सोमू के किरदार में नजर आए थे, बिक्की महाराज यानी कि बिक्की कौन हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन, जी हाँ उन्होंने इस किरदार को निभाया था। रेखा श्यामा के किरदार में थी, सिमी ग्रेवाल मनीषा के किरदार में दिखाई दी थी, ए के हंगल बिपिन लाल पांडे के किरदार में दिखे थे, श्यामा के भाई धोनू के रूप में असरानी थे, मनमोहन ने जयसिंह के का किरदार प्ले किया था, दामोदर महाराज के रूप में ओम शिवपुरी थे, रजा मुराद आलम बने थे और जय श्री टी की भी एक बेहतरीन भूमिका थी इस फिल्म में। तो चलिए इतनी सारी बात हमने कर ली और आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत आप तक पहुंचा रही हूं।

1973 की सर्दियों में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम रिलीज हुई और ये उनके अब तक की सभी फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। अपनी दिल को छू लेने वाली कॉमेडी और सौम्य पारिवारिक ड्रामा फिल्मों के लिए मशहूर इस फिल्म में राजनीति, सत्ता और वर्ग संघर्ष जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, लेकिन राजेश खन्ना अभिनीत ये फिल्म उससे कहीं बढ़कर साबित हुई बॉलीवुड में आए बदलाव का एक प्रतीक के रूप में। आज इसे हम दो दिग्गजों की टकराव के रूप में भी याद कर सकते हैं, जिसमें उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना का सामना हुआ था उभरते सितारे अमिताभ बच्चन के साथ। जी हाँ, नमक हराम 1964 की हॉलीवुड क्लासिक बैकेज की कहानी पर आधारित है, जिसका मूल विचार था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का जो टकराव और ये संघर्ष किस प्रकार एक मित्रता, नैतिकता और मानवीय संबंधों को नष्ट करता है, ये सब बैकेट में दिखाया गया था। बैकेट में रिचर्ड बर्टन और पीटर ओटूल जैसे कलाकार थे, वहीं ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी खुद की दिग्गज जोड़ी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को कास्ट किया, जो आनंद फिल्म के बाद एक बार फिर साथ में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी दो दोस्तों की थी, सोमू यानी कि अमिताभ बच्चन और विक्रम यानी कि राजेश खन्ना। विक्रम एक अमीर उद्योगपति

का बेटा है जबकि सोमू उनका घनिष्ठ मित्र है। ये कहानी होनी थी लेकिन बाद में इस कहानी में हेर फेर किया गया था और ऋषिकेश चाहते थे कि जो आनंद फिल्म में उन्होंने किया था इन दोनों कैरेक्टर के साथ में, तो यहाँ पर उनके उनका जो व्यक्तित्व था वो थोड़ा सा अलग दिखाया जाए। तो 1970 के दशक में जब मिल मालिकों और मजदूर संघों के बीच जो संघर्ष था उसकी पृष्ठभूमि पर इस फिल्म को बनाया गया और ये फिल्म दो घनिष्ठ मित्रों की कहानी को भी बयां करती थी जो संघर्ष में एक दूसरे के विपरीत पक्षों में आ जाते हैं। राजेश खन्ना ने, हमने आपको बताया, सोमू का किरदार निभाया था जो एक गरीब विनम्र और आदर्शवादी व्यक्ति है, जबकि अमिताभ बच्चन ने बिक्की का किरदार निभाया था जो एक मिल मालिक का रंगीन मिजाज बारिश है। मजदूरों के साथ झड़प में बिक्की के अहंकार को ठेस पहुंचती है। सोमू बदला लेने के लिए मिल के मजदूरों के रूप में उनके साथ काम करने लगता है लेकिन जब वो मजदूरों के बीच रहकर देखता है तो उसकी जो सहानुभूति होती है वो बदल जाती है। प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट का चमचा करार दिए जाने पर सोमू की हत्या कर दी जाती है और एक चौंकाने वाले मोड़ में बिक्की दोष अपने ऊपर ले लेता है और जेल चला जाता है। ये थी फिल्म की कहानी। लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स था, इसका जो अंत था, वो थोड़ा सा विवाद का विषय बन गया था। कैसे बना था वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि ये जो फिल्म थी, ये फिल्म एक कहा जाता है कि इसकी जो क्लाइमेक्स थी, उसकी शूटिंग के समय जब सेट जो था वो बहुत भावुक हो गया था, फिल्म का अंत इतना असरदार बनाया था कि जो यूनिट के सदस्य थे वो भी कुछ देर तक चुप खड़े रहे थे। तो यही तो कमाल था नमक हराम का, एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ पर्दे पर कहानी नहीं दिखाई थी बल्कि दिलों में दोस्ती और इंसानियत की भी गहरी छाप छोड़ी थी। आपने भी अगर इस फिल्म को देखा होगा तो आपने अंदाज लगाया होगा कि इस फिल्म में वो जादू था जिसकी कल्पना शायद उस वक्त नहीं की जा सकती थी और ऋषिकेश दा ने वो करके दिखा दिया था। आपको सुनवाते हैं एक और किशोर दा की आवाज में इस फिल्म का गीत और आपके ढेर सारे संदेश भी हमारे पास पहुंच रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे और साथ ही इसका क्लाइमेक्स में किस तरीके से बदलाव किया गया वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल सुनिए इस गीत को।

72 में ही अपने सोलो सीन पूरे कर लिए थे, जबकि राजेश खन्ना कई फिल्मों में व्यस्त थे, इसलिए 1973 तक सब कुछ बदल चुका था। जंजीर के गुस्से वाले नौजवान की छवि को उजागर कर दिया था अमिताभ जी ने, और वो अब एक उभरते सितारे थे। अब वे अपने मुख्य दृश्यों की शूटिंग जब वो साथ में कर रहे थे, तो टकराव का जो केंद्र बिंदु था वो था इस फिल्म का क्लाइमेक्स। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि नमक हराम की पूरी शूटिंग के दौरान दोनों अभिनेताओं को क्लाइमेक्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि इस क्लाइमेक्स के साथ उन्हें डर था कि कोई ना कोई विवाद ना हो जाए, और ऐसे ही हुआ था। फिल्म के मूल क्लाइमेक्स के अनुसार बैकिच की जो कहानी थी, जो इसका ओरिजिनल फिल्म थी, उससे हटकर अमिताभ के किरदार की मृत्यु होनी थी। जब राजेश खन्ना साहब को इस बारे में पता चला तो वे खुश नहीं हुए। राजेश खन्ना को मरने वाले किरदारों से खास लगाव था, ये बात सभी जानते थे। उनका मानना था कि उनकी सबसे यादगार फिल्में वो थी जिनमें उन्होंने पर्दे पर अपनी मृत्यु का दृश्य प्रस्तुत किया था। नमक हराम में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मृत्यु का जो दृश्य है वो उन्हीं पर होना चाहिए। राजेश खन्ना साहब अड़ गए। ऋषिकेश से उन्होंने कहा कि बड़े स्टार होने के नाते तो जो मृत्यु वाला दृश्य है वो उन्हें मिलना चाहिए। अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने बहुत सारी उनसे बातें कहीं ऋषिकेश से, और साथ ही साथ अपनी तस्वीर पर फूलों की माला भी चढ़ा दी ताकि जो भव्य फिल्मी मृत्यु हो उसकी मांग पूरी हो सके। ये ऋषिकेश मुखर्जी के लिए एक अंतिम संकेत भी था कि अगर आपने मुझे नहीं मारा तो शायद फिल्म में मैं अपना अपने आप को रोक भी सकता हूँ। खैर, उनकी बात मानी गई और राजेश खन्ना साहब को मृत्यु वाला दृश्य जो था वो मिल गया। नमक हराम फिल्म में गुलजार साहब ने बताया था कि इसका क्लाइमेक्स बदलना पड़ा, क्योंकि ऋषिकेश जो साहब थे उन्होंने राजेश खन्ना की मृत्यु वाली बात को मान लिया था उनकी जीत के बाद। अमिताभ बच्चन लेकिन इस फैसले से नाराज थे। राजेश खन्ना के कहने पर स्क्रिप्ट में बदलाव तो किया गया, लेकिन शूटिंग के दिन ये बात अमिताभ बच्चन जी से छुपा ली गई थी, और इस बात का उनको दुख हुआ कि मुझे धोखा दिया गया है। और इसी बात पर कई दिनों तक, शायद इस फिल्म के बाद, इन दोनों ही एक्टर ने साथ में कभी काम नहीं किया और साथ उनकी बात भी नहीं हुई। तो ये थी इस फिल्म का क्लाइमेक्स जो हम आपको बताना चाह रहे थे। और अब हमारे पास ढेर सारे आपके संदेश भी आ रहे हैं, लेकिन हमने आपको मैं शायर बदनाम इस गीत को थोड़ा सा रोक दिया था, तो आपकी इच्छा, आपके बहुत सारे संदेश आ रहे हैं इस गीत को सुनने के लिए। एक बार फिर से थोड़ा सा सुनवाती हूँ, फिर आपके संदेश शामिल करूँगी।

बीरन गांव गुजरात से अजीत भाप सर प्रमीला परवीन सुल्ताना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमेशा की तरह इन्होंने ढेर सारी जानकारी हम तक पहुंचाई है। नीतीश कुमार तनुजा, ईशांत लखन जी पहाड़ा पलारी छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं। ये संदेश है सुरेश यादव अनीता पैठन से हमें भेज रहे हैं। सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन जी शांति निगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मोहन उषा मोहन चिलू नायक मधु नायक जी पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ हैं। और डीवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से हमारे साथ हैं। सुनील पाठक जी हमें सुन रहे हैं और इन्होंने हमें ये संदेश कहाँ से पहुँचाया है ये थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा है। अनारकली बाज़ार जगराव पंजाब से इनके साथ कमल और गाव्या मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन और शालीमार बाग दिल्ली से अशोक कुमार सहगल जी हमें सुन रहे हैं। शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी हैं। ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव प्रशांत संचित प्रथमेश

राणी जी और ढेर सारे इनके दोस्त हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर सीता गीता हमारे साथ हैं, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम, समलील नवापारा से मुकेश, श्रद्धा अदिति, राधे, दीपक गुप्ता हैं, बचिंगखेड़ा पंजाब से मिंची टोमस, पिंकी लवली, आरती हैं, हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से जुड़े हुए हैं, भूषण खेरा जी हमारे साथ, विष्णु खेरा विशाल जी के साथ फालजिका पंजाब से जुड़े हुए हैं, राज रेडियो ग्रुप राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हैतल और राकेश जैन है, जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा जी हमारे साथ हैं, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप लोहरगढ़ ठाकुरवाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, चिलू नायक जी, मधु नायक जी के साथ हमारे साथ हैं, नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस मानकर, निर्मला विशाल सोपान, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार इंगले हमारे साथ हैं, और ये सहारनपुर से सैयद मसरून, शाइना हसन, नाजिया जी का हमारे पास संदेश पहुंचा है, मामूलीबाड़ी महाराष्ट्र से सुपान ताइडे, वसंतराव, बी एस नवानकर, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी का एक और संदेश है, प्रकाश वर्मा निखिल प्रिंस छत्तीसगढ़ पलारी से है, और नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज हिमांशु हैं, मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन शहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अवान परिवार के सभी सदस्य, ऊपर कोच मोहला चौखंडी बुलंदशहर से हमें सुन रहे हैं, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी हैं, संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, पार जी बागपत उत्तर प्रदेश से हैं, सीपीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हैं, और राजू मिगलानी जी, बबीता मिगलानी, दुर्गा कॉलोनी हांसी से हमें सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेरी से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, असफाक अफरीन जी हमारे साथ हैं, देवनारायण साहू, योगिता गीतिका, चंचल रानी, उमाबाई हमें भोई नापार लाटापोर जिला बालो छत्तीसगढ़ से सुन रहे हैं, संदीप मक्कर जी हैं, चिरमिरिया कुरासिया, कारडी से इंद्रवान अनुभव, ऋषभ सिंह जी हमें सुन रहे हैं, और उसके बाद बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता, डिंपल देवांगन है, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित खुशी जी हमें सुन रहे हैं, तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सफ़र में, हमारे हम सफ़र बनने के लिए। कुछ दो संदेश और हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं हमारे साथ। ये जुड़े हैं पंकज शर्मा जी, प्रतिभा शर्मा जगमोहन जी के साथ में, ये मॉडल टाउन करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश अनिल मोहन जी का एक बार फिर आया है, तो आप सभी का हम दिल से शुक्रिया करते हैं हमारे साथ इस सफ़र में, आप हमारे हम सफ़र बने हैं, और आज की ये फिल्म उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, जब इम्तिहान दोस्ती जब इम्तिहान से गुजरती है तो रिश्तों की असली कीमत सामने आती है। नमक हराम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि दोस्ती, इंसानियत और सामाजिक न्याय की एक भावनात्मक दास्तान है। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की अदाकारी ने इसे हिंदी सिनेमा की अमर कृति बना दिया था। उम्मीद करते हैं कि आपने इस फिल्म को ज़रूर देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो हमेशा की तरह कहेंगे कि वक्त निकाल कर ज़रूर देखिए। फिलहाल अपने दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए, परसों यानी कि 4 तारीख को फिर एक नई फिल्म के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। इस बुलेटिन मैं अमन देव। पहला चुनवी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सिख्या शक्तिकरण का एक मजबूत साधन है क्योंकि व्यक्ति नूं आत्मनिर्भर जागरूक ते समर्थ बनाउंदी है। गृह मंत्रालय ने इमीग्रेशन ते विदेशियों बारे सोध नियम 2026 नूं नोटिफाई कर दिता जिस तहत विदेशियों बारे नियमों च महत्वपूर्ण बदलाव किए गए ने। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अज सुप्रीम कोर्ट के 5 नवे जजों नूं अहुदे दी सहुं चुकाई है। CBSE ने उत्तर पुस्तकावां च गलतियां दी तस्दीक अते पुनर्मुलांकन लई अज पोर्टल शुरू कर दिता है। पहली विश्व योगा सन चैंपियनशिप 4-8 जून तक अहमदाबाद विच होगी। हुण खबरां विस्थार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सिख्या शक्तिकरण का एक मजबूत साधन है क्योंकि यह व्यक्तियों नूं आत्मनिर्भर जागरूक ते समर्थ बनाउंदी है। अज नवी दिल्ली विच स्कॉलरशिप स्कीम के आदिवासी लाभपात्रियों नूं संबोधन करदिया राष्ट्रपति ने कहा कि सच्चा विकास ताही हासिल किया जा सकता है जदों समाज के सारे वर्ग समाजिक आर्थिक ते विद्यक तौर ते तरक्की करन। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कॉलरशिप स्कीमां ने उच्च सिख्या ते नवे मौकियां तक पहुंच नाल आदिवासियों के जीवन नूं बदल दिता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार आदिवासी विद्यार्थियों नूं अगे वधाउण लई यत्नशील है।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है ते इस नूं वधन फुलण लई सही मंच प्रदान किए जाने की लोड़ है। गृह मंत्रालय ने इमीग्रेशन ते विदेशियों बारे सोध नियम 2026 नूं नोटिफाई कर दिता है। इस विच इमीग्रेशन ते विदेशियों बारे नियम 2025 तहत रजिस्ट्रेशन की समा सीमा अते अपील विधि विच महत्वपूर्ण बदलाव किए गए ने। इस सोध तहत भारत विच पहुंचने तो बाद 180 दिन की म्याद खत्म होने तो पहला किसी भी समय रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। पहला 180 दिन की म्याद खत्म होने के 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन की लोड़ सी। इस समय तो बाद रजिस्ट्रेशन की सिर्फ हंगामी हालत से मंजूरी दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नवी दिल्ली में दक्षिणी अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातेले नाल मुलाकात की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार निवेश छोटे ते दरमियाने उद्यमा डिजिटल ते बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में मौकों बारे चर्चा की है। डॉ जयशंकर ने आपसी भाईवाली मजबूत करने श्री माशातेले की शलाघा की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोवे नेता इस गल ते सहमत हुए कि भारत ते दक्षिणी अफ्रीका नूं अंतरराष्ट्रीय मंचां ते रल के काम करना चाहिए है। सेहत मंत्रालय ने कहा कि देश विच हालां तक इबोला वायरस का कोई केस सामने नहीं आया। मंत्रालय ने सलाह दी है कि अजय व्यक्ति जो पिछले 21 दिनों विच इबोला प्रभावित देशों तो यात्रा करके आए ने ते बुखार सिरदर्द मांसपेशियों विच दर्द दस्त जां बिना किसी कारण दे खून वगण वर्गे लक्षणों के अनुभव कर रहे हैं तो उन्होंने अपने आप को अलग रखना चाहिए है। मंत्रालय ने अजे व्यक्ति को तुरंत स्थानक सेहत अधिकारियों ने सूचित करने के लिए भी कहा है। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 से कॉल करके सूचना ते सहायता हासिल कर सकते हैं। इस दौरान भारत ने इबोला वायरस का मुकाबला करने अफ्रीका को 43 टन डॉक्टरी सहायता की दूजी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस खेप में जांच निगरानी ते बचाव उपकरण ते दवाइयां शामिल ने। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अज सुप्रीम कोर्ट के 5 नवे जजों को अहुदे की सहुं चुकाई। जस्टिस

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबायली मुस्तफेदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की समाजी, इक्तसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। हुकूमत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक 2026 के तरमीमी जाब्तों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन जाब्तों के तहत रजिस्ट्रेशन के औकात और अपील से मुतालिक निज़ाम में अहम तब्दीलियां की गई हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों को ओहदे का हलफ दिलाया है। जवाबी पर्चों से मुतालिक इतराजात की तस्दीक और इनकी दोबारा जाँच से मुतालिक CBSE के पोर्टल पर 6 जून तक का कामकाज जारी रहेगा। राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहिली आंध्र प्रदेश में आज गरज चमक के साथ छींटा पड़ने के बारे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत और मेज़बान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अलाक्वामी मैच आज रात टॉन्टन में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाइख्तियार बनाने का एक ताकतवर वसीला है, क्योंकि ये लोगों को खुद कफील, बाशऊर और बासलाहियत बनाती है। आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप के कबायली मुस्तफेदीन से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हकीकी तरक्की तभी हो सकती है जब मुआशरे के सभी तबके समाजी, इक्तसादी और तालीमी एतबार से तरक्की करें। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि सरकारी स्कॉलरशिप स्कीमों की वजह से कबायली अफराद की ज़िंदगी में तब्दीली आई है, क्योंकि उन्हें आला तालीम और नए मौके हासिल हुए हैं। सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि भारत में सलाहियत की कोई कमी नहीं है और उन्होंने इसकी शनाख्त करके इसे परवान चढ़ाने के लिए सही प्लेटफॉर्म फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया।
1: भारत सरकार जनजातियों समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न
0: सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने आज तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर रियासत के आवाम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तेलंगाना अपनी सकाफती विरासत से मालामाल है और वहां के आवाम बहुत मेहनती हैं। उन्होंने कहा कि रियासत ने गुज़श्ता सालों के दौरान बहुत तरक्की की है और जिद्दत तराजी के शोबे में भी ज़बरदस्त पेशरफ की है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा कि तेलंगाना सकाफती विरासत और दरख्शां रिवायतों से मालामाल है और उसने मुल्क की तरक्की में गरां कदर तआवुन किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के तरक्याती सफ़र में मुकम्मल तआवुन फराहम करने से मुतालिक मरकज़ी हुकूमत के अहद की तौसीख़ की है, ताकि एक तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब को हकीकत की शक्ल दी जा सके। उन्होंने तेलंगाना के आवाम की अच्छी सेहत, खुशहाली और कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उमूर दाखला की वजारत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तरमीमी जाब्तों मजरिया 2026 को नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से वक्त की हद में अहम तब्दीलियां की गई हैं। साथ ही इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक 2025 के जाब्तों के तहत अपील दायर करने के तरीक़ेकार में तब्दीली की गई है। मस्कूरा तरमीम की रूह से भारत पहुंचने के 180 दिन की मुद्दत खत्म होने से पहले किसी भी वक्त रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करना होगा। अभी तक 180 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन का अमल पूरा करना होता था। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट

पांच नए जजेस को ओहदे का हलफ दिलाया है। जस्टिस शील नागो, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा, अरुण पल्ली और सीनियर वकील वी मोहना ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ लिया। मरकज ने कल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर उनके तकरूर की इजाज़त दे दी थी। ये तकरूर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 नाफिज किए जाने के चंद हफ्ते बाद किया गया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंजूर शुदा तादाद को 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया है, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE के पोर्टल पर आज से कामकाज शुरू हो गया है, जो 6 जून तक जारी रहेगा। ये पोर्टल फराहम की गई जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी में किसी तरह के एतराजात की तस्दीक और इनकी दोबारा जांच से मुतालिक है। CBSE ने कहा कि यह सहूलत महज उन तलबा के लिए दस्तयाब है जिन्होंने अपने जांच किए हुए जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल कर ली है। बोर्ड ने यह भी कहा कि हिफाजती वजूहात से आधार के जरिए तस्दीक भी की जाएगी। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है वो अपने वालिदैन, रिश्तेदारों या सरपरस्तों की आधार तफसीलात फराहम कर सकते हैं। CBSE ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो इस सिलसिले में वीडियो भी देख सकते हैं कि नंबरों की तस्दीक और दोबारा जांच के लिए किस तरह दरख्वास्त दी जाए। इंसानी हकूक के कौमी कमीशन ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस रियासत के सिद्धी ज़िले में एक साल के अंदर अंदर 53 ऐसी माओं की अमवात की खबर पर जारी किया गया है जो जजगी से पहले या बाद में फौत हो गईं। कमीशन ने मीडिया की एक रिपोर्ट पर अजखुद कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 हफ्ते के अंदर अंदर तफसीलात तलब की है। कमीशन ने कहा कि अगर खबर का ये मवाद सच पर मबनी है तो इससे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का एक तशवीशनाक मामला सामने आता है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक इबोला वायरस बीमारी के किसी भी मामले की कोई खबर नहीं मिली है। वजारत ने मशवरा दिया है कि अगर किसी शख्स ने गुज़श्ता 21 दिन में इबोला से मुतासरा मुल्क का सफ़र किया है और उसमें बुखार, सरदर्द, बदन दर्द, दस्त वगैरह जैसी अलामत पाई जाती हैं तो वो ख़ुद को अलग थलग कर ले और इसकी इत्तला मकामी सेहत हुकाम को दे। वजारत ने शहरियों से यह भी कहा है कि वो जानकारी, रहनुमाई और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जनूबी अफ्रीका के नायब सदर पॉल मैशटाइल से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, MSMEs, डिजिटल और बुनियादी ढांचों के शोबों में मौक़ों के बारे में तबादले ख्याल किया। डॉक्टर शंकर ने दोनों मुल्कों के दरमियान तवील मुद्दती साझेदारी को मजीद मुस्तहकम करने से मुतालिक जनाब पॉल मैशटाइल के अज़्म की सताइश की। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात से भी इत्तेफाक किया कि भारत और जनूबी अफ्रीका को बैन अलाक्वामी सतहों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने बीमारियों पर काबू पाने और उनकी रोकथाम के अफ्रीकी मरकजों को तिब्बी इमदाद की दूसरी खेप रवाना की है ताकि अफ्रीका में हिफ्जान सेहत में मदद दी जा सके और इबोला की रोकथाम की कोशिशों को मुस्तहकम बनाया जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये खेप हिफाजती मास्क, तशखीस और करीबी नज़र रखने से मुतालिक आलात, दवाओं और तगजियाती मुतबादिल पर मुश्तमिल है। म्यांमार के सदर ऊ मिन ऑंग लाइंग भारत के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज मुंबई पहुंचे। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने छत्रपति शिवाजी महाराज बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। प्रोटोकॉल शोबे के वजीर जय कुमार रावल भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। खवातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अलाक्वामी मैच आज रात इंग्लैंड में टॉन्टन के मकाम पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। भारत ने पहला मैच चेम्सफोर्ड में 38 रन से जबकि इंग्लैंड ने दूसरा मैच ब्रिस्टल में 26 रन से जीता था। हॉकी में जापान में काका मेगाहारा के मकाम पर 18 साल तक की उम्र के एशिया कप में पूल ए के अपने तीसरे मैच में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। भारतीय टीम के कप्तान केतन कुशवाहा ने खेल के तीसरे और 36वें मिनट में 2 किए। और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबाइली मुस्तफिदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की समाजी, इकतसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया।
हुकूमत ने इमिग्रेशन

0: और गैर मुल्कियों से मुतालिक 2026 के तरमीमी ज़ाब्तों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन ज़ाब्तों के तहत रजिस्ट्रेशन के औकात और अपील से मुतालिक निज़ाम में अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों को ओहदे का हलफ दिलाया है। जवाबी पर्चों से मुतालिक एतराजात की तस्दीक और इनकी दोबारा जांच से मुतालिक CBSE के पोर्टल पर 6 जून तक कामकाज जारी रहेगा। राजस्थान, गुजरात और मगरबी मध्य प्रदेश में और खवातीन क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अलाक्वामी मैच आज रात टॉन्टन में खेला जाएगा। खबरें खत्म हुई।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu addresses tribal beneficiaries of scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan, emphasizes social, economic and educational progress of all sections of society for true development. Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism. Chief Justice of India Justice Suryakant administers oath of office to 5 new judges of the Supreme Court. Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, third and final T20 international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. President Draupadi Murmu has said that education is a powerful means of empowerment as it enables individuals to become self-reliant, aware and capable. Addressing the tribal beneficiaries of scholarship schemes in New Delhi today, the President said true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically and educationally.
2: युवा हमारी राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातियों समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: The President highlighted that the government scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities. President Murmu emphasized that India has no shortage of talent and stressed on the need to identify, nurture and provide the right platform for it to flourish.

0: issued an orange alert for thunder squall conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh during the day. While heavy rainfall will occur over interior Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely over Haryana, Chandigarh, Delhi, Chhattisgarh, Jharkhand, Gujarat, Goa, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana and West Uttar Pradesh for the next 2 to 3 days. Hot and humid weather conditions will prevail over entire northeast, including coastal Andhra Pradesh, Odisha and sub-Himalayan West Bengal today. On to sports and women's cricket, the third and final T20 international of the series between India and England will be played at Taunton in England tonight. The match will begin at 11 p.m. IST. The series is level with India winning the first match in Chelmsford by 38 runs and England levelling the series with a 26-run victory in Bristol. In hockey, India registered a commanding 4-1 victory over Korea in their third Pool A match of the Men's Under-18 Asia Cup in Kakamigahara, Japan. Captain Ketan Kushwaha scored in the third and the 36th minute. Varinder Singh and Shah Rukh Ali scored the other two goals. Korea's lone goal came through Captain Yoon Jae-yok. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu addresses tribal beneficiaries of scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan, emphasizes social, economic and educational progress of all sections of society for true development. Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism. Chief Justice of India Justice Surya Kant administers oath of office to 5 new judges of Supreme Court. Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, third and final T20 international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के

0: लेवल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
0: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार निवेश लघु और मध्यम उद्यमों डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार

0: मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जाँच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के

नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2:30:20 हो रहे हैं। और दोस्तों, अब समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार का। और आज इस कार्यक्रम को लेकर आज आपके सफर के साथी हूं मैं, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मनीषा बोस। तो स्वीकारें मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी और उत्कृष्ट संगीत का जादू बिखेरने वाले, अभिनय का जादू बिखेरने वाले भारतीय सिनेमा के चार्ली चैपलिन कहे जाने वाले उस अभिनेता को, जिनकी आज पुण्यतिथि है और हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

जी हाँ साथियों, हम सभी की यादों में मुस्कुराने वाले वो अमर कलाकार जिन्हें हम आज याद कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर, एक ऐसा कलाकार जिसने भारतीय फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया बल्कि एक पहचान दी, जिसने इंसानी सपनों को पर्दे पर बखूबी उतारा, गरीब की उम्मीद को गीतों में पिरोया और दुनिया को बताया कि भारतीय सिनेमा दिलों की दास्तान कह सकता है। जी हाँ, द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा, राज कपूर।

जी हाँ, द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा राज कपूर। 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में जन्म हुआ रणबीर राज कपूर का, जिन्हें बाद में दुनिया राज कपूर के नाम से जानने लगी। पिता महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर, लेकिन राज कपूर की सबसे बड़ी खासियत रही दोस्तों कि उन्होंने सिर्फ परिवार की विरासत से पहचान नहीं बनाई, बल्कि अपना अलग सिनेमाई संसार बनाया। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मों में शुरुआत एक लैब बॉय और असिस्टेंट के तौर पर की, और इसी तरह उन्होंने कैमरा, लाइट, कहानी, कहने की बारीकियां सीखीं।

जी हाँ, इरादों के पक्के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता रहे राज कपूर। महज 24 साल की उम्र में राज कपूर ने साल 1948 में अपनी खुद की कंपनी आरके फिल्म्स की स्थापना कर ली थी और फिल्म आग से निर्देशन की पारी भी शुरू कर दी थी। इसके बाद राज कपूर की क्लासिक रोमांटिक फिल्म बरसात, जो 1949 में रिलीज हुई, जिसे खुद राज कपूर ने डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया, और इस फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया। लेकिन राज कपूर की सबसे सफल और यादगार फिल्मों में 1951 की आवारा और 1955 की श्री 420, संगम जो 1964 में आई, और बॉबी जो 1973 में शामिल रही, ये फिल्में उनकी सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती हैं। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए दोस्तों, और राज कपूर को बना दिया भारतीय सिनेमा का शोमैन।

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज आप सुन रहे हैं द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा राज कपूर की फिल्मी दास्तान के बारे में। और आपके इस सफर की आज मैं साथी हूँ मनीषा। और देखिए, आपके संदेशों के लिए आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है हम प्रतीक्षा में होते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर। और बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं, हमारे श्रोता साथी प्रतीक्षा में हैं। उनमें पहला जो संदेश है वे नबी हसन का है, ये मारहरा दरवाज़ा एटा से हमें संदेश लिख रहे हैं और इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह हमारे पास अगला जो संदेश है वो गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु और रिधान खुराना का है। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढिंगिंदिया।

नमन ढिंगिन्या और अपार ढिंगिन्या, कार्यक्रम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है जी, हमें सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। गाँव लोग गढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह हमारे साथ हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ ही एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा से जी, आपका नाम हम ले चुके हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशफाक खतीजा बेगम, मोहम्मद इशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा सभी कार्यक्रम को सराह रहे हैं और सचमुच में आपकी सराहना हमें काफ़ी ऊर्जा देती है। आपको ये सुनकर अच्छा लग रहा होगा और हमें आपकी तारीफ सुनकर अच्छा लगता है। और राज कपूर की जानकारी को पसंद करने वाले हमारे अगले श्रोता साथी हैं, ये हैं इंद्रभान सिंह जो हैं चिरमरी कुरा सिया कालरी से, और इनके साथ हैं अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कालिंदी लहरे। बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से कार्यक्रम को हमेशा की तरह सुन रहे हैं। वनिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर, छंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता हमारे साथ हैं और खुशियाँ बांटने के लिए वो हमें धन्यवाद कह रहे हैं, आपका भी धन्यवाद। फारूक अली खान हैं हमारे साथ और ये हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से, इनके साथ फैजी, फराज, फरहीन और फारिया और ताहिरा भी जुड़े हुए हैं। और हमारे ये साथी हैं शोभापुर बाईपास मेरठ से, दिग्दर्शन और कविता, कार्यक्रम इन्हें अच्छा लग रहा है। संदीप मक्कार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोरिया, जालंधर से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशों को शामिल करते हुए। लेकिन हम अब बात कर लेते हैं अपने कार्यक्रम में राज कपूर की उन शानदार जीवन की कृतियों पर जिसको उन्होंने फिल्मी दुनिया में हमें नवाजा। संगम भारत की उनकी पहली बड़ी फिल्मों से एक मानी जाती है जिसकी शूटिंग विदेशों में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों राज कपूर के साथ बतौर नायिका नरगिस ऑन स्क्रीन दमदार जोड़ी हमेशा देखी गई है और भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक पार्टनरशिप्स में भी वो एक मानी जाती हैं, है ना। तो दोस्तों इन दोनों ने साथ में बरसात, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी जैसी कई यादगार फिल्में दी। और आरके स्टूडियो का वो मशहूर लोगो याद है जिसमें राज कपूर नरगिस को हाथों में उठाए देखते हैं। जानते हैं ये लोग बरसात फिल्म के पोस्टर से ही लिया गया ये पोस्टर है। नरगिस और उनकी केमिस्ट्री ने भारतीय रोमांस को एक नई पहचान से जब जोड़ा था। चलिए सुनते हैं गीत।

जी हाँ दोस्तों, राज कपूर ने आम आदमी को अपने सिनेमा का हीरो बनाया था। उनके किरदार भारत की जनता और उपेक्षित वर्ग का संघर्ष जीते थे, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ते थे। उनकी फिल्मों पर चार्ली चैपलिन का प्रभाव साफ नजर आता है, लेकिन भारतीय भावनाओं के साथ। साथियों, राज कपूर सिर्फ एंटरटेनर नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्थाओं के पैरोकार रहे। शहर की संवेदनहीनता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने जागते रहो बनाई। ईमानदारी और भ्रष्टाचार का संघर्ष उन्होंने अपनी फिल्मों में दिखाया। श्री 420 में और जिस देश में गंगा बहती है में अपराधियों के पुनर्वास की बात उभारी। बाहरी सुंदरता से ज्यादा आत्मा की सुंदरता को उन्होंने अपनी फिल्मों में दर्शाया। और फिर 1973 में बनाई बॉबी, इस तरह हिंदी सिनेमा में टीनेज रोमांस का दौर भी उन्होंने दिखलाया। राज कपूर की खासियत रही कि वे हर दौर के दर्शकों को बखूबी समझते थे।

दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में कहीं पहले राज कपूर वो कलाकार रहे जो इस दौर से पहले उनकी लोकप्रियता को पा चुके थे। 50 के दशक में ही पूरी दुनिया तक वो लोकप्रिय हो चुके थे। सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर में आवारा और श्री 420 इतनी लोकप्रिय हुई थी कि लोग उन फिल्मों के गाने गाया करते थे। आवारा हूँ सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया

का गीत बन चुका था दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा को ग्लोबल पहचान दिलाने में राज कपूर ने बड़ी भूमिका निभाई। 1980 तक आते आते राज कपूर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने लगे थे, लेकिन सिनेमा के लिए उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। 1988 में उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। आज राज कपूर साहेब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी कृतियों से, अपने विचारों से और अपने अभिनय से सदा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे।

दोस्तों आशा करती हूँ मनीषा के साथ आज आपने इस सफर को खूब जिया होगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे थे हिंदी फिल्म सिनेमा जगत के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की फिल्मी दास्तां और जीवन के बारे में। आज के कलाकार में हमारा सफर यहीं तक। आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे फिर किसी सफर में। मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी W थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री KS शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी

0: उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
0: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत।

0: में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
0: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी, हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
1: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
0: बिल्कुल
1: लेकिन तथ्य कुछ और है।
0: जी,
1: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
0: जी तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे?
1: बताइए।
0: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
1: जी वो तो है।
0: श्रोताओं आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
0: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
1: अश्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
0: जी
1: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
0: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें, पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
1: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
0: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
1: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है,
0: जी
1: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
0: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
1: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
0: जी,
1: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
0: जी जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
1: जी
0: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
1: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
0: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
0: जी,
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
1: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से

0: होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
1: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
2: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
1: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।

0: ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
1: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
0: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
1: चलो, अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
2: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
1: चलो चलो चलो चलो, अरे पकड़ो,
4: चलो चलो, मुझे
5: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है,
1: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
3: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
3: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
2: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
6: लुई पाश्चर
7: सर,
6: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
7: कहिए सर।
6: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
7: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
6: ठीक है।
3: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया

0: जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा। हाँ, इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताईं।
4: सर, सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ, अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।

0: सर, सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
1: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
0: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
1: देखिए आप,
0: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
1: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
0: मेरा अच्छा, बेटा।
1: अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
2: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
2: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
2: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
2: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
2: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ

0: कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी से प्रायोजित कार्यक्रम

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। The best of entertainment, information, education अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी, रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:29:51 हो रहे हैं। कुछ ही समय में आप उर्दू मजलिस सुनेंगे।

0: साल तक कई सारी बीमारियों में मुब्तला रहे और एक सबसे बड़ी बीमारी उनके अंदर आई वो डिमेंशिया के शिकार रहे, यानी भूलने की बीमारी। और इस बीमारी से वो दो चार रहे, 10 साल तक वो इस बीमारी से जूझते रहे और बिल आखिर 28 मई 2026 यानी ईद के दिन वो हमसे बिछड़ गए, यानी हमें छोड़कर वो इस दुनिया से चले गए। मेरी मुराद
1: जी शहनवाज, कहीं आपकी मुराद बशीर बद्र से तो नहीं है?
0: बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरी मुराद बशीर बद्र से ही है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, उनकी जिंदगी के सफर में दुख भी बहुत ज्यादा थी और खुशियां भी, क्या कहें कि वो तो दुख और खुशी का जो चोली दामन का साथ है वो तो रहता ही है, लेकिन उनके हिस्से में दुख ज्यादा आया। मेरठ के फसादात में उनका घर भी जल गया, कलाम भी जाया हुआ, पहले उनके अहलिया का इंतकाल भी हुआ, फिर दूसरी शादी के बाद भोपाल में उन्होंने मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली थी। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि बशीर बद्र के बारे में आप कुछ बताएं, उनके पैदाइश।
1: जी शहनवाज, बशीर बद्र 15 फरवरी 1935 को पैदा हुए। उन्होंने उर्दू जुबान व अदब की आला तालीम हासिल की और तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता रहे। बचपन ही से अदब से गहरा लगाव था और यही शौक आगे चलकर उन्हें उर्दू गजल के मुमताज शोहरा की सप में ले आया।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने कि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उनके वालिद जो थे एक मामूली पुलिस महकमे में मामूली मुलाजिम थे, घराना उनका बहुत गैर मतमूल था। इब्तदाई तालीम इटावा और सीतापुर में हासिल की उन्होंने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की और फिर उन्होंने शहरी सफर की तरफ गामजन हुए और वहीं से उन्होंने तदरीस का सिलसिला भी शुरू किया। और आपको ये भी बताता चलूं कि 1969 में उन्होंने अपना पहला शहरी मजमुआ जो था उसका नाम था इकाई, जो 1969 में शाये हुआ था।
1: 1970 से 2010 तक 4 दहाइयों तक दुनिया भर के मुशायरों में शिरकत। जिगर मुरादाबादी के बाद सबसे ज्यादा मकबूल शायर, उनकी जुबान ताजा फूल की तरह रंग और खुशबू बिखेरती थी।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने, उनकी जुबान में रंग भी है, खुशबू भी है, जलवे भी हैं। देखिए उनका शेर है, उजाले अपनी यादों के साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। देखिए इस शेर के भी कई रुख हैं। अब देखिए जब हम जिस समाज में रहते हैं, अपने आसपास रहते हैं, अपने लोगों के बीच में रहते हैं, तो कई बार हमें इख्तलाफात का भी सामना करना पड़ता है और कई बार ये इख्तलाफात जो है दंगे फसाद की शक्ल भी ले लेता है। यही वजह है कि ऐसी सूरत हाल में भी वो क्या करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे को तोड़ने का काम नहीं करते हैं।
1: जी शहनवाज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं
0: जी
1: कि बशीर बद्र ने अपनी शायरी से लोगों को जोड़ने की भरपूर कोशिश की है।
0: बिल्कुल,
1: आप क्या कह रहे हैं बताइए।
0: जी उनका ही शेर है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो ये कमाल बशीर बद्र का है और बशीर बद्र के अंदर जो अनानियत बहुत कम है, उनके अंदर मैं का दावा नहीं है, उनके कलाम में सादगी है, पुरकारी है, उनके जो लफ्ज हैं वो फूल की तरह है, खुशबू की तरह है, वो आपके जहन में आता है और आपके रूह में बस जाता है। यानी खुशबू क्या करती है, बस जाती है और जो चीज होती है जिसको हम छू सकते हैं वो हमारे पास अपनी असल शक्ल सूरत में आती है। तो असल शक्ल सूरत क्या है, लफ्ज है, और लफ्ज की जो खुशबू है वो हमारे रूह तक उतर जाती है। जी आप क्या फरमा रही थी बशीर बद्र के बारे में।
1: उनकी शायरी का सबसे नुमाया वस्फ शहनवाज ये है कि वो सादगी उसमें एक तरह की नजर आती है और जो लफ्ज होते हैं वो लोगों को छूते रहते हैं, वो बड़े से बड़े ख्याल को निहायत आसान अल्फाज में बयान कर देते हैं। यही वजह है कि उनके अशार हर उम्र और हर तबके के लोगों के दिल में उतरते जाते हैं। उड़ने दो परिंदों को अभी शोख हवा में,
0: बिल्कुल
1: फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते।
0: बिल्कुल
1: इसमें जो अल्फाज हैं वो बहुत से सादा, मतलब बचपन का जमाना कभी दोबारा नहीं आता। और उनका कहना है कि परिंदे जो हवा में उड़ते हैं, बच्चों का भी बचपन इसी तरह होता है कि उनको खेलने कूदने और हर चीज की आजादी दी जाए।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन देखिए ये शेर जो आपने कहा कि उड़ने दो परिंदों को शोख हवाओं में, लौट कर बचपन के जमाने नहीं आते, यकीनन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बचपन के जमाने कभी दोबारा लौट कर नहीं आते हैं। लेकिन देखिए बशीर बद्र ही कहते हैं, अगला शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उसकी, कुछ तो मजबूरियां रही
1: कोई
0: होंगी
1: बेवफा
0: उसकी।
1: नहीं होता,
0: यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, यूं कोई बेवफा नहीं
1: नहीं
0: होता।
1: होता।
0: तो मजबूरियां रहती हैं बहुत सारे लोगों को कि वो अपने बच्चों को उड़ने नहीं देते हैं, लेकिन होता है कि उन्होंने जो इन चीजों को देखा

0: है, जितने करीब से देखा है और चीजों को समझा है और समझकर अवाम को बताया है,
1: जी
0: लोगों को
1: शहनवाज,
0: बताया है।
1: और इनके अशआर जो हैं
0: बिल्कुल।
1: वो समाजी रवैयों की ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जिसके बारे में वक्त की तलखी भी और हकीकत की अक्स एक तरह का हमें दिखाती है। क्योंकि बहुत से हादसात ऐसे होते हैं जिसमें लोगों के घर जल जाते हैं और कभी इंसान परेशान होता है, लेकिन वो किसी से कहते नहीं है कुछ भी
0: बिल्कुल। देखिए ना, अपने शेर में वो कह देते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
1: बनाने
0: लोग टूट
1: में,
0: जाते हैं एक
1: एक घर
0: घर
1: बनाने
0: बनाने
1: में।
0: में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो ये कमाल बशीर बद्र का है, और ये कमाल बशीर बद्र के अंदर कैसे आया ये भी देखिए कि जब दंगे फसादात होते हैं तो जाहिर सी बात है सभी परेशान होते हैं, उसमें कोई एक आदमी परेशान नहीं होता है, सभी परेशान होते हैं। ठीक है, तो मामला यही हुआ कि जब उनके घर को जला दिया गया तब उस वक्त उन्होंने ये शेर कहा था, और ये शेर ऐसा हुआ कि ये जबान जद हो गई और हर आदमी आज इस शेर
1: आम
0: को
1: फहम हो
0: दोहराता
1: गया।
0: है और कहता है। ठीक है, इनका ही एक शेर है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला करो। तो ये कमाल तो बशीर बद्र के अंदर है ही है, और बशीर बद्र ऐसे ही बातें किया करते हैं। और एक शेर और मुझे याद आ रहा है कि यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो।
1: इस गजल को हरिहरन ने अपनी आवाज में बेहतरीन तरीके से पेश किया है, तो क्यों ना हम अपने सामईन को
0: बिल्कुल। तो लीजिए सामईन, पेशो खिदमत है।

0: वाह क्या बात। देखिए इस गजल में वाकई गजल के अशआर मौजूद हैं। किस तरह से उन्होंने आंखों की बात की, किस तरह से उन्होंने जबान की बात की, किस तरह से उन्होंने अपने एहसासात की बात की, ये कमाल बशीर बद्र का है और हरिहरन ने इसको अपनी आवाज देकर जिंदा हो जावेद बना दिया है।
1: जी शहनवाज।
0: बशीर बद्र का एक और शेर है, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। देखिए सरवरी बानो, ये कमाल किसका है, लफ्जों से जो जादू बिखेरा है, और ये किसका जादू, ये हमारे दिल की आवाज है, आपके दिल की आवाज है, हमारे चाहतों की आवाज है। हमारे दिल में ये चाहत होती है कि हम अच्छे घर में रहें, हमारी चाहत होती है कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे, हमारी ये चाहत होती है कि हमें बहुत से लोग जाने, बहुत सी शोहरत मिले, बहुत सा पैसा मिले, बहुत सी दौलत मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है, खुदा किसी किसी को देता है। तो क्या है कि ये शेर देखे कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, कब्र से भी कम जमीन दी है, यानी कि उसके दिल की जो बात है वो पूरी नहीं हो रही है, उसकी ख्वाहिशें तकमील तक नहीं पहुंच पा रही है, और अपनी ख्वाहिशों को किस तरह से वो समेट रहा है, उसको कम कर रहा है कि पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। यानी एक जब ये आम इंसान की कहानी है कि हर इंसान क्या करता है कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता रहता है, एक चीज को पाता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, दूसरी चीज को पाता है तो तीसरी उमड़ आती है।
1: जी शहनवाज, मुझे भी उनका एक शेर याद आ रहा है, अगर तलाश करो तो कोई मिल ही जाएगा,
0: अरे वाह,
1: मगर कौन हमारी तरह से तुमको चाहेगा,
0: तुमको चाहेगा, सही बात,
1: कोई जरूर तुमको चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने, और ये कमाल, देखिए इसको कहते हैं गजल का शेर, और ये वाकई गजल का शेर है कि अगर आप किसी को कहते हैं, अपने महबूब से कहते हैं, तो वाकई आप कहते हैं और आप ही आप होते हैं और महबूब आपका होता है। तो ये गजल का, खालिस गजल का शेर है। और इस गजल के बाद, यानी ये शेर के बाद अगर मैं बात करूं कि उनका दूसरा शेर है, यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे ग्लास

0: बड़े दे, शराब कम कर दे। ठीक है, तो ये कमाल भी किसका है? बशीर बद्र का है, और गालिब ने भी शेर को कहा है। कैसे कहा है? इसी बात को, इसी मौजू को गालिब ने कहा है, गो हाथ में नहीं जुम्बिश आंखों में तो दम है, गो हाथ में नहीं जुम्बिश आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे। तो ये कमाल किसका है कि ये जो चीज़ें हैं, जो ख्याल है, ये ख्याल हम सभी का है, हम सभी के दिलों की बात है। गालिब 200 साल पहले कह के चला गया, ये आज कह रहे हैं। तो ये कमाल है, ये हमारे एहसासात है, और हमारे एहसासात को हर ज़माने में शोरा ने अपने एहसासात के साथ लफ्ज़ों में पिरो कर हमारे सामने पेश किया है।
1: सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने, और ये शेर बशीर बद्र की जिंदगी पे बिल्कुल मौफिक है, क्योंकि बशीर बद्र ने जहां जहां भी सफ़र किया, जिस अंदाज में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, चाहे वो दरस व तदरीस का मामला हो, चाहे वो शायरी की दुनिया हो, चाहे वो समाजी दुनिया हो, हर जगह वो कामयाब रहे। जहाँ भी गए वो अपने रास्ते खुद बनाते गए, और अपने रास्तों के लिए किसी से समझौता नहीं किया, ये खूबी उनकी थी। देखिए, इसी खूबी पर उन्होंने एक शेर और कहा था कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। ये कमाल था किनका? बशीर बद्र का, कि बशीर बद्र क्या करते हैं, कहते हैं सामने की बातें करो, सामने की बातें करो, पीछे छुपकर बात मत करो। अगर जो दिल में है आपके, जो एहसास जिसके लिए रखते हो, उस एहसास को सामने वाले को बता दो। यानी मुनाफिकत के वो खिलाफ थे, वो मुनाफिक लोगों को पसंद नहीं करते थे। ये कमाल था बशीर बद्र का। और देखिए, उनका ही शेर है कि कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को खबर ना हो, कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को खबर ना हो, मुझे तो एक रात नवाज दे मगर उसके बाद कोई सहर ना हो।
1: इस शेर को तो मैंने जगजीत सिंह की आवाज में भी सुना है, तो क्यों ना हम अपने सामीन को भी।
0: बिल्कुल, तो आइए सामीन, आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज में मशहूर जमाना बशीर बद्र का ये कलाम कि कभी यूं भी आ मेरी आंख में।

0: वाह क्या बात है। देखा कि बशीर बद्र एक तरफ कहते हैं अपने महबूब को कि मेरी आंखों में आ जाओ, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं कि इसी शहर में कई साल से मेरे कुछ करीबी अजीज हैं। क्या कहते हैं कि इसी शहर में कई साल से मेरे कुछ करीबी अजीज हैं, उन्हें मेरी कोई खबर नहीं, मुझे उनका कोई पता नहीं। ये भी सच है और ये सच्चाई आज मौजूदा वक्त में देखने को मिलता है कि हमारे अजीज व अकारीब हमारे आसपास रहते हैं लेकिन हम उनकी कोई खबर नहीं लेते।
1: जी शहनवाज, एक शेर मुझे भी याद आ रहा है। अजीब शख्स है नाराज़ हो के हंसता है, मैं चाहता हूँ खफा हो तो वो खफा ही लगे।
0: क्या बात है। देखिए बशीर बद्र का ये शेर कि अजीब शख्स है नाराज़ हो के भी हंसता है, मैं ये चाहता हूँ कि खफा हो तो खफा ही लगे, ये भी कमाल है। अब देखिए बशीर बद्र का ही अगला शेर है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। तो ये कमाल किसका है। ये शेर देखिए सुनने में बड़ा छोटा सा लगता है लेकिन इस शेर की गहराई में जब आप उतरते चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि समंदर की गहराई भी इस शेर से छोटी पड़ जाएगी। ये कमाल है बशीर बद्र का। हुब्बुल वतनी और एक दूसरे को जोड़ने का काम, आपस में भाईचारगी को मजबूत करने का काम जो बशीर बद्र ने किया अपने ज़माने में, दूसरे शायरों के हिस्से में बहुत कम आया है। इसी वजह से कहा जाता है कि जिगर मुरादाबादी के बाद अगर कोई उर्दू का शायर है जिसको मकबूलियत मिली है शायरी की दुनिया में तो वो है बशीर बद्र।
1: शहनवाज साहब, आपने बशीर बद्र के बारे में बहुत कुछ बताया और अब वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है तो हम
0: वक्त का ग़ुलाम हर शय है, दुनिया की हर शय जो है वक्त का ग़ुलाम है और वक्त की ग़ुलामी हम भी करते हैं। और आपने जब वक्त की तरफ इशारा कर दिया, देखिए बशीर बद्र के बारे में कितनी भी बातें करूँ बहुत कम रह जाता है। दोस्तों मैं बताऊं आपको कि बशीर बद्र ने मकबूलियत का वो ज़माना भी देखा जो जिगर मुरादाबादी के बाद शायद ही किसी शायर के हिस्से में आया, मगर साथ ही ये बहस भी छिड़ गई कि मुशायरों की मकबूलियत और अदबी मयार में फ़र्क है। आखिरकार बशीर बद्र की ज़िंदगी एक सबक है, शोहरत इज्जत दौलत सब कुछ मिला मगर बीमारी ने दिखा दिया कि इंसान की असल पहचान

0: उसकी याददाश्त और शऊर है, जिसकी वजह से बशीर बद्र ने अपनी उम्र के 10 साल ऐसे बिताए जिसको हम कह सकते हैं कि गुमनामी में। गुमनामी हम अपने लिए तो नहीं कहेंगे, सामईन के लिए नहीं कहेंगे, उनके कारईन उनके मद्दाहों के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन उनके लिए कहेंगे, क्योंकि वो डिमेंशिया के मरीज़ हो गए, खुद अपने आप को भूल गए और इसी दौरान यानी 10 साल तक वो इस बीमारी में मुब्तला रहे और देखा कि आखिर इस बीमारी दिल ने काम तमाम किया और 28 मई ईदुज़ुहा के दिन उनका इंतकाल होता है। उनके इंतकाल से उर्दू दुनिया में एक बड़ी सी खला पहुंच जाती है और इस खला को हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। और हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो ऐसी ही शख्सियत के मालिक बशीर बद्र थे। तो सामईन कराम, इसी उम्मीद के साथ कि बशीर बद्र हमारी यादों में, हमारे निसाबों में, हमारी किताबों में और हमारे ज़हन दिल में हमेशा महफूज रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ आज अपने मेज़बानों यानी
1: सरवरी बानो
0: और शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की
1: दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए पेश है हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाकर उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं के सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। केंद्र सरकार ने आवर्जन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पहले यह पंजीकरण 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। हालांकि निर्धारित अवधि के बाद विलंब होने से पंजीकरण की अनुमति केवल आपात परिस्थितियों में ही दी जाएगी। इसके अलावा पहली बार नियमों में ऑनलाइन अपील प्रणाली जोड़ी गई है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री मशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन औलाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जय कुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ओम मिन औलाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेव और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि

0: advance of the southwest monsoon into some more parts of Lakshadweep Islands, Kerala, Tamil Nadu and the remaining parts of southeast Bay of Bengal from around 4th of June. Meanwhile, heavy rainfall is likely to occur over interior Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. In women's cricket, the third and final T20 international of the series between India and host England will be played at Taunton tonight. The match will begin at 11 p.m. IST. The series is levelled at 1-1 with India winning the first match at Chelmsford by 38 runs and England levelling the series with a 26-run victory in Bristol. Benchmark domestic equity indices rebounded today and closed around 0.5% higher. The BSE Sensex rose 383 points to close at 74,650. The NSE Nifty gained 101 points to settle at 23,484. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। अब सूचना लापता व्यक्तियों की। इस क्रम में पहली सूचना एक अज्ञात मृत पुरुष की है, जिन्हें 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:42 पर सेक्टर 8 के पास बने कूड़ा घर के एक नाले में पाया गया था। इस मृतक के शव को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनकी उम्र तकरीबन 45 वर्ष होगी। इनके शरीर की बनावट दोहरा मजबूत बदन है और इनकी ऊंचाई लगभग 5 फीट है। सिर पर चोट का निशान है। जिस दौरान इन्हें मृत अवस्था में पाया गया उस समय ये हरे रंग की चेक टी शर्ट और नीले रंग का लोअर पहने हुए थे। इनसे संबंधित सूचना के लिए आप थाना फेज 1 नोएडा कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही एक मोबाइल नंबर है, इसके माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 7388819710। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 7388819710। इसी क्रम में अगली सूचना भी एक मृत व्यक्ति की ही है। ये मृत अज्ञात शव पुरुष का है जिसकी उम्र तकरीबन 35 वर्ष आंकी जा रही है। जिला अस्पताल सेक्टर 39 नोएडा से ये मिले हैं। इनकी उम्र तकरीबन 35 वर्ष है और इनके शरीर की बनावट सामान्य है। ऊंचाई इनकी 5 फीट 5 इंच है। इन्हें थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में अस्पताल से मृत अवस्था में पाया गया है। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में संपर्क साध सकते हैं। अगली सूचना भी एक अज्ञात शव की है जो पुरुष का है। इन्हें अंतिम बार जहां पर देखा गया था वो प्रतीक एडीकेस सोसाइटी के सामने बने नाले में देखा गया था। 28 अप्रैल 2026 के दिन ये वहां से मिले थे। इनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। मृत व्यक्ति की आयु तकरीबन 48 वर्ष आंकी जा रही है और इनके शरीर की जो बनावट है वो एक हरा बदन है। इनकी ऊंचाई 5 फीट

इंच है। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से पे कोई भी वस्त्र नहीं था जब इन्हें मृत अवस्था में पाया गया, और निचले हिस्से में इन्होंने हाफ निकर पहनी हुई थी। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप 9870921875 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9870921875। साथ ही इनसे संबंधित जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 39 गौतम बुद्ध नगर में संपर्क साध सकते हैं। अगली सूचना भी एक अज्ञात मृत व्यक्ति की है, जिन्हें दादरी रेलवे स्टेशन के निकट 5 मई 2026 को देखा गया। इनकी उम्र भी तकरीबन 50 वर्ष आंकी जा रही है, और ये एक अज्ञात पुरुष की का शव है। इनके शरीर की बनावट सामान्य है, इनके गले में एक ताबीज है और इनकी ऊंचाई 5 फीट 6 इंच है। जिस दौरान इन्हें मृत अवस्था में पाया गया, उस समय इन्होंने काले रंग की टी शर्ट, गले में सफ़ेद गमछा, नीले रंग का अंडरवियर और ग्रे रंग की पैंट पहनी हुई थी। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप 09756679201 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर हिंदी में सुन लीजिए, 09756679201 पर आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही इनसे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चौकी प्रभारी जीआरपी दादरी में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली सूचना है वो भी एक अज्ञात पुरुष शव की है, जो इटडा गोल चक्कर थाना बिसरख कमिश्नरेट गाजियाबाद में पाई गई है। इनकी उम्र लगभग 50 वर्ष आंकी जा रही है, और इनका शरीर काफी दुबला पतला है, और इनके चेहरे पर काली और सफेद रंग की मिश्रित दाढ़ी है। इनकी ऊंचाई लगभग 5 फीट है। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप थाना बिसरख कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क कर सकते हैं। अगली सूचना एक मृतक की ही है, जो अज्ञात हैं। इन्हें अंतिम बार 25 अप्रैल 2026 को 7:30 बजे एक्सप्रेस वे के किनारे बने फुटपाथ पर सेक्टर 128 नोएडा में पाया गया था मृत अवस्था में। इनकी आयु लगभग 40 से 42 वर्ष आंकी जा रही है। शरीर की बनावट मजबूत है, ऊंचाई 5 फीट 5 इंच है। इनसे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप एक मोबाइल नंबर है जहां आप संपर्क साध सकते हैं, 8595902593। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 8595902593। इनसे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप पीएस सेक्टर 126 नोएडा में संपर्क कर सकते हैं। अगली सूचना भी एक अज्ञात शव की है, जिन्हें बॉटनिकल गार्डन बस स्टैंड के पास मृत अवस्था में पाया गया था। इनकी उम्र तकरीबन 30 वर्ष आंकी जा रही है। ये एक पुरुष का शव है, इकहरा बदन है, नाक कान और आंख औसत है, और इनकी ऊंचाई 5 फीट 6 इंच लगभग नापी जा रही है। इनके बाएं हाथ पर रत्ना अमन लिखा हुआ है, और इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में संपर्क साध सकते हैं। अगली सूचना एक खोए हुए व्यक्ति की है, जिनका नाम पृथ्वी उर्फ प्रिंस है, जो सन ऑफ सचिन है। ये कस्बा पतला थाना

निवाड़ी कमिश्नरेट गाजियाबाद में आखिरी बार देखे गए थे। इनकी उम्र 13 वर्ष है। ये पुरुष हैं, मजबूत जिस्म है, ऊंचाई 5 फीट 4 इंच है, रंग गोरा, गोल चेहरा, आँख काली है। ये घर से बिना कुछ बताए कहीं चले गए हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना AST कमिश्नरेट गाजियाबाद में इत्तला कर सकते हैं। और खोए पाए और मृत व्यक्तियों से संबंधित सूचना में ये अंतिम सूचना है चंदन कुमार की। इन्हें 9 बजे करीब 12 नंबर प्लेटफॉर्म नई दिल्ली में देखा गया था। वहीं पे इन्हें मृत अवस्था में पाया गया। 35 वर्ष इनकी उम्र आंकी जा रही है, रंग सांवला, और इनकी ऊंचाई 6 फीट नापी जा रही है, और इनके हाथ की उंगली में जले का निशान है। इनसे संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। इसी के साथ गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचना

0: Indian Army Headquarters Northern Command has invited applications for 8 posts of stenographer grade 1 in the administrative branch at Udhampur on deputation, including short-term contract basis. The post is in level 6 as per the 7th CPCA. Eligible officers from central or state governments, union territories, public sector undertakings, universities, research institutions and autonomous or statutory organizations holding analogous post or having 10 years regular service in level 4 post may apply through proper channel. Applications with CADA clearance, NOCs, RPAS, vigilance and integrity certificate and other required documents must reach the headquarters Northern Command within 30 days from the release of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility criteria, application format and terms and conditions available on the official Indian Army website. Do refer to www.indianarmy.nic.in. And now we have the Employment News in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पदों की संख्या 2, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पीपीपी परियोजनाएं पदों की संख्या 1, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पर्यावरण पदों की संख्या 1, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सड़क कार्य 1 पद, प्रोजेक्ट मैनेजर इमारत 2 पद और प्रोजेक्ट मैनेजर पर्यावरण 1 पद। विस्तृत विज्ञापन, निर्धारित आवेदन प्रारूप और संपूर्ण नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास लिमिटेड की वेबसाइट www.dsiidc.org। भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, रिक्तियों की संख्या है 323। तकनीशियन ग्रेड 3, रिक्तियों की संख्या है 6242। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रेलवे भर्ती बोर्डों की वेबसाइट। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पंजाब परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय टाटा मेमोरियल केंद्र इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। चिकित्सा अधिकारी न्यूक्लियर मेडिसिन 1 पद, चिकित्सा अधिकारी रेडियो डायग्नोसिस 1 पद, चिकित्सा फिजिसिस्ट 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, जबकि 1 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक अधिकारी SB ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक C न्यूक्लियर मेडिसिन 1 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B फिजियोथेरेपी 1 पद अनारक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B रेडिएशन ऑन्कोलॉजी 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन C नेटवर्किंग 1 पद EWS वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन C ऑपरेशन थिएटर 1 पद अनारक्षित है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 जून 2026। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट tmc.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: मैं आना ही हूं।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
2: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफिरोजी। श्रोताओं, जून का महीना शुरू हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि ये महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। साथ ही साल 2026 का भी लगभग आधा सफ़र पूरा हो चुका है, तो पिछले 5 महीनों से आप जिन कामों को टालते आ रहे हैं उन्हें पूरा करने का अब सही समय है। तो थोड़ा वक्त लीजिए, ठहरिए, खुद को रीसेट कीजिए और इन लक्ष्यों को पूरा करने की योजना बनाइए। इसके साथ ही आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
3: हेलो सर फिरोजी। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 FM गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। विद मी टुडे इज माय को-होस्ट सर फिरोजी। And well, listeners, he is celebrated as a prolific and brilliant literary figure because he mastered multiple genres. Secondly, he produced a staggering volume of work, including 14 novels and nearly 1,000 poems. And thirdly, he innovated by creating the fictional universal landscape of Wessex. Yes, he's none other than the celebrated English Victorian novelist and poet Thomas Hardy. And we shall talk about him later in a program. But first, we begin with the news headlines at this hour.
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया।
3: Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism.
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई।
3: ऑरेंज अलर्ट इशूड फॉर थंडर स्क्वाल कंडीशंस इन राजस्थान, गुजरात, वेस्ट मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश टुडे।
2: और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा।
3: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, we will talk about Heat Action Day.
2: जी अभिषेक, श्रोताओं, आजकल भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। तापमान कई जगहों पर 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और इसलिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, गर्मी के असर को कम करने के तरीके। आप इस चिलचिलाती गर्मी और हीट वेव से कैसे बच सकते हैं? आज यानी 2 जून को विश्व भर में हीट एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है।
3: That's right, Sir Firozi, and the focus is very important, raising awareness about the risks of extreme heat and heat waves, which are becoming more frequent worldwide. And it is an initiative led by Red Cross, Red Crescent, Climate Center, and the International Federation of Red Cross and the Red Crescent Societies, IFRC, to raise awareness about the dangers of extreme heat.
2: जी अभिषेक, और बात करें इस साल इस दिवस के थीम की, तो इस साल थीम है इंडोर हीट, यानी घर के अंदर की गर्मी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर हमें बताया जाता है कि भीषण गर्मी के दिनों में हमें घर से बाहर निकलते वक्त किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए, लेकिन इस साल इस दिवस का जो विषय है ये गर्मी से जुड़े उन छिपे हुए खतरों को सामने लाया है जिनका सामना लोगों को घरों, स्कूलों और वर्कप्लेस जैसी जगहों पर करना पड़ता है।
3: Absolutely, and we often think heat is only an outdoor problem. So what makes indoor heat so serious? Because buildings can trap heat. Without proper ventilation or cooling, indoor temperatures can become dangerously high, especially during heat waves.
2: इसलिए जागरूकता और कुछ आसान कदम उठाना बहुत मायने रखता है, जैसे आप घरों या फिर वर्कप्लेस जैसी जगहों पर वेंटिलेशन बेहतर रखें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। तो अभिषेक, जब आप अपने श्रोताओं को बताते हैं कि उन्हें गर्मी से किस तरह के खतरे हैं।
3: यस सर फिरोजी, वी आर टॉकिंग अबाउट हीट एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक एंड सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट्स, स्पेशली फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजंस एंड आउटडोर वर्कर्स।
2: बिल्कुल अभिषेक, इन सब के बीच हीट एक्शन डे अत्यधिक गर्मी के बढ़ते खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को हीट स्ट्रोक जैसे स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने के लिए मंच प्रदान करता है।
3: एग्जैक्टली सर फिरोजी, एंड हीट एक्शन डे एनकरेज

0: people and authorities to prepare in advance by sharing safety measures, improving early warnings and spreading awareness on how to stay safe during heat waves and what kind of simple steps can people actually follow.
1: बिल्कुल अभिषेक, आपने कहा सिंपल स्टेप्स, तो ये बहुत ही बेसिक और बुनियादी बातें हैं, जैसे कि हमें खूब पानी पीना चाहिए, दोपहर के जो सबसे गर्म घंटे हैं उसमें सीधी धूप से बचें, हल्के कपड़े यानी सूती कपड़े पहनें, और ऐसे लोग जो गर्मी के लिए, गर्मी को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनका भी हम हालचाल लेते रहें.
0: Absolutely, and the Prime Minister Narendra Modi has urged the people of the country to take utmost care during the prevailing hot weather and follow the guidelines issued by various government departments in this regard.
1: पिछले महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों को लगातार पानी पीते रहना चाहिए और धूप में बाहर निकलते समय सावधानी बरतनी चाहिए.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है. तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है. पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले. इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं.
0: Yes, and now shifting focus to some refreshing ideas to beat the summer heat. Yes, and this time the suggestion comes with a cultural flavor.
1: बिल्कुल अभिषेक, प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि गर्मी से राहत पाने के लिए लोग गर्मियों के अलग अलग पेय पदार्थ पी सकते हैं, जैसे कि आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू का शरबत, बेल पन्ना, पानकम, नीरमोर, संबारम, कोकम शरबत या फिर सोल कड़ी भी. ये पेय पदार्थ पारंपरिक रूप से देश के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे पेय पदार्थ

0: one sip of these traditional coolers from the tangy Ampanna to the soothing lassi feels like a wave of freshness, washing away the scorching summer heat. And referring to mangoes, which are often talked about in summer, the Prime Minister said every region has its own mango, its own flavour and its own aroma. He mentioned different varieties of mangoes such as Langra of Kashi, Alfonso of Maharashtra, Kesar of Gujarat and Himsagar of West Bengal.
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस
2: उसके आसपास पेड़ लगाने जैसे छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं.
0: And we often forget about checking on others, right?
2: बिल्कुल अभिषेक, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और जो बाहर काम करते हैं, एक बार उनका हालचाल पूछ लें तो उन्हें होने वाली कई बीमारियों से वो बच सकते हैं. गर्मी से बचाव का मतलब है छोटे छोटे समझदारी भरे कदम उठाना, जो मिलकर हमारी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, जोखिम को कम कर सकते हैं और सबसे जरूरी, गर्मियों को सभी के लिए ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं.
0: So listeners, stay cool, stay safe and take care of yourself and those around you.
2: कम शब्दों में कहें तो हीट एक्शन डे याद दिलाता है कि हमें गर्मी में बढ़ते तापमान के बीच सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी को हराने की शुरुआत होती है जागरूकता से और सही कदम उठाने से.
0: So to wind up our talk on this heat action day, the message is clear. Heat is not just an outdoor challenge, it's an indoor reality too, and it demands awareness and preparedness everywhere, because protecting life starts at home, at work, and in every space we live in.
2: श्रोताओं, अब समय है आपको देश भर की परिक्रमा पर लेकर चलने का और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि आज हमारे लिए उनके पास क्या खास जानकारी है. सबसे पहले शुरू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से. केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में करीब 4000 दुर्लभ पांडुलिपियां मिली हैं. ज्ञान भारतम अभियान केवल पांडुलिपियों के संरक्षण का प्रयास नहीं है, बल्कि ये हमारी ऐतिहासिक स्मृतियों, सांस्कृतिक पहचान और ज्ञान की विरासत को भविष्य तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण जरिया भी है. इस पर हमारे रायपुर संवाददाता जानकारी दे रहे हैं.
3: क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पुराने संदूक, पूजा घर या पारिवारिक संग्रह में रखी एक हस्तलिखित पांडुलिपि हमारे इतिहास, संस्कृति और ज्ञान परंपरा के कितने अनमोल रहस्यों को अपने भीतर समेटे हो सकती है. इन्हीं धरोहरों को खोजने और सुरक्षित रखने के लिए देश भर में ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में भी यह अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है और लगातार महत्वपूर्ण उपलब्धियां सामने आ रही हैं. अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में दुर्लभ पांडुलिपियां और ऐतिहासिक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं. गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में चार पीढ़ियों से सहेज कर रखी गई रामचरितमानस की दुर्लभ पांडुलिपि मिली है, जबकि सरगुजा जिले के लुंड्रा क्षेत्र में ताड़ पत्रों पर लिखी प्राचीन पांडुलिपियों का महत्वपूर्ण संग्रह सामने आया है. पेंड्रा में लगभग 500 वर्ष पुरानी हस्तलिखित श्रीमद् भागवत गीता, ऐतिहासिक वंशावलियां और पुराने नक्शे भी खोजे गए हैं. सरगुजा के झिरमिट्टी गांव में लगभग 250 वर्ष पुरानी रामचरितमानस आधारित पांडुलिपि का डिजिटल संरक्षण किया गया है. वहीं दामाखेड़ा स्थित कबीर आश्रम में 326 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है. इस अभियान की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बिलासपुर जिले के ऐतिहासिक मल्हार में प्राप्त दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का उल्लेख किया है. लगभग 1400 से 1500 वर्ष पुरानी मानी जा रही ये ताम्र पट्टिकाएं उस दौर की शासन व्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती हैं. ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत अब तक छत्तीसगढ़ में 4000 से अधिक पांडुलिपियों का सर्वे किया जा चुका है. इन धरोहरों को डिजिटल माध्यम से सुरक्षित किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपरा से जुड़ी रह सकें. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला.

0: छत्तीसगढ़ में 4000 से अधिक पांडुलिपियों का सर्वे किया जा चुका है। इन धरोहरों को डिजिटल माध्यम से सुरक्षित किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपरा से जुड़ी रह सकें। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
1: In a significant step towards strengthening Puducherry's industrial and export ecosystem, the central government has notified two new special economic zones, SEZ.

0: आग नीलकमल आवारा श्री 420 जिस देश में गंगा बहती है जागते रहो राम तेरी गंगा मैली आदि राज कपूर साहब की कुछ मुख्य फिल्मों के नाम हैं। हम आपको उनकी फिल्म अनाड़ी का एक डायलॉग सुनाते हैं।
1: मैं अनाड़ी हूँ, हम जैसों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस दुनिया में जीने का अधिकार तो उनको है जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने वापस नहीं किए। ये दुनिया दिल वालों की नहीं, दिमाग वालों की।
2: Yes, and we also remembering Dominic Francis Dom Moores, who passed on this day in 2004. He was a foundational figure in the Indian English literature, a prolific poet, journalist, war correspondent, and a documentary filmmaker. He published nearly 30 books, including several acclaimed poetry collections and autobiographies. And like we were mentioning in the beginning of our program, Thomas Hardy was born on this day in 1840. He was a monumental English novelist and poet of the Victorian era, widely celebrated for his vivid depictions of rural life and tragic, socially critical narratives, heavily influenced by romanticism and the changing pastoral landscape of his native Dorset. His works challenge strict Victorian morality.
0: आज ही जयंती है भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशकों में से एक मणिरत्नम साहब की। ये तमिल तथा हिंदी दोनों भाषाओं के ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माता हैं। मणिरत्नम ऐसे निर्देशक हैं जिन्होंने अपनी उम्दा फिल्मों से भारतीय फिल्म उद्योग को विश्व में पहचान दिलाई। फिल्म निर्देशक के रूप में इनकी पहली फिल्म कन्नड़ में पल्लवी अनुपल्लवी थी, जिसमें अभिनेता अनिल कपूर और लक्ष्मी ने काम किया था।

रत्नम को अब तक 6 राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मणिरत्नम की मुख्य फिल्मों में नायकम, गीतांजलि, रोजा, बॉम्बे, साथिया तथा युवा और दिल से आदि प्रमुख हैं।

0: भारतीय टेलीविजन और सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक नीतीश भारद्वाज का आज जन्मदिन है। एक साधारण मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मे नीतीश ने न केवल अभिनय की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के किरदार के जरिए लाखों करोड़ों दर्शकों के दिलों पर भी इन्होंने राज किया। आपको सुनाते हैं इनकी इसी धारावाहिक का एक डायलॉग।
1: इन्हें बोलने दीजिए पितामह, बोलने दीजिए।
2: यदि मैं दूत न होता तो क्या कर लेते युवराज?
3: यूं मेरी माता श्री की बात करने पर मैं तुम्हारी जीत खर्च लेता
2: और
3: तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता।
2: राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज? उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत के लिए कुरुश्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म और आचार्य श्रेष्ठ द्रोण और कृप गए थे?
4: Yes, and Vishnu Narayan Nambuthiri was born on this day in 1939. He was an eminent Indian poet, academician and scholar of the Malayalam literature, highly regarded for his ability to blend Indian classical traditions and Vedic philosophy with contemporary modernist sensibilities. He remains a monumental figure in Kerala's cultural history. And also Ilayaraja is a legendary Indian music composer, orchestra, conductor, singer and lyricist, was born on this day, widely regarded as one of the greatest and the most prolific musical minds in cinema history. He has composed over 8,600 songs, scored around 1,523 films across 9 languages, and performed in over 20,000 concerts over a career spanning 5 decades, and he was affectionately nicknamed Isai Nani, or musical sage, and referred to as a maestro. He completely revolutionized South Indian film music by blending traditional Indian folk sensibilities with Carnatic ragas, with complex Western classical musical harmonies and orchestration. Let's listen in to a hit composition of his.

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातियों समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है जिनमें

0: प्रतिभा तो होती ही है, परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं को सपने देखने का अधिकार देती है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपकोसा माशातिले ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण की समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा पहली बार नियमों में ऑनलाइन अपील प्रणाली जोड़ी गई है। अब किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति आव्रजन ब्यूरो के आयुक्त के समक्ष ऑनलाइन अपील दायर कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शिल नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत के

इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: at 74,650. The NSE Nifty gained 101 points to settle at 23,484. And in women's cricket, the third and final T20 international of the series between India and hosts England will be played at Taunton tonight. The match will begin at 11 p.m. IST. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: तो यमुना बहन, लोकरंजनी कार्यक्रम जहां हम लोक संस्कृति की मिठास, लोक जीवन की सादगी और लोकगीत की अनमोल धरोहर लेकर आते हैं हमारे श्रोताओं के लिए। तो मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरती, और
1: मैं यमुना। और खास बात यह है कि श्रोताओं की जो लोकगीत है वो केवल मनोरंजन का एक माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी समाज की भावनाओं, रिश्तों और परंपराओं का जीवंत जो है चित्रण करते हैं। और खास करके बात करें, रौनक झुनक की बात करें, आपस में नोक झोंक की बात करें, तो मियाँ बीवी जब आपस में बातें करते हैं, पति पत्नी, और जब मायके चली जाती है पत्नी, तो पति बड़ा व्याकुल होता है, उसको तमाम तरीके की परेशानियां होती है, खाना बनाना है, घर का सारा काम करना है, हंसना बोलना है, किसके साथ बोलेगा। तो ऐसी कुछ हंसने बोलने की बातें हो रही हो, खास करके इस पति पत्नी की नोकझोंक को प्रस्तुत कर रहे हैं करमपाल शर्मा और मंजू शर्मा अपने लोकगीत के जरिए। चलिए सुनते हैं, आनंद उठाते हैं।

0: कहते हैं ना आरती की, बिन घरनी घर भूत का डेरा।
1: हाँ
0: तो जैसे करमपाल जी ने कहा ना कि कैसे मतलब बिना घरनी के घर अच्छा नहीं लगता है। और वहीं मंजू कह रही है अपनी नोकझोंक में, आज मायके चली जाती है तो आप भी चक्कर लगाने आ जाती हो वहां पे। तो ये
1: बिल्कुल,
0: आपस की जो नोकझोंक
1: यमुना
0: है
1: यमुना जो
0: बहुत।
1: हमारे लोकगीत है, इनकी
0: हाँ
1: यही विशेषता है कि वे साधारण जीवन की घटनाओं को भी इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि हर श्रोता उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही सच कहें तो जो मौसम होता, हमारे मौसम जानती हो कि हमारे मौसम बदलते रहते हैं, कभी पुरवाई आई, कभी ठंडी आई, कभी गर्मी आई। तो जब ये मतलब मायके में जाती है, क्या ससुराल में भी रहती है, तो कोई जब घरनी जो होती है, जो हमारी बहना होती है, वो जब पहन ओढ़ के निकलती है, उस हवा सी झोंके से उसका दुपट्टा लेकर के जब उड़ता है, तो उसके मुंह से बरबस ये बोल निकल आते हैं लोकगीत के जरिए, कैसे बिन्ना ढिल्लोर कह रही हैं कि दुपट्टा उनका कैसे उड़ उड़ के जा रहा है, वो बता रही हैं।

0: और इतना ही नहीं है, गांव में अगर रहते हैं
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों आरती?
1: जैसे अभी पुरवैया की बात हो रही थी, और गांव में जब इस तरह की पुरवैया चलती है उसका एक अलग ही मजा होता है। और यमुना जब जाते हैं हम गांव में, तो वहां का नज़ारा देखने लायक होता है। हर एक चीज़ ऐसा लगता है आपके मन को मोह रही है। और खाने की बात करें, या पहनावे की बात करें, या वहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारों की बात करें, सबकी बात में एक
0: मिलजुल के रहने की बात वहाँ
1: बिल्कुल
0: पर दिखता है, जो भी हमें वहाँ पे जाने पे दिखता है कि सब लोग मिलजुल करके दुख सुख में भागी होते हैं, वो
1: बिल्कुल
0: सारे मिल के काम करते हैं। इसी बात को अपने लोकगीत के जरिए कैसे गोपाल सिंह बर्मन कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं।

0: गांव बहुत ही प्यारा लगता है, और सच कहें तो हमें भी क्या सभी को प्यारा लगता है। और आपको ये बताते चलें कि आज का जो हमारा अगला कार्यक्रम होगा आरती, वो ग्राम संसार और कृषि जगत होगा। ग्राम संसार का प्रसारण जैसे आप जानते हैं कि 6:30 से 7 बजे तक का होता है, और कृषि जगत जो है 7:05 से 7:30 बजे तक चलता है। और आज विशेष है कुछ।
1: बिल्कुल, आज विशेष फोन-इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गन्ना फसल में कीट और रोग नियंत्रण। तो गन्ने से संबंधित जो भी समस्या है इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 01-23-42-10-82, 23-42-10-83। तो ये हमारे फ़ोन नंबर होंगे, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और आप सीधे विशेषज्ञ से अपनी समस्या का समाधान

0: पा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा लोक रंजनी कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी सुनने वालों को
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम के प्रस्तुत करते हैं तुषार पारासर और कार्यक्रम संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
2: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 होने को है, आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
3: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
4: नमस्कार। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अमीषा पटेल।
5: नमस्कार
4: अमीषा। आज ढेर सारी खेलों की खबरें हमारे पास हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाना है और इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार तकरीबन 11 बजे के आसपास होगी और ये मुकाबला बहुत ही अहम है क्योंकि पहला मुकाबला सीरीज का भारतीय टीम ने जीता था। बहुत ही अच्छी तरह से वो मुकाबला भारतीय टीम ने जीता था। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के ऊपर 38 रनों से जीत दर्ज की थी। T20 ये मुकाबला है। पहले खेलते हुए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 188 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर और उसके बाद इंग्लैंड की टीम को केवल 150 रन ही बनाने दिए निर्धारित 20 ओवर्स में और 38 रन से वो मुकाबला जीत लिया। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड की टीम ने अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए दूसरा मुकाबला भारतीय महिलाओं से जीत लिया। 26 रन से भारतीय महिलाएं वो मुकाबला हार गई थी। इंग्लैंड की टीम ने पहले खेलते हुए 168 रन बनाए थे निर्धारित 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर और भारतीय महिला टीम केवल 142 रन ही बना सकी निर्धारित 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर और 26 रन से ये मुकाबला भारतीय टीम हार गई थी। लेकिन हमेशा आज का जो मुकाबला है वो बहुत ही खास है क्योंकि जो आज का मुकाबला जीतेगा वो सीरीज भी जीतेगा और यहाँ से जो सीरीज अगर भारतीय महिला क्रिकेट टीम जीत जाती है तो वर्ल्ड कप भी हमें खेलना है तो एक हमारे पास कॉन्फिडेंस भी होगा और मोरल भी बहुत हाई होगा।
5: जी बिल्कुल अजय जी, ये जो मैच है, ये जो आगामी मैच है, ये ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि जो आज का मैच है वह टॉन्टन में होने जा रहा है जो कि भारतीय समय अनुसार 11 बजे शुरू होगा और हम सबको पता है कि जो सीरीज़ है ये लेवल है। और रही बात भारत की, तो भारत की जो बल्लेबाजी है जिसमें हमारे पास धुरंधर बल्लेबाज स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी से मजबूत शुरुआत की उम्मीदें रहेंगी, वहीं जो भाटियाँ हैं हमारी और जेमिमा रॉड्रिगेज हैं वे भी अच्छे फॉर्म में चल रही हैं। आपको बता दें कि पिछले मैच में जेमिमा रॉड्रिगेज ने 69 रनों की पारी खेली थी पहले T20 में। और वहीं हमें थोड़ा सा निराशा का सामना करना पड़ा था जब हमारा जो मिडल ऑर्डर है वह इतना दमखम नहीं दिखा पाए थे, तो हमारी नजरें रहेंगी हमारे बैट्समैन पर मोस्टली।
4: सही कहा आपने क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिडल ऑर्डर हमारा उस तरह से नहीं रन बना पा रहे हैं जैसे बनाने चाहिए क्योंकि मिडल ऑर्डर में जिस तरह से यस्तिका भाटिया ने पहले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी उसके बाद कप्तान हरमन के लिए भी एक ये अच्छा मुकाबला है अपनी लय में वापस आने के लिए और उसके अलावा दीप्ति शर्मा हालांकि गेंद से अच्छा कर रही हैं लेकिन अभी भी बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं उनकी वो छाप वो नहीं छोड़ पाई हैं जो उनको छोड़नी चाहिए या जो एक बहुत ही आवश्यक होती है क्योंकि यदि वो रन भी बनाती हैं तो काफ़ी धीमी गति से रन बनाती हैं। तो यहाँ पर दीप्ति शर्मा को भी एक अच्छा मौका है आज के मुकाबले में कि वो तेज़ी से रन बटोर सकती हैं और आने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनज़र ये बहुत ही अहम मुकाबला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर होगी जो भारतीय गेंदबाजी है। भारतीय गेंदबाजी में जो खास तौर से श्री चढ़नी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और बहुत ही खास वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, एक बहुत युवा खिलाड़ी हैं, 19-20 साल की अभी उनकी एज है लेकिन उनका जो गेंद करने का स्टाइल है, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग वो करती हैं और उनका जो गेंद करने का स्टाइल है वो बहुत ही मैच्योर है और ये कह सकते हैं एक परिपक्व गेंदबाज हैं और किसी भी बल्लेबाज को कभी भी वो आउट कर सकती हैं। और वहीं उनका बखूबी साथ निभाएंगी श्रियंका पाटिल। श्रियंका पाटिल का गेंद

0: ऑफ स्पिनर हैं, अच्छी गेंद करना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि वो एक चार ओवर ऐसे होते हैं जहां पर वो कई सारे दाएं हाथ के जो बल्लेबाज होते हैं उनके लिए वो काफ़ी परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। और वहीं जिस तरह से नंदिनी शर्मा और अरुंधति रेड्डी तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगी, तो वो भी अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय टीम की जो गेंदबाजी है उसके ऊपर काफ़ी दारोमदार रहेगा, क्योंकि बल्लेबाजी में भारतीय टीम काफ़ी अच्छा कर जाती है लेकिन गेंदबाजी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात, आज की जो ग्राउंड कंडीशंस हैं और साथ में जो फील्डिंग भारतीय टीम के लिए होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ग्राउंड कंडीशंस की भी बात करें तो टोंटन जो जगह है वहाँ पर बारिश की कभी भी संभावना बन सकती है, तो ग्राउंड कंडीशंस थोड़ी ओवरकास्ट है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा मुकाबला आज हो सकता है।
1: जी बिल्कुल अजय जी, जैसा कि आपने भारतीय बल्लेबाजी की बात करी तो हम अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि जो हरमनप्रीत कौर है उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन पूरे कर लिए हैं T20 में, और वह दुनिया की सिर्फ तीसरी और भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने इस एलीट क्लब में अपनी जगह बनाई है। उनसे पहले सिर्फ न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स और जो भारत की अपनी उपकप्तान स्मृति मंदाना ही है जो ये जादुई आंकड़े छू पाई है।
0: बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि इतना बड़ा लंबा करियर हो और लगातार परफॉर्म करते हुए वो रन बनाते जाएं और एक मुकाम वो हासिल करें, और आज उस लय की और उस फॉर्म की भी परीक्षा है कि आज सीरीज को अगर जीतना है तो भारतीय टीम को इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को, इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम को हराना होगा, और हारने मतलब जीतने के बाद भारतीय टीम का जो उत्साह होगा वो बहुत ही काम आएगा वर्ल्ड कप में।
1: जी बिल्कुल, और वहीं इंग्लैंड टीम के जो कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं टॉप तो उनकी हम बात करेंगे, जैसे फ्रेया कैंप हैं जिन्होंने दूसरे T20 में सबसे एक स्टार परफॉर्मर की जो एक रोल निभाया था, जिन्होंने निचले क्रम में आकर महज 13 गेंदों में 39 रन बनाए और फिर गेंद से भी उन्होंने जादू दिखाया, उन्होंने 2 विकेट लेकर अपने दम पर इंग्लैंड को वापसी कराई इस मैच में।
0: बड़ी सही बात आपने बताई, क्योंकि जो ऑलराउंडर खिलाड़ी होते हैं वो बहुत ही कारगर साबित होते हैं, और इंग्लैंड के पास कई सारे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जैसे हीदर नाइट हैं वो एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, वहीं कप्तान विकेटकीपर जिस तरह से हैं एमी जोन्स बहुत शानदार विकेटकीपर हैं, बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करती हैं, और शार्लेट डीन जो कप्तान है वो भी एक ऑलराउंडर हैं, तो बहुत सारे खिलाड़ी इंग्लैंड के पास भी ऐसे हैं जो ऑलराउंडर हैं, और आज के मुकाबले में उनको अपनी बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा तभी आज का मुकाबला वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम से जीत सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और जैसे जो आज की पिच है आपने पहले ही उसका रुख बता दिया है कि वह कैसी है, और भारत को अपने मिडिल ऑर्डर की जो बल्लेबाजी है उसमें जरूर सुधार करना होगा।
0: जी हाँ, और हम यही चाहेंगे, सभी खेल प्रेमी यही चाहेंगे कि भारतीय महिला टीम आज का मुकाबला जीत के सीरीज भी जीते। और वहीं अब क्रिकेट की बातों को देते हैं विराम और अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन में इंडोनेशिया ओपन के जो मुकाबले चल रहे हैं वहां पर लक्ष्य सेन अपना मुकाबला हार गए हैं। काफी अच्छा कड़ा मुकाबला था लेकिन उम्मीद थी लक्ष्य सेन ये मुकाबला जीत जाते, लेकिन एक जिस तरह से लक्ष्य सेन का खेलने का तरीका है, अंदाज है, वो बहुत तेजी से अपने ओपोनेंट के ऊपर हावी होते हैं, लेकिन उनके मुकाबलों को अगर हम लगातार वॉच करें, उनको देखें, तो हमें ये पता लगता है कि लक्ष्य सेन पहले 10-11 पॉइंट लेने के बाद थोड़े से एक जगह जाके स्थिर हो जाते हैं, और उनके जो अगले जो 10 पॉइंट लेने होते हैं वहाँ पर वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिसके कारण अगला जो उनका सामने वाला जो खिलाड़ी होता है वो कई बार उनके ऊपर हावी हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, और आपने बात शुरू कर दी है इंडोनेशिया ओपन की तो हम अपने श्रोताओं के बताना चाहेंगे कि 2 जून से 7 जून 2026 तक चलने वाले ये जो बैडमिंटन का सत्र है ये सबसे बड़े आयोजनों में से एक है, क्योंकि ये जो इंडोनेशिया ओपन है ये आधिकारिक इसकी जो शुरुआत है ये आज से हो चुकी है, और यह है टूर्नामेंट 1982 से शुरू हुआ है और ये इस साल का 44वां संस्करण होगा। यह प्रतियोगिता जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ये प्रतियोगिता करता है और ये सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक मानी जाती है। इसे सुपर 1000 का भी एक सर्वोच्च दर्जा प्राप्त हुआ है, और आपको बता दें कि पूरी दुनिया में केवल बैडमिंटन की 4 प्रतियोगिताओं को ही ये खास सम्मान मिला हुआ है। इस बार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में दुनिया के

0: खिलाड़ी 14,50,000 अमेरिकी डॉलर की विशाल इनामी राशि के लिए एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। और बात करें पहले दिन के रोमांच की, तो जो आज का दिन है वह काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा, भारत का जिसमें सफ़र जो उतार चढ़ाव भरा रहा, और भारतीय प्रशंसकों के लिए प्रतियोगिता का पहला दिन जो कुछ ऐसा रहा कि बात करें सिंगल मुकाबले की, तो सिंधु की जो चमक है उससे जो दिग्गजों को झटका लगा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें भारत के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक खबर महिला सिंगल्स वर्ग से आई है, जहां दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने टूर्नामेंट में शानदार आगाज किया है। उन्होंने पहले दौर के एक बेहद कड़े मुकाबले में थाईलैंड की बुसाना को 25-23, 21-16 से पराजित कर प्री क्वार्टर फाइनल में राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है। अगले दौर में उनका सामना विश्व की नंबर एक खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होने की प्रबल संभावना है। हालांकि सिंगल्स में जो भारत को कुल बड़े झटके भी लगे हैं, और स्टार शटलर लक्ष्य सेन को पहले ही दौर में इंडोनेशिया के अलवी फरहान से 21-19, 21-16 से सीधे सेटों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदंबी श्रीकांत और महिला सिंगल्स में मालविका बंसोड भी अपने शुरुआती दौर के मुकाबलों से हार कर बाहर हो गए हैं। वहीं बात करें डबल्स और मिक्स की, तो कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल है यहाँ पे। और बात करें डबल्स कैटेगरी की, तो गेम्स डबल्स में अमर सकरुनन और एम अर्जुन जो हैं उनकी जोड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। इस भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एन अजरीन और टेन डब्यूल्स के की जोड़ी को 18-21, 10-21 से हराकर शानदार विजय दर्ज की है और अगले दौर में प्रवेश किया है। लेकिन इसके बाद कोर्ट से सिर्फ निराशाजनक खबरें ही आई हैं। विमेंस डबल्स में भारत की स्टार जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद फुलेला को इंडोनेशिया की स्थानीय जोड़ी एफ कुसुम और एम प्रेसिटारसी से 21-14 और 21-12 से करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं मिक्स डबल्स की बात करें तो मिक्स डबल्स में भी भारत की चुनौती समाप्त हो गई, जहां ध्रुव कपिला और तनिषा ग्रास्टो की जोड़ी को चीन के गुओ XW और शेन FH की मजबूती जोड़ी ने एक तरफा मुकाबले में 21-11, 21-10 से हरा दिया है। इन शुरुआती झटकों के बाद अब देश की सारी उम्मीदें पुरुष डबल्स वर्ग में भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रणकीरे डी और चिराग शेट्टी पर टिकी हैं। यह जोड़ी पिछले ही सप्ताह सिंगापुर ओपन का खिताब जीतकर अभूतपूर्व फॉर्म के साथ जकार्ता पहुंची है। कल यानी 3 जून को इनका मुकाबला मलेशिया के कांग के एक्स और एरोनताई की जोड़ी से होने जा रहा है, और फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी जोड़ी भारत को जीत की राह में वापस ला सकती हैं।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई, और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो सक्षम हैं किसी भी मंच पर अपने मुकाबले जीतने के लिए, और कई सारे खिलाड़ी अभी भी इंडोनेशिया ओपन में हैं और निश्चित तौर पर आने वाले जो उनके मुकाबले हैं उनमें वो जीत दर्ज करेंगे, और बहुत ही सुखद खबरें इंडोनेशिया ओपन से भी आएंगी। और वहीं अब बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की।

0: अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। फुटबॉल का यह 23वां विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप बनने जा रहा है। खास बात यह है कि पहली बार इस टूर्नामेंट की संयुक्त मेजबानी कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका करने वाले हैं।
1: यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। फीफा के इतिहास में पहली बार 48 टीमें मैदान में उतरेंगी और उनके बीच कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच मेक्सिको में होगा, जबकि फाइनल मुकाबला न्यूजर्सी में खेला जाएगा।
0: इस बार 12 ग्रुप बनाए गए हैं और यही वजह है कि यह अब तक का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप माना जा रहा है। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस की निगाहें अलग अलग ग्रुप्स पर टिकी हुई हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस ग्रुप की जिसे कई लोग इस टूर्नामेंट का सबसे अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप मान रहे हैं।
1: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रुप बी की, जहाँ खुद मेजबान कनाडा अपनी किस्मत लिखने उतर रहा है। इस ग्रुप में कनाडा के साथ

0: साथ मौजूद हैं यूरोप की मजबूत पावर हाउस स्विट्जरलैंड। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। स्विट्जरलैंड के साथ साथ इस ग्रुप में नजर आएगा एशियाई महाद्वीप का दमदार चैलेंज लेकर आया कतर, जो पिछले फीफा वर्ल्ड कप यानी 2022 के 22वें संस्करण का मेजबान भी रहा था। ऐसे में विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया नहीं होगा।
1: वहीं अपने जबरदस्त फिजिकल गेम के लिए मशहूर बोस्निया और हर्जेगोविना इस ग्रुप के मुकाबलों को और भी दिलचस्प बनाने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस ग्रुप में मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है, जहां हर टीम के पास नॉकआउट में जाने का पूरा मौका होगा।
0: अब बात करें मुकाबलों की, तो इस ग्रुप का असली घमासान शुरू होने जा रहा है 12 जून को टोरंटो के मैदान पर, जहां मेजबान कनाडा अपने घरेलू फैंस के सामने भिड़ेगा बोस्निया और हर्जेगोविना से।
1: वहीं ठीक अगले दिन यानी 13 जून को सैन फ्रांसिस्को में कतर और स्विट्जरलैंड की टक्कर होगी। अब जब टीमें इतनी मजबूत हैं तो मैदान पर जंग भी दिग्गजों के बीच होगी,
0: और अब जब टीमें इतनी दमदार हों तो खिलाड़ियों पर भी नजरें रहना लाजमी है। इस ग्रुप में जिस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी वह है कनाडा के अल्फांसो डेविस। बायर म्यूनिक के इस स्टार खिलाड़ी की रफ्तार और आक्रामक खेल किसी भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं दूसरी ओर स्विट्जरलैंड की उम्मीदें काफी हद तक अपने कप्तान ग्रैंड जाखा पर टिकी होंगी। मिडफील्ड में उनका अनुभव और खेल को नियंत्रित करने की क्षमता स्विस टीम की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है।
1: अगर टीमों के हालिया प्रदर्शन और विश्लेषण पर नजर डालें तो स्विट्जरलैंड इस ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करने की सबसे मजबूत दावेदार दिखाई देती है। लेकिन कनाडा को अपने घरेलू मैदान और अपने फैंस का समर्थन मिलने वाला है, जो उसे अतिरिक्त बढ़त दे सकता है। वहीं कतर और बोस्निया को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों टीमें बड़े उलटफेर करने का दम रखती हैं।
0: अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो नियमों के अनुसार यह ग्रुप की टॉप दो टीमें सीधे अगले दौर में पहुंच जाएंगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तीसरे स्थान पर रहने वाली सर्वश्रेष्ठ टीमों के पास भी राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने का मौका होगा। यानी इस ग्रुप में हर एक गोल, हर एक पॉइंट और हर एक मुकाबला बेहद अहम साबित होने वाला है।
1: तो कुल मिलाकर इतना तो तय है कि ग्रुप बी फुटबॉल प्रशंसकों को भरपूर रोमांच देने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कड़ी टक्कर में कौन सी टीमें अगले दौर का टिकट हासिल करती हैं।
0: लेकिन एक बात साफ है, जब ये चारों टीमें मैदान पर उतरेंगी तो मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं बल्कि इतिहास रचने का भी होगा।

0: फुटबॉल के बाद अब बात करते हैं उस 64 खानों की बिसात की, जिसमें लगातार भारतीय खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और नॉर्वे में इस समय जो शानदार टूर्नामेंट चल रहा है उसकी खास रिपोर्ट लेकर हैं हमारी सहयोगी अमीषा पटेल।
1: जी, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ओपन सेक्शन की। तो ओपन सेक्शन में भारत के आर प्रज्ञानंदा ने अली रज़ा पर एक शानदार और सीधी जीत दर्ज करते हुए पूरे 3 पॉइंट्स हासिल किए हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्व चैम्पियन मैग्नस कार्लसेन और विंसेंट क्रैमर के बीच का मुकाबला आर्मगेडन तक खिंच गया था, जहां कार्लसेन ने बाजी मारी। इसके अलावा भारत के डी गुकेश ने एक कड़ी टक्कर में तब के टेबल टॉपर वेस्ली सो को आर्मगेडन में शिकस्त दी है। अब रुक करते हैं हम विमेन सेक्शन की। तो विमेन सेक्शन में जो बीबी सेरा हैं, उन्होंने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए जू जिनर को सीधे मुकाबले में परास्त किया है। भारत की दिव्या देशमुख ने अपनी बेहतरीन फॉर्म जारी रखते हुए कोनेरू हम्पी को आर्मगेडन में हराया। एक और दिलचस्प मैच में आना मोइजीचुक ने जू वेंजुन पर आर्मगेडन के जरिए जीत दर्ज की है। वहीं करंट स्टैंडिंग्स की बात करें तो इन नतीजों के बाद अगर हम ओपन सेक्शन की रैंकिंग्स पर नज़र डालें तो वेस्ली सो 12.5 पॉइंट्स के साथ अब भी टॉप पर बनी हुई है। अली रज़ा 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि मैग्नस कार्लसेन, प्रज्ञानंदा और विंसेंट कैम्बर 9-9 पॉइंट्स के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। विमेन सेक्शन में बिबिसेरा 12.5 पॉइंट के साथ सबसे आगे हैं और दिव्या देशमुख 10 पॉइंट के साथ मजबूती से दूसरे स्थान पर बनी हुई है। टूर्नामेंट के लेवल 2 राउंड बाकी हैं और खिताब की ये जो लड़ाई है और भी दिलचस्प होगी।

0: गई है। अगले राउंड की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
1: और अब चेस के बाद रुख करते हैं लॉन टेनिस का, जहां पर फ्रेंच ओपन में जबरदस्त मुकाबले खेले जा रहे हैं। और इस समय जो लाइव इस समय जो मुकाबला चल रहा है वो चल रहा है वुमेन्स सिंगल में, क्वार्टर फाइनल चल रहा है इस समय। दोनों ही खिलाड़ी जो हैं यूक्रेन की हैं, स्वेतलाना और कोस्याका, दोनों ही खिलाड़ी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रही हैं। पहले सेट में 3-6 से जीतने के बाद दूसरे सेट में 6-2 से मुकाबला हार गई कोस्याक। जो स्वेटिलोना जो यूक्रेन की खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस मुकाबले में कमबैक किया और तीसरे सेट में दोबारा से कोस्योक ने अपना शानदार टेनिस खेलते हुए, मार्टा कोस्टियोक ने अपना जो अपनी सीट है वो पक्की कर ली है सेमीफाइनल के लिए। और एलिना स्वेतलोना को हराते हुए वो पहले क्वार्टर फाइनल की विजेता बनी है और अब वो सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं दूसरी ओर मेन सिंगल्स की बात करें तो बस थोड़ी देर में शुरुआत होगी क्वार्टर फाइनल की, जिसमें स्पेन के रोजर जुडार और जर्मनी के जवरेव के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। तो फ्रेंच ओपन में लगातार अच्छे मुकाबले हो रहे हैं, और कल जो बेहतरीन मुकाबला फ्रेंच ओपन में हुआ था वो मुकाबला था आर्याना सबलेंका ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में नाओमी ओसाको को सीधे सेटों में हरा दिया, और ये मुकाबला 1 घंटा 27 मिनट चला था। पेरिस में टॉप सीड सबलेंका ने जापान की ओसाका को 1 घंटे 27 मिनट चले मुकाबले में 7-5 और 6-3 से डायरेक्ट सेटों में, यानी कि सीधे सेटों में उनको हराया। और इस जीत के बाद सवालेंका ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है, वे खिताब की मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। पिछले 3 साल में पहली बार फ्रेंच ओपन में कोई विमेंस मैच खेला गया है। इसे देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में दर्शक भी वहां पर पहुंचे थे, और जिस तरह से ये मुकाबला खेला गया था तो वो दर्शाता है कि अपने आप में किस तरह से ये दोनों खिलाड़ी सबलेंका और ओसाका दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। पहले सेट में 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका ने सबलेंका की सर्विस का अच्छा जवाब दिया। दोनों 5-5 की बराबरी पर थी, लेकिन सबलेंका ने ओसाका की सर्विस को ब्रेक कर पहला सेट 7-5 से जीता। वहीं पहले सेट की मानसिक बढ़त का फायदा सबालेंका को दूसरे सेट में मिला। उन्होंने शुरुआत से ही ओसाका पर दबाव बनाए रखा। ओसाका ने वापसी की कोशिश की, लेकिन बेलारूस की सबालेंका ने दमदार ग्राउंड स्ट्रोक्स के दम पर दूसरा सेट 6-3 से जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। तो ये दर्शाता है कि फ्रेंच ओपन जो एक टेनिस का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और हमेशा ये लाल बजरी जिसे रोला गेरा कहा जाता है, जिसे हमारे यहाँ पर अक्सर लाल बजरी कहा जाता है, लाल रंग की एक परत डाली जाती है और उस पर ये खेला जाता है। लाल मिट्टी नहीं होती है, थोड़ी बजरी टाइप होती है, लेकिन इसके ऊपर ये मुकाबले खेले जाते हैं। और फ्रेंच ओपन दुनिया का बहुत बड़ा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, और ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसे हर बड़ा खिलाड़ी जीतना चाहता है। और वहीं अब फ्रेंच ओपन से चलते हैं स्क्वाश की तरफ, और स्क्वाश के लिए बहुत सारी खबरें लेके आई हैं अमीषा पटेल।
0: जी, तो अभी स्क्वाश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट चल रहा था, ब्रिटिश ओपन। ये एक स्क्वाश की चैम्पियनशिप है जिसमें हमारे भारत की बात करें तो पुरुषों के ड्रॉ में भारत की चुनौती मंगलवार को खत्म हुई और अभय सिंह और वीर चोटरानी को अपने से बेहतर रैंक वाले विरोधियों के खिलाफ दूसरे राउंड में हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड नंबर 24 भारतीय खिलाड़ी अभय ने मिस्र के स्टार मोहम्मद जकारिया के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार 4 गेम तक चले करीबी मुकाबले में 9-11, 4-11, 11-7, 10-12 से वह हार गए। अभय ने मैच की शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन पहले 2 गेम गवा बैठे। इसके बाद उन्होंने दमदार वापसी करते हुए तीसरा गेम 11-7 से जीत लिया और मुकाबले में वापसी के संकेत दिए, लेकिन चौथे गेम में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। अभय ने मैच को निर्णायक 5वें गेम तक ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अहम मौके पर मोहम्मद जकारिया ने बेहतर खेल दिखाया और 12-10 से गेम अपने नाम कर लिया। वहीं अभय की इस हार के साथ

0: टूर्नामेंट में उनका शानदार सफर भी समाप्त हो गया था। भारतीय खिलाड़ी ने प्रतियोगिता की शुरुआत बेहतरीन अंदाज में की थी और पहले दौर में कोलंबिया के मार्टियांस नुटसेन को सीधे गेम में हराकर अपनी छाप छोड़ी थी। पहले राउंड में अभय शानदार लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने नुटसेन को 11-8, 11-5 और 11-4 से हराकर अपना जीत दर्ज की थी। इस प्रभावशाली प्रदर्शन के दम पर उन्होंने अगले दौर में जगह बनाई, जहां उनका सामना दुनिया के नंबर 8 खिलाड़ी और मिस्र के स्टार मोहम्मद जकारिया से हुआ। हालांकि जकारिया के खिलाफ अभय ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन करीबी मुकाबले में हार के साथ उनका टूर्नामेंट अभियान समाप्त हो गया। वहीं वीर चोटरानी का सफर दूसरे राउंड में ही खत्म हो गया। उन्होंने दुनिया के 40वें नंबर के खिलाड़ी जोएल माकिन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। चोटरानी ने शुरुआत 2 गेम में कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर में दुनिया के अनुभवी नंबर 6 खिलाड़ी के खिलाफ 10-12, 9-11, 3-11 से हार गए। भारतीय खिलाड़ी ने शुरुआती राउंड की शानदार जीत के साथ इस मुकाबले में अपनी जगह बनाई थी। उन्होंने पाकिस्तान के नूर जमान को 1-8, 12-14, 11-6, 11-7 से हराया था। हालांकि माकिन की लगातार अच्छा खेलने की क्षमता और अनुभव उनके लिए अहम साबित हुआ और वह आखिरी 16 में पहुंच गए।
1: स्क्वॉश के बाद अब रुख करते हैं हॉकी की तरफ, जहां भारतीय हॉकी हॉकी इंडिया ने FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप 2025-26 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है और अनुभवी सलीमा टेटे को टूर्नामेंट में टीम का कप्तान बनाया गया है। यह प्रतियोगिता 15 से 21 जून तक न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेली जाएगी। टीम में अनुभवी गोलकीपर सविता और बीचू देवी खारीबाम शामिल हैं। डिफेंस लाइन की अगुवाई सुशीला चानू, पुखराम बम, इशिका चौधरी, निक्की प्रधान और ज्योति करेंगी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर डेब्यू करने वाली लालथन तू आंगी और शिल्पी डबास को भी टीम में जगह मिली है। मिडफील्ड में सलीमा टेटे के साथ नेहा, सुनीता टोपो, साक्षी राणा, दीपिका सोरेंग, सोनम और लालरिया मासियामी शामिल हैं। फॉरवर्ड लाइन की अगुवाई नवनीत कौर करेंगे, जिन्हें दीपिका, ऋतुजा, दादासो, पिसल और अनु और इशिका का साथ मिलेगा। ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद ये टीम तैयार की गई है और भारतीय महिला हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सफल दौरे से लौटी हैं, जहां उन्होंने 4 फ्रेंडली मैचों की सीरीज खेली। इस दौरे ने टीम को नेशंस कप से पहले बेहतरीन तैयारी का मौका दिया है और जिस तरह से ये टीम तैयार हुई है, तो ये हमेशा कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बहुत ही शानदार टीम तैयार हुई है। इसमें युवा जोश भी है और अनुभव भी है।
0: जी बिल्कुल, और हम अपने श्रोताओं को ये FIH हॉकी नेशंस कप 2021 में जो ये शुरू किया गया था, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी बताना चाहेंगे कि इसका जो मकसद है ये उन टॉप रैंक वाली टीमों को उच्च स्तरीय टूर्नामेंट देना है जो FIH हॉकी प्रो लीग में हिस्सा नहीं लेती हैं। जीतने वाली टीम को अगले सीजन में FIH हॉकी प्रो लीग में प्रमोट होने का मौका मिलता है। वहीं ये जो टूर्नामेंट है इसमें भारत और स्पेन और न्यूजीलैंड की महिला टीम एक एक बार इस खिताब को जीत चुकी हैं। ये टूर्नामेंट प्रो लीग में जाने का रास्ता है। नेशंस कप जीतने वाली जो टीम है वे अगले साल दुनिया की टॉप टीमों के साथ प्रो लीग में खेल सकती हैं।
1: और जिस तरह से प्रो लीग हॉकी प्रो लीग वो टूर्नामेंट होता है जिसमें दुनिया की बेहतरीन टीमें खेलती हैं, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ टीमें होती हैं वो खेलती हैं, और यदि आपको उस लीग में खेलना है तो आपको नेशंस कप में अच्छा करना पड़ेगा। नेशंस कप रास्ता है उस लीग तक पहुंचने का, तो बहुत ही खास है नेशंस कप। और जिस तरह से भारतीय टीम बनाई गई है, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि भारतीय टीम, भारतीय महिला हॉकी टीम शानदार परफॉर्मेंस देगी और प्रो हॉकी लीग के लिए भी क्वालिफाई हो जाएगी। और अब जिस तरह से हॉकी की बात की, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेबल टेनिस की। और WTT स्कोप टूर्नामेंट इस समय चल रहा है और जो ग्रुप ऑफ 14 के मुकाबले महिला सिंगल्स में चल रहे हैं, उसमें जापान की कुमारा इस समय आगे चल रही हैं अमीला निकोले के खिलाफ। 3-0 से उन्होंने पहला मुकाबला जीता और दूसरे में 11-2, 11-4 और 11-4 से वो अभी तक 4 सेट जीत चुकी हैं टेबल टेनिस में।

0: और वहीं मैन सिंगल में जुआन प्रेज और प्योक मैन के बीच मुकाबला चल रहा है। दोस्तों ढेर सारी खबरें हैं खेलों की, लेकिन अब स्टूडियो घड़ी में बता रही है कि हमें आपसे विदा लेनी होगी। मैं अजय तोमर का, मेरे साथ मेरे सहयोगी अमीशा पटेल और कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आपसे विदा लेते हैं।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें बंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और

धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: لها. आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते, अपि च वास्तविक विकासः तदैव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन, आर्थिकेन, शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अर्बुदरूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। केन्द्र सर्वकारेण आव्रजन नियमे निर्गतायाः अधिसूचनायाः अनुसारम् अधुना 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवाससमयं वर्धयितुमिच्छन्ति तर्हि तेभ्यः आव्रजनावधे समाप्तिपूर्वम् एव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ अद्य सर्वोच्चन्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत्। सर्वोच्चन्यायालये न्यायाधीशानां संख्या समेध्य 38 संजाता। अपि च विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंह, जर्मनी देशस्य थुरिंगिया इत्यस्य मन्त्री, राष्ट्रपति च मारियो वोग्ट इत्यसौ च अद्य नवदिल्ल्यां क्वांटम संचारस्य फोटोनिक्स इत्यस्य उद्योग नेतृत्वभूतस्य डीपटेक सहयोगस्य च विषये चर्चितवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरं, जागरूकः, सक्षमश्च कारयति। अद्य नवदिल्ल्याम् असौ जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा प्रोक्तवती यत् वास्तविक विकासः तदेव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन, आर्थिकेन, शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: सा रेखांकितवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्ति योजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां च आदानेन प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मूवर्या अकथयत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां नैयून्यं न अस्ति, अपितु तेषाम् अभिज्ञानं, पोषणं, तेभ्यः उचित मार्गदर्शन प्रदानं च आवश्यकमस्ति।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न उच्च शिक्षा प्राप्त की।
0: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अर्बुद रूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। वित्तीय सेवा विभागः सार्वजनिक संदेश माध्यमे लिखिते संदेशे डिजिटल इति रूपेण धनादान प्रदानं स्वीकर्तुं नागरिकान् प्रति आभारं व्यक्तीकृतवान्। अवधेयं यत् UPI इत्येतत् प्रकल्पं विश्वस्य सर्वोच्चत्वेन रियल टाइम पेमेंट इति प्रकल्परूपेण समुद्भूतमस्ति, यत् देशस्य डिजिटल अर्थव्यवस्थायाः आधारः वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण आव्रजन नियमे विदेश नियमेषु च संशोधनम् अधिसूचितमस्ति। नियमानुसारं भारते 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवाससमयं वर्धयितुमिच्छन्ति तर्हि तेभ्यः आव्रजनावधे समाप्तिपूर्वमेव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति। इतः पूर्वम् 80+100 दिनानाम् अवधे समाप्त्यानन्तरं 14 दिनाभ्यन्तरं पञ्जीकरणम् आवश्यकमासीत्। गृहमन्त्रालयेन आव्रजन विदेशी नियमः इत्येषा अधिसूचना निर्गतास्ति, यस्याम् आव्रजन विदेशी नियमः इत्यस्यान्तर्गतं पञ्जीकरणसीमायां समयसीमा अध्यर्थनातन्त्रे च महत्वपूर्णानि परिवर्तनानि कृतानि सन्ति। यद्यपि निर्धारितावधेः अनन्तरं पञ्जीकरणं केवलम् आपत्कालपरिस्थितिषु एव स्वीकार्यं भविष्यति, प्रथमवारं नियमेषु अन्तर्जालमाध्यमेन अध्यर्थनाप्रणालिः योजितास्ति, केनापि आदेश।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: आज है हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम। तो आज रेडियो कृषि पाठशाला के अंतर्गत आप सुनेंगे गन्ने की खेती, जिसमें आज का विषय है गन्ना फसल में कीट और रोग नियंत्रण। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटैश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहैलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉलीहैलाइट।
1: ग्राम संसार कार्यक्रम, इस समय हमारे श्रोता, हमारे भाई बहन सुन रहे हैं। और जैसा कि आपको बता दें, आज हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम है रेडियो कृषि पाठशाला के अंतर्गत गन्ने की खेती, जिसमें आज का विषय है गन्ना फसल में कीट और रोग नियंत्रण। इस विषय से संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो आप विशेषज्ञ से सीधे फोन के जरिए जुड़ सकते हैं और गन्ना फसल से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान आप पा सकते हैं।
2: बिल्कुल। और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर DS सिरोही, जो कि गन्ना वैज्ञानिक है मुजफ्फरनगर से। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक है इंडियन पोटैश लिमिटेड नई दिल्ली।
1: बिल्कुल। और जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वो है नरेश पारसर जी, लेकिन आप कैसे हमसे जुड़ेंगे उसके लिए हम अपना फ़ोन नंबर बता देते हैं। 2342-1082 एक नंबर ये है, और दूसरा नंबर है 2342-1083। दिल्ली से बाहर के जो भी श्रोता हैं वो स्टडी कोड लगाना न भूलें, और ख़ास करके जो नंबर है वो 011, तो इसका ख्याल रखें। और इस समय हमारे आज के जो विशेष बात कर रहे हैं हमारे साथ नरेश पारसर जी, जो हमारे साथ ही इस समय जुड़े हुए हैं, तो आपको हम ले चलते हैं सीधे स्टूडियो की तरफ।
3: फोन इन कार्यक्रम में डॉक्टर सिरोही जी, डॉक्टर तेवतिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद।
5: धन्यवाद जी।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो मौसम में अचानक से बदलाव देख रहे हो आप, तो बारिश हो रही है, और अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो लगभग सभी जगह ये बारिश देखी गई है। गन्ने की फसल जिन किसानों की खड़ी हुई है, तो इस बारिश को आप कैसे देखते हैं, अनुकूल है प्रतिकूल है?
4: नरेश जी, ये जो बारिश है गन्ने के हिसाब से अभी बहुत कम हुई है, ज़्यादा बारिश नहीं है।
3: और चाहिए?
4: हाँ चाहिए, और तो ज़रूरत ही है।
3: हाँ,
4: ये
3: हाँ।
4: बहुत कम है गन्ने के।
3: जी जी।
4: जिस दिन बारिश हो रही थी मैं अपने खेतों पर ही था
3: जी,
4: और वो थोड़ी सी बारिश हुई और वो उसमें जो है ये लगा लो कि पानी नीचे तक भी नहीं पहुंचा उसमें।
3: अच्छा, 5-10
4: हो सकता है किसी एरिया में हुई हो ज़्यादा
3: जी,
4: लेकिन इधर दिल्ली के आसपास तो यहाँ पे तो बहुत कम हुई है। तो और वो थोड़ी सी देर के लिए होके वो आंधी सी आके और थोड़ा सा होके वो चली गई। तो गन्ने के लिए तो बारिश ज़्यादा चाहिए और सब फैलाव चाहिए, पूरे एरिया में चाहिए। थोड़ी सी जगह पे अगर हो गया तो वो, नहीं तो अभी गन्ने के लिए बारिश की काफी किसान इंतजार में बैठे हैं बहुत जगह।
3: जी जी। डॉक्टर सरोही को जोड़ना चाहेंगे।
5: देखिए ऐसा है पारसा जी, मेरा सभी किसान भाइयों को, प्रोग्राम सभी श्रोताओं को नमस्कार। और जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, वर्तमान में अगर आप एक हफ्ते की बात

0: रहे
1: जी
0: तो इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, लेकिन पिछले अगर हम 20 दिन की या एक मास की बात करें तो जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से गन्ने की लेट प्लांटिंग होती है,
1: जी
0: जो
1: जी
0: देरी से बुआई हम लोग गेहूं के बाद करते हैं किसान भाई,
1: जी
0: उसमें थोड़े से हमारे प्रतिकूल प्रभाव रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि जैसे गन्ने की बिजाई हो रही है,
1: जी
0: आप अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में भी जो बिजाई हुई,
1: जी
0: तो गन्ना आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 1 महीने का समय जमने में लेता है, तो उस पर कुछ साइड इफेक्ट आए,
1: जी
0: उसका जर्मिनेशन प्रभावित हुआ, अंकुरण
1: जी
0: में थोड़ी सी देरी हुई,
1: जी
0: जमीन के ऊपर रपड़ा टाइप हो जाता है, हार्ड लेयर हो जाती है। साथ ही साथ जो गन्ना जम करके हमारा मार्च के महीने का खड़ा हुआ था,
1: जी
0: 1 महीने की फसल का, उसका जो टिलिंग जो स्टेज थी
1: जी
0: उसके ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से जैसे ही लू चली और तापक्रम बढ़ा,
1: जी
0: उसका इस फसल के ऊपर जो है, जो हमारी वर्तमान खेती की स्टैंडिंग क्रॉप खड़ी है, चाहे वो पेड़ी की है चाहे वो हमारा पौधा है, उस पर जो है उसका कोई अनुकूल प्रभाव है। और जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि अभी हम जो है सिंचाई के लिए प्री मानसून की वेट कर रहे हैं कि अभी प्री मानसून बारिश हो तो फसल को हमारे को उसको लाभ होगा और वो
1: पानी
0: एक
1: बच जाएगा
0: पानी
1: किसानों
0: बच
1: का।
0: जाएगा
1: जी
0: और पानी की बचत होगी, और साथ ही साथ प्रथम बारिश जो प्री मानसून होती है उसको किसान भाई भी जानते हैं और सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वो एक खाद का काम करता है,
1: जी जी
0: तो उसका सब वेटिंग में है फार्मर, और
1: जी
0: ये चाहते हैं कि भाई जितना जल्दी बारिश होगी। लेकिन साथ ही साथ अभी हैवी रेन जो है वो हमारे लिए प्रतिकूल होगी, क्योंकि हमारी जो कर्षण क्रियाएं हैं वो ज्यादा प्रभावित हो, अर्ली मानसून से गन्ने की फसल को प्रभाव पड़ता है।
1: जी जी जी तो डॉक्टर साहब, जितने भी हमारे किसान हैं वो अच्छी तरह समझ गए होंगे, इस पे चर्चा और भी करेंगे। आपने कहा बारिश हुई, फिर गर्मी भी बढ़ गई है, तो वो कीट पतंगों के लिए तो बहुत ज़्यादा अनुकूल हो जाती है स्थिति। पर उससे पहले डॉक्टर साहब तेवतिया जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो गन्ने के किसान हैं, गन्ने के किसानों के लिए चाहे आप खाद की बात कर लो, दवाओं की बात कर लो, या कीड़े मारने की दवाओं की बात कर लो, तो आईपीएल की क्या भूमिका है, किस तरह से आप किसानों के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं?
2: देखिए, बहुत कम कंपनी ऐसी हैं कि जो शुगर की मील भी हैं जिनकी, और जिनकी फर्टिलाइज़र की बिजनेस भी है।
1: जी
2: आईपीएल उनमें से एक है। आईपीएल के पास में सारे फर्टिलाइज़र हैं जो भी गन्ने के लिए शुरू से लेके आखिर तक ज़रूरत होती है। हमारे पास इस समय 12 हो गई हैं, 12 शुगर मील हैं ऑल ओवर इंडिया में।
1: जी
2: हम पूरा केन डेवलपमेंट के काम पर बहुत फोकस करते हैं।
1: जी
2: किसानों को हम फर्टिलाइज़र देते हैं टाइमली, हम और जो पेस्टिसाइड में भी हमने शुरू किया है, कॉस्ट टू कॉस्ट पेस्टिसाइड हम किसानों को दे रहे हैं,
1: जी
2: और उनको हमारे गन्ना विभाग की टीम जो है बराबर उनको सलाह दे रही है कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे कल्चरल प्रक्रियाएं करनी है, कैसे उसमें खाद डालना है आपको, कैसे उसमें कीट और रोग का नियंत्रण करना है।
1: डॉक्टर साहब, आपको रोकूंगा, एक फोन आ गया है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, फोन कट गया है डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे
2: हाँ,
1: कि
2: तो देखिए, आईपीएल जो है किसानों का, अच्छा सबसे पहली बात, ये जो हम आज बैठे हैं यहाँ गन्ने की पाठशाला,
1: जी
2: आप खुद ही इसके गवाह हैं कि गन्ने की पाठशाला अभी किसी भी शुगर मिल ने या पहले इससे शुरू नहीं की।
1: जी
2: पहली टाइम इंडियन पोटास लिमिटेड ने गन्ने के किसानों के लिए ये गन्ने की पाठशाला शुरू की है, और इसमें हम बिल्कुल जो एक्सपर्ट हैं गन्ने के उनको बुलाते हैं और उससे किसान लाभान्वित होते हैं, और आप खुद साक्षी हैं इस बात के कि कितने किसानों के फ़ोन आते हैं
1: बिल्कुल
2: और उनको संतोष होता है और वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा हम अपनी YouTube के द्वारा भी किसानों को जो समय समय पर मैसेज भेजकर उनको जागरूक करते हैं,
1: जी
2: और सारी टीम हमारी लगी रहती है अच्छी क्वालिटी का। सबसे जो हमारी खासियत है इंडियन पोटास लिमिटेड की, उच्च गुणवत्ता के चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे हमारे उर्वरक हो, यूरिया DAP, हम पूरे शुगर मिल्स पे प्रधानमंत्री किसान केंद्र हमने स्थापित किए हुए हैं, उनसे जो है किसान अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे सब कुछ सुविधाओं का लाभ उठा
1: मतलब
2: सकता
1: एक
2: है,
1: बार जाओ सब चीज़ मिल जाएगी भाई,
2: सब
1: उपलब्ध
2: चीज़
1: है।
2: मिलेंगी।
1: जी
2: और इधर मुजफ्फरनगर के किसानों के लिए हमने शुगर केन हार्वेस्टर भी हमने और मील पर रखा हुआ है
1: जी।
2: जो किसान भाई ट्रेंच

0: से बोते हैं डिस्टेंस पर जो शुगर केन, वो अपना गन्ना हमारे हार्वेस्टर से भी कटवा सकते हैं और बहुत ही लो कॉस्ट में हम उस पर काटते हैं। कोई उसमें प्रॉफिट बनाने का कोई हमारा इरादा रहता नहीं है।
1: जी
0: हम हमेशा जो है किसानों की खुशहाली में खुश रहते हैं और हमारा नारा भी है कि हम खुश हैं आपकी खुशहाली में।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, और भी आपसे चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन डॉक्टर सिरोही जी, जैसे शुरुआत में बात हुई थी, मैंने भी कहा था कि जो अनुकूल माहौल बना है कीटों के लिए, और गन्ना मिठास मिठास तो आकर्षित करती है कीटों को, है ना,
0: जी
1: सबको पसंद है, वो
0: जी
1: आदमियों को पसंद है तो कीटों को भी पसंद है। सवाल पूछूंगा डॉक्टर साहब इससे पहले कि फ़ोन आ गया, पहले फ़ोन देखते हैं किसका है। हेलो हेलो,
2: हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी,
0: जी।
1: कौन साहब बोल रहे हैं
2: सर, मैं बोल रहा हूँ चंद्रशेखर, भरतपुर जिला, राजस्थान से। सर
1: जी, चंद्रशेखर जी बताएं क्या सवाल है।
2: हम गन्ने की खेती करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सर गन्ने की खेती का समय जैसे हमें शुरुआत करनी है, जैसे हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग करते, तो हमें किस महीने में उसकी शुरुआत की जाए। और दूसरा है कि जैसे मेरे पड़ोस में पिछली बार गन्ने की खेती की थी, तो वो जो फसल नहीं मिल पाई मेरे चाचा को,
1: हाँ,
2: जो पैदावार होनी चाहिए थी।
1: आप पहली बार करोगे चंद्रशेखर जी?
2: हम पहली बार करेंगे, चाचा जी करते हैं हमारे।
1: जी सिरोही साहब बताइए क्या।
0: देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, आपकी जिज्ञासा है भरतपुर ज़िले की, क्योंकि
2: हाँ जी
0: वहाँ की रेतीली ज़मीन है, गन्ने के लिए पानी के आपके साधन भी थोड़ा भरतपुर ज़िले में कम मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर बरानी खेती होती है आपके यहाँ। अगर आपके पास सिंचाई के साधन हैं तो अभी ये जो समय हमारा निकल चुका है बुआई का, आप इसको 15 सितंबर के से लेकर के और 20 से 30 अक्टूबर तक अपने गन्ने की बिजाई आप कर सकते हैं। और उसके लिए जो वहाँ के क्षेत्र के लिए आपकी अनुकूल वैरायटी हैं, करनाल संस्थान द्वारा, जो हमारा ICR का करनाल संस्थान है, वहाँ पे CO 0118, और दूसरी जो वैरायटी है हमारी, अभी एक दो वैरायटी वहाँ से रिलीज हुई हैं, जनरल वैरायटी CO 70018, CO 18022, आपसे ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा। और उसके अलावा आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक निकटवर्ती ज़िले से भी इन वैरायटियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं सुझाव दूंगा, क्योंकि
2: हाँ जी
0: भरतपुर ज़िले में हमारी सरसों की खेती काफ़ी बड़े क्षेत्र में होती है,
2: हाँ जी
0: तो आप इंटरक्रॉपिंग में इसको ट्रेंच मेथड से इस गन्ने की बुझाई करेंगे और उसके अंदर बीच में अंत फसल के रूप में आप इंटरक्रॉपिंग में सरसों लेंगे, तो आपको दोहरा उसका जो
1: लाभ
0: है
1: हो
0: प्रॉफिट
1: जाएगा
0: प्राप्त होगा।
1: जी।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: चंद्रशेखर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने के लिए। बहनों भाइयों, हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला आज चल रहा है। आज का विषय है गन्ना फसल में कीट और रोग नियंत्रण। जितने भी हमारे गन्ने के किसान हैं, उनको गन्ना फसल में कीट की प्रॉब्लम है, कोई रोग दिख रहा है, तो आप तुरंत देरी किए बिना हमें फ़ोन करें। हमारे फ़ोन नंबर 2342108223 42 10 82। हमारा दूसरा नंबर है 2342108323 42 10 83, क्योंकि दिल्ली के स्टूडियो के नंबर हैं। आप मोबाइल से बात कर रहे हैं या दिल्ली के बाहर से लैंडलाइन से बात कर रहे हैं, तो दिल्ली का जो एसटीडी कोड है, इन नंबरों से पहले आप ज़रूर लगाइए, और वो है 011, उसके बाद ये नंबर डायल कीजिए, तुरंत संपर्क कीजिए। हम भरोसा दिलाते हैं कि हमारे गुणी जो विशेषज्ञ हैं, आपकी किसी प्रकार की भी समस्या हो, उसका समाधान हम कर देंगे आज। तो डॉक्टर साहब, जो मैं बात कर रहा था कि आपने कहा कि इस तरह के जो माहौल है उसमें कीट के लिए बहुत ही अनुकूल बन जाती है स्थिति। एक फोन और आ गया डॉक्टर साहब, पहले फोन लेते हैं। हेलो हेलो,
2: डॉक्टर सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: मैं साहब श्रीराम बोल रहा हूँ सर, मथुरा
1: हाँ
2: से।
1: मथुरा से
2: हाँ मथुरा से
1: जी,
2: सर।
1: श्री राम भाई बताइए क्या सवाल है।
2: सर मेरी जो फसल है सर, एक तो हमारे यहाँ शुगर मिल है नहीं, तो सर मुझे ये सजेस्ट करें, जैसे मैं गन्ना करता हूँ और शुगर मिल हमारे आसपास है नहीं, क्षेत्र में पहले थी छाता में, वो बंद हो चुकी है, तो सर मैं अपने गन्ने का क्या यूटिलाइज कर पाऊँ जिससे मुझे मतलब मुनाफा ठीक ठाक हो।
1: जी डॉक्टर सिरोही बताएं।
0: देखिए, किसान भाई को नमस्कार। और जैसा आपने अभी बताया, आपके जिले की जो चीनी मिल थी वो 6 यूनिट में पड़ी है, छाता चीनी मिल। आप अपनी गन्ने की व्यवसाय खेती करना चाहते हैं तो उसमें एक तो ये है कि जो आपका क्षेत्र है छाता के पास में, कुछ गन्ना किसान अगर लगा रहे हैं क्लस्टर में, आपके अगर ग्रुप में हुआ गांव में आपका गन्ना लगा सकते हैं 10।

0: पांच गांवों में, तो आपके समीप जो दूसरा जनपद है बुलंदशहर, वहाँ की जो नज़दीकी चीनी मिल मिलता है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का ये पूरा निर्णय रहता है कि जहाँ पे चीनी मिल नहीं है तो दूसरे चीनी मिलों को वो गन्ना अलॉट कर देते हैं। एक तो प्रयास आपके लेवल पर ये हो सकता है, दूसरा ये है कि पर्सनली अगर आप अपने लिए ही ऐसी स्थिति नहीं है, दो चार किसान ही वहाँ पर लगाना चाह सकते हैं, तो आप आज की तारीख में व्यावसायिक रूप से नए क्षेत्र में आप जूस के रूप में जो गन्ना की किस्में हैं उनको लगा के अपनी प्रॉफिट कर सकते हैं, गन्ने को जूस में बेच करके आप अपनी व्यावसायिक खेती कर सकते हैं।
1: जी
2: देखिए, और इसके अलावा आज गुड़ की जो डिमांड है बहुत बढ़ रही है, और दिल्ली भी आपके पास है, इसका फ़ायदा मुजफ्फरनगर जो कि लगभग इतनी दूर है जितनी आप हैं मथुरा, तो उसके आप पीस के रूप में गुड़ बनाइए, क्रेशर लगा सकते हैं, उसका बहुत सारे आइटम है, शक्कर बनाइए, खांड बनाइए, आप सिरका बनाइए, इस तरह के आप बना के प्रोडक्ट उनसे अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
1: श्री राम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने के लिए। अगला फ़ोन लेते हैं जी। हेलो हेलो
3: भाई जी, राम राम।
1: राम राम जी, कौन बोल रहे हैं?
3: दरभंगा नैवान से जिला हापुर घनश्याम बोल रहा हूँ जी। सर
1: क्या हाल है घनश्याम भाई के?
3: बढ़िया बढ़िया जी, तुम्हारी आवाज सुनकर फसल की भी बीमारी भाग जा।
1: अच्छा तो मेरी मेरे तो फोन पे बात कर लिया कर भाई, खेत में जाके फिर बीमारी नहीं होगी। चलो बताओ क्या सवाल है।
3: डॉक्टर साहब बोल सब राम राम।
0: राम राम जी, राम राम घनश्याम जी, राम राम।
3: अच्छा हमें तीन एकड़ गन्ना, तो उसमें हमने दो खोद निकाल दी
1: जी,
3: और उसमें जो तो हम देसी खाद डाली है खड़खड़ी हुई, अब तो उसमें जो हम पानी फांस ना लगाया, उसमें ये यूरिया बखेर का पानी लगा में।
2: सुनिए यूरिया, देखिए ये आपने बड़ा बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपका, और यूरिया को ज़्यादातर किसान पहले बखेर के ही उसमें पानी लगाते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। क्यों है ये गलत? क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो बहुत ही चंचल होती है, मोबाइल होती है, यानी कि पानी के साथ वो जड़ों, जहाँ तक जड़ें उनसे भी नीचे चली जाएगी, जिसको लीचिंग कहते हैं, वो लीच हो जाएगी जड़ों से नीचे, वो पौधे के किसी काम की नहीं रहेगी। सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप पहले पानी लगाइए, और जब आपका पैर टिकने लगे, यानी कि उसमें मिट्टी ना चिपके आपके पैर में, उस समय आप उसमें यूरिया डाल दीजिए। और यूरिया की ये खासियत है, अगर थोड़ी सी भी नमी होगी तो वो सब जगह पूरे रूट जोन में आपके जड़ों के आसपास उसी नमी के सहारे सब जगह पहुँच जाएगा, और आपका जो नाइट्रोजन है यूरिया में वो उसका लॉस नहीं होगा, पूरा का पूरा आपके पौधे को मिलेगा, इससे आपका पैसा वसूल होगा।
1: डॉक्टर सिरोही आप कुछ जोड़ना चाहेंगे?
0: नहीं, जैसे किसान भाई ने सवाल अपना किया था कि मैंने उसकी गुड़ाई कर दी है और वो अपने नाइट्रोजन उर्वरक जो है बिफोर मानसून
1: जी
0: उससे पहले डालना चाहता है, जैसा अभी डॉक्टर तेवतिया ने बताया
1: जी
0: कि किसान हमारे समूह में ज़्यादा ये करते हैं कि यूरिया की जो डोज है वो पानी से पहले देते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो यही कहता है कि पहले सिंचाई करें और जब पैर चुपकते हों उसके बाद उसकी यूरिया की डोज दें। दूसरा, साथ ही साथ में किसान भाई घनश्याम भाई सुन रहे होंगे, आप जरा मुझे ये बताएं कि आपकी किस्म कौन सी है?
1: फोन कट गया है डॉक्टर साहब।
0: अच्छा ठीक,
1: चलो धन्यवाद घनश्याम भाई आपका बहुत बहुत फोन करने के लिए। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो हेलो,
4: नमस्ते सर जी।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
4: मैं आपका मित्र डॉक्टर सितारे, बिहार का वैशाली जिला से।
1: डॉक्टर सितारे बहुत स्वागत कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है?
4: गन्ने में कितने दिन में पानी देना चाहिए? गन्ने में
1: डॉक्टर साहब, गन्ने में सिंचाई कब कब करनी चाहिए?
0: देखिए ऐसा है डॉक्टर सितारे साहब, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार।
0: और आपने सबसे प्रथम जो सिंचाई है गन्ने में, जब बुआई के 30 दिन पर पहली सिंचाई करनी चाहिए, प्रथम सिंचाई आपके 30 दिन पर आपको कर देनी चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आप अंतराल पर मौसम का, वातावरण का माहौल देखेंगे, तो 10-12 दिन में आप दूसरी सिंचाई करते रहेंगे। इस समय जो

0: आपकी फसल है वो कितनी बड़ी खड़ी हुई है, कितनी उम्र की है?
1: वो हो गई 22-25 दिन की।
0: हाँ, तो अब आप 4-5 दिन के अंदर अगर बरसात नहीं होती है तो प्रथम सिंचाई उसकी करें, और सिंचाई करने के बाद में जो नाइट्रोजन की मात्रा है, प्रथम डोज जो है आप उसकी यूरिया की उसमें दें। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी जो आज का जैसा विषय भी है, जो आज गन्ने के रोग और कीट, इस समय जो आपके यहाँ गन्ने की वैरायटी है उसका नाम बता पाएंगे क्या?
1: देहाती वाली है,
0: जी
1: हम लोग पर्व के अवसर पर बेचते हैं उसको, पर्व के अवसर पर।
0: अच्छा, ठीक है। इस समय
2: जी तो डॉक्टर सितारे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि सिंचाई करके जब पैर आपका तो उसमें टिकने लगे, यानी मिट्टी ना चिपके, उसके बाद आपको यूरिया की जो डोज है वो देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो
3: हेलो,
2: हेलो,
3: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
3: पहले तो जी मैं पूरे डॉक्टर साहब सबको टीम को मैं दोनों नमस्कार राम राम करता हूँ।
0: नमस्कार, नमस्कार।
3: और आकाशवाणी के 90 साल होने की भी तो मैं दोनों बधाई दे रहा हूँ। पूरी के 90 साल आकाशवाणी की मुझे बहुत खुशी लग रही है, आपके कारण से बहुत खुशी लगती है।
2: चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। हम इतने दिन सेवा इतने दिन से कर रहे हैं और आप जुड़े हैं हमसे। सवाल बताएं।
3: हम तो जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो है नैनो यूरिया, तो ये किसी दवाई में भी मिल के छिड़क जाएगा या फिर अकेला ही छिड़कता है? जी
2: पहले अपना नाम बता दो और जगह बता दो, कहाँ से फोन
3: मैं
2: कर रहे
3: भूकन शरण ग्राम तरारा अमराह से बोल रहा हूँ।
2: जी।
4: देखिए, ऐसा है, नैनो यूरिया को आप अलग छिड़के तो ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि देखो, केमिकल दवाई जो होती हैं वो बहुत तरह की होती हैं,
3: हाँ,
4: कुछ मिलाई जा सकती हैं, कुछ नहीं मिलाई जा सकती। इसके
3: हाँ तो
4: लिए
3: नहीं
4: आप
3: तो
4: एक,
3: इसलिए
4: हाँ,
3: पूछे थे तो मिला लेते हैं, क्योंकि
4: इसे
3: वो मैं ना था
4: सुन लो सुन लो
3: जी
4: अब हमारी बात सुनो ना आप। अब
3: बताओ।
4: अगर अगर आप उसमें एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट कर लें, अगर उस टेस्ट में पास हो जाता है तो आप मिला सकते हैं। उसमें
3: ठीक
4: ऐसा करिए कि जो नैनो यूरिया थोड़ा सा मिला के पहले पानी में, और
3: हाँ,
4: उसमें वो दवा डाल दीजिए थोड़ी सी।
3: अच्छा
4: अगर वो फट जाता है पानी में, नीचे बैठ जाता है कुछ, वो जो सॉलिड अगर वो बैठ गया तो फिर वो नहीं मिलानी है।
3: अच्छा,
4: अगर उसमें बिल्कुल ऐसा ही रहा, बिल्कुल घुलनशील रहा, तो आप उसे मिला सकते हैं।
2: ये तरीका है करने का, पहचान
4: हाँ,
2: करने का
4: ये
2: कि मिल
4: आप,
2: सकती है या नहीं।
4: हाँ, गांव का तरीका है ये कि अगर उसमें कुछ जमा हो जाए, वो प्रेसिपिटेट हो जाए ठोस, तो फिर नहीं मिलाना, ठीक है?
2: जी
3: अच्छा, भूल जाए तो छिड़कने।
4: हाँ, घुला रहे, अगर उसमें कोई फर्क ना पड़े तो आप छिड़क सकते
3: एक मतलब एक शीशी है, कितने कितने को हो जाती है? पाँच
4: हो। देखो, 500 ml, 500 ml की,
3: 500 ml,
4: हाँ,
3: हाँ 500 ml की है।
4: ये 1 एकड़ के लिए होती है। इसको एक एकड़
3: अच्छा
4: में फसल जितनी बड़ी हो या वो, उतना पानी मिला लें उसमें। जैसे कि एक एकड़ में लगभग 150 से 200 लीटर पानी हो जाता है। 1 एकड़ होता है, आप जानते होंगे एकड़, तो बीघे,
3: हाँ जानते हैं कि करता है ना वो, तो हम
4: हाँ,
3: जानते हैं।
4: तो उसमें एक बोतल छिड़किए आप, और उसमें जो है, जब पत्तियां ज़्यादा हो जाएं, जब छिड़कें उसको, पत्तियां कम हो तो
3: अच्छा
4: उसका असर कम होगा, क्योंकि खाली जमीन होगी तो खाली जमीन पे गिरेगा, नहीं तो उसमें कूड़
3: अच्छा
4: को,
3: अच्छा एक जैसे बड़ी भी हो जाए कोई बार ना छिड़कने लायक, तो पूरा असर करेगा।
4: हाँ, बड़ी में ही छिड़का जाता है, छोटी में तो जब आप जमीन से डालते हो ना, वो बुवाई के समय खाद डालते हो, तो उससे पूर्ति होती है कुछ दिन, जब बाद में उसमें डाल सकते हो, लेकिन तभी डालो जब नाइट्रोजन की कमी दिखाई दे खेत में।
3: अच्छा
2: डॉक्टर सिरोही, आप भी कुछ कहना चाहेंगे?
0: देखिए, ऐसा है किसान भाई, एक बात सुने, जो आपको प्रथम डोज नाइट्रोजन की देनी है उसमें आप यूरिया से दें, और उसके बाद जो है इस तरल पदार्थ का, नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें, तो उससे आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे।
2: चलिए जी, ये ध्यान रखिए, धन्यवाद। सिंह साहब, एक फोन आ गया है, अगला फोन लेते हैं। नहीं है जी फोन, तो डॉक्टर साहब आ गया जी एक फोन, भाई मान नहीं रहे, और उनके लिए है तो उनको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। हेलो हेलो हेलो,
5: हेलो,
2: नमस्कार जी, कौन
5: नमस्ते जी।
2: साहब बोल रहे हैं?
5: सत्यपाल सिंह, मुझे खनगर से जी।
2: सत्यपाल भाई, बताइए क्या सवाल है आपका?
5: गन्ना बोया था मार्च में और साथ में उड़द थे,
2: अच्छा,
5: और अब गन्ना उड़द तो कट गया जी,
2: हाँ,
5: और गन्ना बढ़वा ले रहा, खरपतवार घास ज्यादा हो रहा।
2: सिरोही साहब बताओ। अच्छा,
0: उर्द की फसल, किसान भाई नमस्कार, आप सतपाल जी, आपने उर्द की फसल हटा दी है उसमें से?
5: हाँ निकाल लीजिए।

0: अच्छा, उसके बाद में कुछ कल्चरल ऑपरेशन उसमें जुताई गुड़ाई करी गई थी, नहीं करी गई थी?
1: पहले करी थी जी 3 बार,
0: अच्छा, अभी
1: और
0: किस
1: अब
0: किस प्रकार के खरपतवार उसमें फसल में महसूस कर रहे हैं आप जो खड़े हैं?
1: मेड़ी पत्ती वाला आ गया, चौड़ी पत्ती वाला, दो तरह के हो रहे हैं।
0: अच्छा, तो आप ये दवा आप नोट कर लें, इसके लिए जो है आप नेड़ी और दोनों चौड़ी पत्ती वाले हैं तो उसके लिए आप एक दवा का नाम रख रहे हैं 2,4-D 58% 1 लीटर, और उसमें आप जो है 100 ml मेटीबुजन मिला सकते हैं। हेलो
2: जी
3: आप बता दो, सुन रहे
2: जी
3: हो?
2: सुन,
0: उसको 100 ml मेटीबुजन मिला लें, या अगर मेटीबुजन अवेलेबल ना हो तो उसमें 500 ग्राम एट्राजीन, और दोनों को मिला करके आप जो है इनको प्रति एकड़ आप उसमें स्प्रे कर दें कट नोजिल से, तो आपके इसका जो है खरपतवार से आपका नियंत्रण हो जाएगा।
2: सत्यपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए जी। एक और फोन आ गया। हेलो,
4: हेलो,
2: नमस्कार जी,
4: नमस्कार सर। सर
2: कौन साहब बोल रहे हैं?
4: मैं आलोक कुमार बोल रहा हूँ, अमरोहा यूपी से। सर
2: बताएं आलोक जी, क्या सवाल है?
4: सवाल ये है कि हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में 99% या 90% गन्ने की प्रोडक्शन है
2: जी,
4: और यहाँ एक वैरायटी थी 0238
2: जी,
4: जो रेड रोग आने की वजह से लगभग समाप्त हो गई, उसका विकल्प हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में जानना चाहता हूँ क्या कोई ऐसा विकल्प है जो 0238 की टक्कर दे सके, उसके समक्ष कोई हमें वैरायटी मिल सके।
2: जी सरोज साहब बताइए।
0: किसान भाई को राम राम।
4: राम राम सर, राम राम।
0: और दूसरी बात यह है कि जैसा आपने सवाल किया है कि आपके जिले में और आपके पड़ोसी जिले मुरादाबाद में या बिजनौर में 0238 ने काफी ज्यादा अटैक करके 0238 खत्म हो गई है रेड रॉट की वजह से, और आप उसके विकल्प में हैं, तो किसान भाई एक बात नोट करें, इसके साथ साथ एक तो CO 0118 वेराइटी है, भी ज्यादा क्षेत्रफल में तो 0238 का रिप्लेसमेंट 0118 वेराइटी है, CO 0118 आपने लगाई हुई है। साथ ही साथ दो जो हमारे एक तो लखनऊ संस्थान से हमारी एक वेराइटी रिलीज हुई है CO LK 16202,
4: CO 16202,
0: और एक हमारे साझापुर संस्थान से वैरायटी रिलीज हुई है CO S 18231। ये दो वैरायटी का बीज नई वैरायटियों में आया जा रहा, इसके साथ और वैरायटी हैं अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे जो जनरल में रिलीज हुई हैं, तो अभी इन दो वैरायटियों का विकल्प ढूंढ के 0118 को प्राथमिकता देते हुए इन दोनों वैरायटियों का भी अपने खेतों पर समावेश कराएं।
2: तो आलोक भाई जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, आप इन दोनों किस्मों को उसके जगह आप इसको ले सकते हैं और उतना ही फायदा ये देंगे जितना वो किस्म आपको दे रही थी। डॉक्टर साहब चर्चा आपसे और भी करेंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा ना ब्रेक लाना पड़ेगा, समाचार सुनते हैं।
5: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
6: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर, शीघ्र बुक करें।
7: जो कार्यक्रम है लगातार जारी रहेगा कृषि जगत कार्यक्रम में, जो हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम चल रहा है, तो सुनना ना भूलिएगा।
8: बिल्कुल।
9: अभी आप सुन रहे थे ग्राम संसार कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जारी रहेगा, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातीले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के लिए 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने कहा कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के 1 लाख से अधिक प्रयास हुए। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और हरिहरन अमसा करुणन तथा MR अर्जुन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। आज का विषय है गन्ने फसल में कीट और रोग नियंत्रण। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहैलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉलीहैलाइट।
1: हमारा आज का विषय है गन्ना फसल में कीट और रोग नियंत्रण। तो इस विषय से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो आप विशेषज्ञ से सीधा फोन के जरिए जुड़ सकते हैं और गन्ना फसल से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
2: और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर DS सिरोही, जो कि गन्ना वैज्ञानिक जिला मुजफ्फरनगर से हैं। और जो हमारे दूसरे भी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड नई दिल्ली से। तो अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं स्टूडियो की तरफ। लेकिन उसके पहले आपको फ़ोन नंबर एक बार बता दें, 2342108 2। दूसरा नंबर है 2342108 3। और जो STD कोड है वो लगाएं 011। तो चलिए, इस समय नरेश पारासर जी हमारे साथी वहाँ पर मौजूद हैं, संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम का। और स्टूडियो की तरफ मुड़ते हैं, आपने प्रश्नों की बछार कीजिए।
3: डॉक्टर सिरोही जी, एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
4: जी, धन्यवाद जी।
3: डॉक्टर साहब, एक फोन ही आ गया, पहले फोन से ही शुरू करते हैं।
4: जी जी,
3: हेलो।
5: हाँ, नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
5: मैं राम कुमार नाम का किसान, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश।
3: बताए राम कुमार जी, क्या सवाल है?
5: हमारा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ने अभी कुछ वैरायटी बताई थी 18231 16202।
3: जी,
5: 18231 ठीक है जी, हमने वो रखी। थोड़ा उन्होंने जनरल का जिक्र करा था कि आप अगले कार्यक्रम में हम जनरल की वैरायटी का जिक्र करेंगे।
4: जी जी,
5: तो एक वैरायटी हमने जनरल की वो भी रखी है जी।
4: बताया कौन सी वैरायटी वो रखी है आपने?
5: 15233।
4: जी जी,
5: अभी इतनी बढ़िया शरीर डॉक्टर साहब, आपको बहुत ही अच्छी शरीर, हमने दोबारा भी बो दी वो।
4: जी जी,
5: तो कोई एक आधी और तो हमें जनरल की बता दो, हमें जनरल की और बढ़िया लगी।
4: देखिए, ऐसा है, अभी जो जैसा आपने सवाल किया, मैंने बताया था, आपने सुना भी होगा, CO0118 वैरायटी का इस साल आप देखेंगे तो बड़ा फेवरेबल इन्वायरमेंट है। फरवरी महीने में से ही जो तापक्रम था ना, और आपका ध्यान आकर्षित रहता 0238 पे, ज्यादा किसान ध्यान देता 0238 पे,
5: सारा उसी पे ही था।
4: तो अभी आपका ध्यान आकर्षण जो है 0118, इस साल आप देखेंगे, अगर बागपत जिले की बात करें या हम मुजफ्फरनगर जिले की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समझ जिलों की हम बात करें, तो 118 वेराइटी की जो टिल्डिंग है, उसकी फूट है, चाहे वो हमारी मूढ़ा फसल है, रेटून क्रॉप है, चाहे हमारा बोर्ड है, तो दोनों फसलों में आपको इस साल रमनक दिखाई देगी। उसमें किसानों ने अपनी एग्रोनॉमी भी चेंज करी है और किसानों ने आपका अपना ध्यान आकर्षण भी किया है। साथ ही जो आपका सवाल है उसके साथ दो वैरायटी आप नोट कर लें, दो वैरायटी अभी ट्रायल हैं, रिलीज हो गई हैं करनाल संस्थान से। वैरायटी का नाम है, एक वैरायटी का नाम है CO17018।
5: अच्छा जी,
4: एक वैरायटी है CO18022।
5: ठीक है,
4: तो अभी कम मात्रा में इनका बीज है, आप संस्थान से संपर्क करके वहाँ से बीज प्राप्त कर सकते हैं।
5: एक अर्ली की हमने 82 72 वो रखी है जी।
4: देखिए, ऐसा है, ये जो वैरायटी है ना, इनके वैरायटी के ट्रायल चलते रहते हैं। आप जो चीनी मिल जो आपको रिकमेंड करें ना, क्षेत्र की जो भी चीनी मिल है, उन चीनी मिलों के संरक्षण में आप अपनी वैरायटी का चयन करें। वैरायटी 3000 बाजार में घूम रही है, लेकिन हाँ, लेकिन हमें बीमारी, कीट और उसकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, उसकी इल्ड क्या आएगी, उसमें बीमारियों का अटैक ज्यादा तो नहीं है, इनका चयन करके आप अपने चीनी मिल से संपर्क करके, गन्ना विभाग से संपर्क साध करके, उन वैरायटियों का चयन करके अपने खेतों में बोएं। धन्यवाद
3: राम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। और डॉक्टर साहब, जैसे मेरा सवाल तो हो ही ना रहा, फोन अच्छा है, आ रहे हैं फोन, किसान भाई रुचि दिखा रहे हैं, उनकी समस्याएं हैं।
4: जी जी जी,
3: तो जो कीट है अनुकूल वातावरण में, तो एक तो कौन कौन से कीट हैं जो इस समय परेशान करेंगे?
4: देखिए, इस समय मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, जैसे कि जो हमारी एक सबसे बड़ा जो गन्ने में कीट तो कई प्रकार के लगते हैं, लेकिन अभी अमूनतः जो हमारे एक तरह से गन्ने में जो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला कीट है, उसको हम टॉप बोरर या चोटी विधेयक के नाम से जानते हैं
3: जी,
4: जो गन्ने में ज्यादा

0: प्रभाव डालता है पैदावार पे।
1: जी
0: और इस बस खुशी की बात यह है कि किसान भाइयों ने भी उसको अवेयर होकर के ध्यान दिया है, और जो किसान भाई इस चीज में ध्यान नहीं दे पाए हैं, जो इसकी प्रथम इसकी असल में 5 से 6 पीढ़ियां होती हैं,
1: अच्छा,
0: जो जो प्रथम पीढ़ी है उसका चक्र खत्म हो गया, दूसरी पीढ़ी का चल रहा है
1: जी।
0: और उस दूसरी पीढ़ी में किसान भाइयों ने जो नुकसान ना हुआ, नुकसान होने से बचाने के लिए किसान भाइयों ने अपनी दवा का इस्तेमाल किया, CTPR का इस्तेमाल कर दिया, स्प्रे कर लिए, तो अब इसकी जो तीसरी पीढ़ी है वो जाकर के जून के तीसरे सप्ताह में वो होगी। तो अभी जिन किसान भाइयों ने CTPR या कोर, जैसे मान लिया आपका पौधा गन्ना है उसमें कोरोजन की ड्रेंचिंग कर दें 150 ml दवा, 400 लीटर पानी, और जो ग्रेनुल्स हमारा CTPR फटेरा अन्य नामों से भी बाजार में आता है उसको 7.5 किलोग्राम प्रति एकड़ कैसे लगा करके उससे सिंचाई कर दें, तो इस रोग से बिल्कुल उसका इस कीट से हो जाएगा। फिलहाल अभी वातावरण में इस कीट का ज्यादा प्रकोप है नहीं,
1: है नहीं है। तो आगे भी चर्चा इस पर जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब एक फोन आ गया है। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं डीपी सिंह फ्रॉम बागपत।
1: सिंह साहब बताएं क्या सवाल है?
2: दो सवाल जी
0: जी।
1: सिंह साहब आवाज, हाँ जी हाँ बोलिए,
2: मेरी आवाज आ रही है?
1: अब आ रही है।
0: नमस्कार नमस्कार सिंह साहब।
2: नमस्कार, मैं अपना परिचय दे दिया, मेरा नाम डीपी सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत का रहने वाला हूँ।
0: जी जी जी,
2: मैं एक इनोवेटिव फार्मर हूँ।
0: राइट सर,
2: तो दवाई कौन सी देनी है? लगभग लगभग मेरा सवाल पहले वाले सवाल से ही मिलता जुलता है।
0: जी जी,
2: अर्ली सूट बोरर के लिए, उसकी रोकथाम के लिए हमें इंसेक्टिसाइड देने की सबसे इफेक्टिव विधि, सबसे असरदार तरीका क्या होना चाहिए जो इमीडिएटली उसको रोक दे?
0: बहुत अच्छा सवाल आपने किया सिंह साहब,
2: अगला भी अच्छा ही आएगा।
0: देखिए ऐसा है, सबसे पहले जब ये शुष्क वातावरण में अर्ली सूट बोरर आता है तो उसमें हमारा एक जो है बिना दवाई का बिना रासायनिक उपचार करने के लिए हमें यह है कि हमें अपने खेत की सिंचाई भरपूर मात्रा में करके उसको छोड़ देना चाहिए। तो जब अगर आप मैंड मिलान करके उसको बढ़िया तरह से उसकी सिंचाई कर देंगे तो उससे कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा जो
2: फिर भी अगर थोड़ा असर,
0: हाँ असर रहे तो उसके लिए आप दवा नोट कर लें। इसमें
2: दवा नहीं पूछ रहा मैं, मेथोडोलॉजी
1: जी
2: पूछ रहा,
1: पूछ
2: दवाई
1: तो
2: देने की मेथोडोलॉजी
1: जिसपे असर ज्यादा हो।
0: नहीं नहीं,
2: वो मेथोडोलॉजी बताए, वो तरीका बताए।
0: देखिए तो
2: इमीडिएटली इफेक्ट
0: तो एक तो ये है कि जैसे मान लिया आप अगर मान लिया 1% 2% खेत में आपके इंसेक्ट का अटैक आपको नजर आ रहा है,
2: हाँ बिल्कुल,
0: तो उसको आप रिमूव करा दें,
2: ठीक है,
0: जिससे आगे का संक्रमण जो है वहाँ पर रुक जाए,
2: ठीक
0: और
2: है।
0: एक सिंचाई कर दें,
2: ठीक है,
0: एक तो
2: यहाँ तक मैं सहमत हूँ। एक सलाह मशवरा करना है
0: जी जी,
2: अगर हम मान लिया जो हमारे कलम्प हैं, मान लिया पूरे खेत में 20 कलम्प के ऊपर ये मुझे असर दिखाई दे रहा है,
0: तो
2: अगर मैं उस जो बना के किसी हैक से होल बना करके वहाँ दवाई इंजेक्ट कर दूँ रूट जोन में ही,
0: हाँ
2: वहाँ जैसे मेरे पास एक स्प्रे बोतल है उसमें मेरे पास इंसेक्टिसाइड है और एक हाथ में मेरे एक हैक है, हैक का मतलब है जो रूट जोन में होल बनाएगा पौधे की बराबर में
0: जी,
2: और वही दवाई को वही मार दूं रूट जोन में ही,
0: बिल्कुल कंट्रोल होगा। दूसरी एक बात और भी है।
2: नहीं, ये मेथोडोलॉजी कैसी रहेगी?
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
2: एक पौधे के साथ 3-4 होल बनाए और एक हाथ में स्प्रे बोतल है बस वही इंजेक्ट कर दिया,
0: बिल्कुल इंजेक्ट कर सकते हैं उसे, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी एक अच्छा। साथ एक और है सिंह साहब, अगर आप देखेंगे तो मान लिया अगर हमारी संख्या कम है तो उस पौधे को नीचे से हम रूट से भी उसको काट देंगे तो उसमें हमारी फुटेर आ जाएगी,
2: हाँ आ जाएगी, हाँ वो तो एक मैकेनाइज तरीका है ही,
0: जी, जी,
2: है ना, उसे काटने का वो तो एक कॉमन प्रैक्टिस है ही, लेकिन स्टार्टिंग पे अगर मैं एक जागरूक किसान हूँ, अवेयर किसान हूँ, तो मैं ऐसे भी
1: जी जी। सिंह साहब एक दूसरा सवाल आप कह रहे थे?
2: दूसरा सवाल ये है मेरा टॉप बोरर से रिलेटेड
0: जी,
2: मैं किसान की भाषा में बोलूंगा, जिसे गन्ने की गोब कहते हैं, इंग्लिश में कैनोपी बोलते हैं,
0: हाँ।
2: कैनोपी से बहुत क्लियरिटी नहीं आती, मैं गोब कह देता हूँ,
0: गोब जी,
2: का
0: जी।
2: मतलब है कि वो भाग जहाँ से दवाई पौधे के तने में जा सकती है
0: जी जी,
2: अगर अर्ली टॉप बोरर हो या टॉप बोरर को रोकने के लिए अगर वहां भी दवाई इंजेक्ट कर दी जाए, जो हमारी सफेद गिदार है जो तने के ऊपरी भाग पे ही बैठी है, अगर वही दवाई को इंजेक्ट कर दूं मैं गोब में, पत्ती पकड़ के और गोब का मुंह खोले और वही दवाई इंजेक्ट कर दूं, वह सुंडी कितनी जल्दी मर जाएगी।
0: देखिए

0: मेथोडोलॉजी कैसी रहेगी?
1: ऐसा ना, मेथोडोलॉजी तो कोई दिक्कत नहीं है, किसान तो अपना स्प्रे भी कर रहे हैं, लेकिन
0: स्प्रे इतना जल्दी नहीं पहुंचेगा गोप में। मैं सीधा ही गोप में दे रहा, नस में इंजेक्शन लगा रहा, टेबलेट नहीं दे रहा मैं।
1: नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो रिसर्च चल रही है ना, जो CTPR है सिंह साहब, अभी किसान इतना सक्षम है उसमें लगाने में, जो उसका मेथड है और जो उसको इजी गोइंग प्रोग्राम है उसमें
0: CTPR,
1: सुनो मेरी बात, ऐसा अगर आप व्यवसायिक रूप से इस काम को करेंगे ना, तो उसमें CTPR, मान लिया आपका प्लांट केन है, रैटून की जो क्रॉप है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है किसान को, जो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो कोई गलत नहीं है, उस पर रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, लेकिन व्यावहारिक वो देखना ये पड़ेगा कि कितना व्यावहारिक है सिंह साहब।
0: वाइबल है ये, तो वाइबल
1: है। हाँ, तो वाइबल है तो कर सकते हैं।
0: स्प्रे बोतल है, एक हाथ से पौधे की छोटी पकड़ी और गोप में ही मार दिया।
1: मेरी बात एक मेरे सवाल सुन लीजिए इसका। हाँ? इसके बहुत सारे मेथड है टॉप बोर को कंट्रोल करने के लिए सिंह साहब।
0: यू कैसा है जो मैंने
1: ये भी आपका बढ़िया है, उसका एक पार्ट है। फेरोमोन ट्रैप हम लगाते हैं, उसमें हमारी तितली पड़ती है, सुन लीजिए। और अगर हम सूट कटिंग अगर जमीन से काट के दे देते हैं, उससे हमारे पे रिजल्ट आते हैं। तो मैकेनिकल और कहने में रासायनिक, जहाँ जैसा वातावरण है, जो आपका भी जो पार्ट है वो भी अच्छा है, कोई उसमें हर्ज नहीं है।
0: इनोवेटिव प्रैक्टिस ऐसा करता हूँ, कोई मैं करता हूँ ऐसे।
1: नहीं, ठीक बात,
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब
1: कर सकते हैं।
0: एक सवाल मेरा तेवतिया जी से है।
1: जी
2: तेवतिया जी, अभी दो मिनट के लिए बाहर हैं जी, फिर आप बताओ सवाल, बताओ
1: सवाल, बताओ
0: मेरा सवाल। बोरा मेरा वैसे बहुत प्रैक्टिकल और कीमती है सवाल, ये है मेरा
2: जी
0: कि गन्ने में हमने अर्थिंग अप कर दी, एक एक फीट मिट्टी चढ़ा दी गन्ने को गिरने से बचाने के लिए,
1: जी जी,
0: अच्छी टिलरिंग लेने के लिए। अब गन्ने की हार्वेस्टिंग का समय आया, कटाई का,
1: राइट।
0: जब हम गन्ने को काटते हैं तो मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है कि गन्ने का कितने इंच भाग मिट्टी में रह जाता है लगभग?
1: चलो आप डॉक्टर तेवतिया से पूछ रहे थे। हाँ, सवाल उसे करना,
2: मैं आने दो उनको।
0: ये सवाल टलकाने का नहीं है, तो डॉक्टर तेवतिया को बुला लो, मुझे इसका उत्तर अभी चाहिए।
1: देखिए ऐसा है, ऐसा
0: आवाज लगा लो या रफली सा आइडिया दे,
1: ऐसा रफली आइडिया ऐसा है, मेरी बात सुनिए। जैसा आपका सवाल है, अब आप जो है कटाई का मेथड जो है, जैसे मान लिया आपने अर्थिंग कर दी गन्ने में, आपका सवाल दोबारा थोड़ा दोहराए, आप गन्ने की हार्वेस्टिंग के नीचे का पार्ट पूछना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं?
2: नीचे का पार्ट ही पूछ रहे थे जी, कितना हिस्सा बच जाएगा।
1: देखिए अगर आप इसके जो मैकेनिकल जो वो है आपकी बलकटी काटने वाली, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आपका हथियार बलकटी जिसे हम बोल देते हैं काटने वाला
2: जी,
1: वो जमीन से काट के चलता है, तो उसमें तो बहुत 3-4 इंच नीचे का पार्ट रह जाता है। लेकिन अगर सेंट्रल यूपी में इधर जाएंगे तो वो पार्ट उसका काटने वाला जो है वो तिरछा नहीं होता, उसमें पार्ट ऊपर काफी छोड़ देते हैं, ऊंची कटाई करते हैं सिंह साहब।
2: तो धन्यवाद डीपी सिंह जी आपका फोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, एक हम कीट की बात कर रहे थे और सिंह साहब भी कीट पे ही बात कर रहे थे, तो आपने बताया
1: जी
2: के जो है एक कीट तो ये बताया आपने, और कौन कौन से हैं जो प्रभावित करते हैं?
1: देखिए अभी एक कीट जो है, जो प्रैक्टिकली जैसे मौसम शुष्क होता है तो एक कीट होता है हमारा, उसको कहते हैं ब्लैक बग, काला चिट्टा
2: जी।
1: वो क्या होता है, गन्ने की पेड़ी की फसल में उसके लक्षण आप देखेंगे तो गन्ना के अंदर ऊपर से गोभ में घुस जाता है वो, और गन्ना जो है पीला पीला पूरा खेत में, पीले पत्तियां जो है उसकी पीली हो जाती हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए उसके दो तरीके हैं, एक तो नेचुरल तरीका है कि अगर मान लिया हैवी रेन हो जाती है तो वो गन्ने का कीट स्वतः ही खत्म हो जाता है
2: जी।
1: अगर बारिश नहीं होती है तो उसके लिए 2-3 तरह की दवा है, क्लोरोपाइरोफॉस 20% EC, आप 500 ml दवा और 150 से 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ उसका स्प्रे कर देते हैं, उससे खत्म हो जाता है
2: जी।
1: इसके अलावा वो दवा उपलब्ध ना हो तो प्रोफेनोपॉस साइपरमेथ्रिन, वो भी 400 से 500 ml दवा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे वो खत्म हो जाता है।
2: डॉक्टर साहब आपने एक पहचान बताई कि पीड़े पीड़े हो जाते हैं
1: जी जी जी,
2: तो पीड़े पीड़े तो मेरे ख्याल से बाकी रोग वगैरह उसकी
1: नहीं। देखिए ऐसा है, वो रस चूसता है कीट, सकिंग पेस्ट है, तो जब रस चूसता है तो उसमें लक्षण अगर दिखाते उसकी गोब में थोड़ा सा देख लें, वो नजर आ जाता है,
2: नजर आ जाता है। तो जैसे अगर लक्षण दिखाई दे तो गोब में देख लें, अगर कीट है तो फिर वो कीट वाली दवा
1: उसका
2: क्लोरोपाइरीफॉस आपने बताई।
1: हाँ जी
2: जी जी जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है रोग भी गन्ने की फसल में आते हैं, तो कौन कौन से रोग इस समय?
1: देखिए सबसे बड़ा जैसे अभी अमरोहा से और मुरादाबाद की साइड से फोन आया था
2: जी, जी।
1: एक किसान भाई का, तो अभी जो हमारे पास एक बहुत सारे
2: एक फोन आ गया डॉक्टर साहब, पहले फोन लेते हैं फिर इस पर चर्चा करेंगे।

0: हेलो
1: जी डॉक्टर सिरोही
0: जी
1: जी,
0: सर।
1: फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़े से पत्ते खोल देता हूँ अपने।
0: खोलो जी खोलो
1: मैं
0: जी जी जी
1: सभी इनोवेशन, सभी नवाचार किए हैं।
0: जी जी
1: जी
0: बताएं
1: जी
0: बताएं।
1: जो भी आप मुंह से निकालेंगे वो सब मशीनों का विकास, इनोवेशन, नवाचार मैंने कर दिया है।
0: जी जी
1: गन्ने
0: जी
1: की हार्वेस्टिंग हो, गन्ने की लोडिंग हो, गन्ने की बंधाई हो, सब मशीनें मैंने 35 नवाचार गन्ने की खेती में हैं।
0: जी
1: मतलब इंटर कल्चरल ऑपरेशन और फील्ड प्रैक्टिस के लिए जो मैकेनाइजेशन चाहिए, आई हैव इनोवेटेड ईच एंड एवरीथिंग,
0: जी गुड
1: है
0: यस बहुत बढ़िया। हाँ
1: ना
0: जी हाँ जी हाँ
1: आप, है ना, वो सब मैंने कर दिया है। और आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया, ये भी बता देता हूँ कि भारत में अकेला व्यक्ति हूँ।
0: जी जी
1: और मशीनें भी ऐसी हैं कि जिनके चलाने का कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है,
0: जी
1: जिसमें कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है।
0: बहुत बढ़िया।
1: मान लिया मेरी मशीन 1 घंटे में 50 क्विंटल गन्ना छील के दे दे, गन्ना भी काटे, गोड़ा भी काटे, पत्ती भी उतारे, और जिसमें कोई डीजल और पेट्रोल का खर्चा ना हो, तो कैसी।
0: सिंह साहब बहुत ही बहुत बढ़िया, बढ़िया
1: बहुत
0: लगा।
1: बढ़िया
0: किसानों को अवगत
1: रहेगा,
0: कराएंगे
1: किसानों
0: इसके
1: से
0: बारे
1: अवगत
0: में।
1: कर ही
0: तो
1: रहे हैं।
0: इनका
1: इन चीजों का मैं आपकी नॉलेज के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि आप गन्ने की बेल्ट में बैठे हैं, चारों तरफ 100% गन्ने का किसान है।
0: जी।
1: और गन्ने में जो बर्निंग इशू है किसानों के सामने इस समय, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको मैंने एड्रेस किया है।
0: नहीं बहुत बहुत धन्यवाद
1: बहुत
0: आपका।
1: ठीक है,
0: जी जी जी जी
1: जो कहीं नहीं हुए सभी जगह सबको मैंने एड्रेस किया है।
0: बहुत बहुत
1: सिंह साहब,
0: धन्यवाद
1: ये
0: आपका
1: सारी
0: सर।
1: बात
0: और
1: आपकी जो है सीधे किसानों तक पहुंच रही है, और हम चाहते हैं कि किसान ज्यादा से ज्यादा आपसे
0: इसका
1: जुड़े, इसका लाभ
0: हाँ
1: उठाएं, और इस तरह के किसानों की जरूरत है देश को,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जो इस तरह के नवाचार
0: हाँ
1: को,
0: इनोवेटिव पर
1: यस,
0: काम
1: इनोवेटिव
0: कर रहे हैं
1: किसानों
0: सिंह
1: की
0: साहब।
1: जरूरत है। तो सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए, क्योंकि एक और हमारे किसान लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। जी तो फोन शायद कट गया डॉक्टर साहब, तो हम बात कर रहे थे रोगों की।
0: हाँ रोगों में जैसा पराशर जी आपने सवाल किया और बहुत अच्छा सवाल है, इसमें खास तौर से एक जो सबसे खतरनाक रोग गन्ने में आता है रेड रॉट
1: जी
0: फंगल डिजीज है, फंगस से आता है।
1: जी
0: और जो हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में 2-3 स्टेटों में हमारी प्रचलित वैरायटी CO0238 थी,
1: जी
0: इस वैरायटी में से इसकी शुरुआत
1: हुई थी।
0: बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से हुई,
1: जी
0: वाटर
1: जी
0: लॉगिंग एरिया से,
1: जी
0: और
1: जी
0: धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जा रहा है। अभी पश्चिम के कुछ जिले बचे हैं जहाँ पर इसका संक्रमण कम है। तो इसके लिए सबसे मैं किसान भाइयों को अवगत कराऊंगा कि आज के समय में अपने इस रेड रोट को दूसरी भी किसी किस्मों में ना आए, सबसे पहले अपने बीज का उपचार करें,
1: जी
0: और बीज के उपचार के साथ साथ जो है वो अपना भूमि का भी उपचार करें।
1: जी
0: तो बीज जैसे आप थायोपोडिन मिथाइल होती है 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, 100 100 ग्राम दवा, 100 से 150 ग्राम दवा, और 100 लीटर पानी में आप
1: पानी
0: अपने गन्ने के सेटों को डुबाएं
1: जी
0: और उससे उपचारित करके उसे बोएं। साथ ही साथ जो हमारा ट्राइकोडर्मा होता है उसकी दो तरह का आता है वो, एक आता है आपका पाउडर फॉर्म में और एक आता है लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में वो 1 एकड़ में 2 लीटर आपका लगेगा और वो 4 से 5 kg, उसको गोबर की खाद में 1 हफ्ता पहले बुआई से पहले 2 क्विंटल या 1.5 क्विंटल गोबर की खाद में सड़ा के रख दें 1 हफ्ते के लिए, पानी छिड़क दें छाया में,
1: जी
0: और खेत की अंतिम जुताई के टाइम अपने
1: छिड़क
0: खेत
1: देते
0: में
1: हैं, तो
0: उसको
1: मिला
0: छिड़क
1: दें
0: दें,
1: उसको। जो
0: तो उसके उपचार करने से इस रोग में काफी सफलता मिलती है।
1: एक फोन आ गया डॉक्टर साहब। हेलो
0: जी
1: हेलो,
0: हेलो
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, नरेश जी ठीक है? मैं
1: बहुत बढ़िया जी, कौन बोल रहे हैं?
2: ठाकुर अवल सिंह आर्य शामली से बोल रहा जी।
1: जी ठाकुर साहब बताएं क्या सवाल है।
2: हमारे डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। हाँ
0: नमस्कार जी। नमस्कार सिंह साहब,
2: जी,
0: कैसे हैं
2: मेरा
0: साहब
2: सवाल ये। हाँ
0: जी?
2: जी मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक है?
0: हाँ बहुत
2: हाँ
0: बढ़िया साहब, बताएं सर।
2: जी, मेरा सवाल ये है, अभी वो उसमें हो तो गई लेट वो बात, हमने जो गन्ना बोया था
0: जी
2: उसमें पहले से जो डॉक्टर लोग बताते आए थे कि उसमें दो तरीके थे खाद डालने के।
0: हाँ
2: एक तो ये था कि उसको हम बुआई के समय गन्ना बिजाई से पहले डाल दें, लेकिन हमने वो डाल दिया जब हमने कूड़ बढ़ाए और उनमें कांछी डाल ली, उस पर डाल दिया तो
0: जी
2: उसके अंदर जमाव कम हुआ।
0: बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया, बहुत मैं इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा, आप अपना और सवाल आगे करें।
2: जी मेरा दूसरा ये है कि हम लोग जो गन्ने

मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में, इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ किसान भाइयों।

0: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
1: आप सुन रहे थे हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय था गन्ना फसल में कीट और रोग नियंत्रण।
2: और आज के हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर DS सिरोही और डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया। और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। और सबसे पहले भी बता दें कि हमारे कार्यक्रम के जो प्रस्तुतकर्ता हैं वो है तुषार पारासर और जो हमारे कार्यक्रम संयोजक हैं शिव नंदन लाल। तो इसी के साथ आज कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी सुनने वाले हमारे किसान भाइयों बहनों को हमारा राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

हाल ये गज़ल जा रही है दूर तलक, जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं इस वक्त ये कार्यक्रम। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।

मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। एक खूबसूरत सी गज़ल के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, लेकिन आपको जाना कहीं नहीं है, जुड़े रहना हमारे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवाओं की खरीद से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी स्थित परिवहन विभाग के विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण कर बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया 6 मई से राजधानी में संचालित मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट के माध्यम से अब तक 4 लाख से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली के सेवाओं की खरीद से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अन्य कार्य कार्यालयों के अधिकारियों की सहायता ले सकती हैं। समिति को सचिवालय सहायता क्षमता निर्माण आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी। सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं।
1: सीबीएसई ने कहा है कि विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के आधार पर प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाया गया है। साथ ही सत्र की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है ताकि विद्यार्थियों के लिए प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और सुगम हो सके। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के लिए 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने बताया कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। सीबीएसई ने घोषणा की है कि 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई प्रति में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का पोर्टल शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। विद्यार्थियों को अपने आधार नंबर का उपयोग करके सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। बोर्ड ने कहा कि शुल्क भुगतान सहित पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से संपन्न की जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन का शुल्क प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए है, जबकि उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का शुल्क प्रति प्रश्न 25 रुपए होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। कल भौतिकी व्याख्याता मनीषा संजय हवलदार, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे और भौतिकी के शिक्षक तेजस हर्षद कुमार शाह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। सीबीआई ने अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले महीने नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोपों के बीच एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री शोध पीठ योजना 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रमुख राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों से भारतीय मूल के प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और पेशेवरों को देश भर के प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों की ओर आकर्षित करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बुराड़ी स्थित परिवहन विभाग के विभिन्न केंद्रों का व्यापक निरीक्षण कर नागरिक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और सेवा गुणवत्ता का जायजा लिया। इस दौरान श्रीमती रेखा गुप्ता ने निर्माणाधीन स्वचालित परीक्षण स्टेशन, जिला परिवहन कार्यालय, वाहन निरीक्षण इकाई और वाहन प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया।
2: मुख्यमंत्री ने सबसे पहले निर्माणाधीन स्वचालित परीक्षण स्टेशन परियोजना

0: का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना के डिजाइन, क्षमता, जल निकासी व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। वहीं डीटीओ कार्यालय के निरीक्षण के दौरान श्रीमती गुप्ता ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से भवन के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य न किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त क्षमता वाला आधुनिक प्रतीक्षालय विकसित किया जाए जहां समुचित सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने परिवहन क्षेत्र में व्यापक सुधारों के लिए दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि पिछले महीने की 6 तारीख से राजधानी में संचालित मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट के माध्यम से अब तक 4 लाख से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई गई है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि इस दौरान 1 लाख से अधिक लीटर पेयजल वितरित किया गया, साथ ही 2 लाख से अधिक ORS पैकेट, 67 से अधिक गमछे और 49 से अधिक कैप लोगों को उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों को तेज धूप से बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन और प्रमुख बाजारों में अस्थायी शेड स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मध्य जिले में इन शेड के माध्यम से अब तक 5000 से अधिक लोगों को लाभ मिला है। पश्चिम जिले में 920 लोगों को लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे हीट वेव से बचाव संबंधी सभी सावधानियों का पालन करें। दिल्ली नगर निगम ने आज ड्रोन आधारित भूस्थानिक सर्वेक्षण और डिजिटल ट्विन पहल के पायलट प्रोजेक्ट के लिए 4 एजेंसियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निगम ने बताया कि इन पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत ड्रोन आधारित हवाई सर्वेक्षण, लिडार मैपिंग, 3D सिटी मॉडलिंग और आधुनिक डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पहल से निगम को संपत्ति कर प्रशासन को मजबूत करने, शहरी नियोजन को बेहतर बनाने और निगम प्रशासन के लिए एक मजबूत भूस्थानिक डेटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज सिटी SP जोन के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर जल भराव की रोकथाम और चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान श्री खिरवार ने किशनगंज स्थित रेलवे अंडरब्रिज का दौरा कर जल भराव की संभावित समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एहतियातन पंपों की पर्याप्त व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाए और मानसून प्रारंभ होने से पूर्व उन्हें परिचालन योग्य बनाया जाए। इससे वर्षा के दौरान जल निकासी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी के जल भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए जल वितरण व्यवस्था में व्यापक सुधारों की शुरुआत की है। राजधानी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि ये सुधार जल के समान वितरण, जल हानि में कमी, पुरानी जल अवसंरचना के आधुनिकीकरण और शोधित जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। श्री सिंह ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व, जल मांग, उपलब्ध आपूर्ति और मौजूदा अवसंरचना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा, जिससे किसी भी क्षेत्र को पानी की कमी का सामना न करना पड़े और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। श्री सिंह ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की 30 वर्ष से अधिक पुरानी पाइपलाइन को बदलने और पूरे वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
2: ये जो पुरानी लाइनें होती हैं, इनमें लीकेज बहुत होती है। जितना पानी हम अपने WTP से छोड़ते हैं लोगों के लिए, वो पुरानी लाइनें होने की वजह से लीकेज में पानी खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। उन सारी लाइनों को चेंज करने के लिए हमारी योजना बन चुकी है, बहुत सारे हमारे टेंडर हो चुके हैं और बहुत सारे होने वाले हैं।
1: श्री सिंह ने कहा कि सरकार दिल्ली सब ब्रांच नहर को खुली नहर प्रणाली से बंद पाइपलाइन आधारित प्रणाली में बदलने की संभावना पर भी काम कर रही है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाओ, ईंधन बचाओ संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण DTC की देवी इलेक्ट्रिक बस से किया। श्री सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान नागरिकों ने सड़क, जलापूर्ति, जल निकासी, स्वच्छता और अन्य विकास कार्यों से संबंधित समस्याएं और सुझाव रखे। श्री सिंह ने सभी समस्याओं का संज्ञान ते हुए लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
3: सारे अधिकारी हमारे साथ ही हैं, सारे कार्यों को

0: और कोई भी पैसे की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, खूब हमको पैसा मिल रहा है। हमारे अधिकारी एस्टीमेट बना रहे हैं, कामों को जितना जल्दी हो सके तेजी से करने की कोशिश।
1: दिल्ली कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंदर इंदराज सिंह ने आज बवाना क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र की आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र में सड़क स्वच्छता, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, यातायात प्रबंधन तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी क्षेत्र स्थित प्रिंटर अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी में एरोबिन का लोकार्पण किया। श्री वाही ने बताया कि एरोबिन की सहायता से एक बिन में 10 किलो गीले कूड़े को बायोकल्चर की सहायता से कंपोस्ट खाद में बदल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण और निस्तारण करने में सहायता मिलेगी। श्री वाही ने हाउसिंग सोसाइटी से अपने प्रांगण में एरोबिन स्थापित करने की मुहिम से जुड़ने का अनुरोध किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसी श्रेणियों में उत्कृष्टता प्रदर्शित की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि नामांकन केवल awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समारोह के दौरान 34 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत और 8 पंचायतों को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे। विश्व मौसम संगठन ने अल नीनो के बनने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष जून और अगस्त के बीच अल नीनो के प्रभाव की 80% संभावना है और ये नवंबर तक जारी रह सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इसका प्रभाव और भी गंभीर होगा। दिल्ली में आज के सुबह के समय हल्की धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्त सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवाओं की खरीद से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी स्थित परिवहन विभाग के विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण कर बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रसारण है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: आह बेलिसिमो,
2: stop.

आज जो कुड़ी मतलब आपकी दोस्त जो आज आई है आपके साथ इस खूबसूरत से सफर में, वो है ज्योति शर्मा। और आप सभी का करती है तहे दिल से स्वागत और खूब सारे प्यारे नगमे आप पर लेकर आई है। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए।

देना चाहते हैं, और उसमें अगर गीत अच्छे अच्छे प्ले होना तो मज़ा आ जाता है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो जैसे कहते हैं ना, आरामदायक संगीत सुनना पसंद करते हैं, और कुछ कहते हैं कि हमारे लिए संगीत होना चाहिए, गीत होना चाहिए, कोई भी हो, और अगर वो कहीं अपनी पसंद का गीत निकल आए तो फिर वाह भाई वाह, है ना। चलिए, मुझे लगता है कि जो गीत मैं आपके लेकर आई हूँ उसमें आपकी पसंद का भी कोई गीत निकल आए और आप कहें वाह भाई वाह। फिलहाल एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत है, और मैं आपको कहूंगी कि हाँ, अपने शरीर अपने मन को थोड़ा विराम दीजिए, क्योंकि अब जो है वो समय आ रहा है कि आप रात्रि की तरफ बढ़ रहे हैं और नींद के आगोश में जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो कहते हैं ना, मन पे या दिमाग पे जो आपने एक बोझ डाला हुआ है, जो दिन भर की थकान है, उसे उतारना है, तो हमारे साथ आपको यूं ही बने रहना है और ये खूबसूरत से गीत जो है वो सुनते रहना है।

कमाल का गीत और सुपर हिट गीत। और बात करें तो इसमें ना डांस करने का भी बहुत मन करता है। मुझे लगता है किसी ने तो डांस ज़रूर किया होगा। जब सुन रहे होंगे तो मज़ा आ रहा होगा, और फिर जब मज़ा आता है ना तो डांस जो है वो अपने आप हो जाता है। फिलहाल और भी बहुत सारे खूबसूरत से गीत हमारे पास है। आप हमारे साथ सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। मैं आज आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त ज्योति शर्मा। और आपसे ये कहूँगी कि भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ना कुछ पल अपने लिए और अपने अपनों के लिए ज़रूर निकालिए, क्योंकि वक्त जो है ना वो बहुत कीमती होता है। ये पल पल के हिसाब से आता है और यूँ पल पल के हिसाब से निकल जाता है। अभी लगता है कि अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत वक्त है, और धीरे धीरे करके आप देखिए ना ज़िंदगी के कितने साल जो हैं वो गुजर गए हैं और कितने बाकी हैं ये तो रब जानता है। लेकिन हाँ, हर पल को ना खुशनुमा बनाने के लिए कोशिश जो है वो ना हमारी ही होनी चाहिए। और हमारी भी कोशिश है कि हम आपके इस खूबसूरत सफ़र को खुशनुमा बनाएं। और अगला गीत जो है वो हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं, और वो ये रहा।

काली काली आंखें और गोरे गोरे गाल, वाह क्या तारीफ किया। वैसे दिल खूबसूरत होना तो फिर आंखें चाहे काली हो, नीली हो या भूरी हो, बस दिल खुश हो जाता है सामने वालों की आंखों में आंखें मिलाकर या कहीं नजरें मिलाकर। क्योंकि पहले जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो सबसे पहले नज़र ही जो है ना वो नज़रों से मिलती है, यानी कि हम किसी की आंखों में आंखें डाल कर देखते हैं और फिर हम करते हैं बात शुरू। और वैसे आपको एक पते की बात बता दूं कि अगर आपको ये जज करना है या ये देखना है कि सामने वाला इंसान कितना कॉन्फिडेंट है, कितना उसके दिमाग में कुछ और कुछ नहीं चल रहा है, तो आप उसकी आंखों में देखिए। अगर उसकी आंखें इधर उधर डगमगा रही हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, या तो वो शर्माते हैं या फिर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। और जो आपसे नज़रों में नज़रें डालकर मिला के बात करेगा ना, तो समझिए कि उसकी शख्सियत में ये कहूँ कि कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो आंखों में आंखें डालकर बात करना ना आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोशिश कीजिए और देखिए फिर उसके बाद जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो कितना खूबसूरत होगा। और वैसे अगर आप ये कहें कि कुछ लोग होते हैं ना जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और कुछों में नहीं होता है, तो जिन लोगों में नहीं होता है ना, उनके लिए मैं एक बात कहूँ, हम जब आईने के आगे खड़े होकर अपने आप को देखते हैं ना और थोड़ी सी बात करते हैं खुद से ज़रा चुपके, ताकि कोई आपको पागल ना करार कर दे। क्यों? क्योंकि आपको अपने लिए खुद से ही कहते हैं ना स्टेप उठाना पड़ता है, खुद से ही एक कोशिश करनी पड़ती है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकें, आप अपने अंदर वो एक बात ला सकें जो आपको सबसे अलग करती हो, क्योंकि आप सबसे अलग हैं। लेकिन हाँ, कई बार हम कॉन्फिडेंस की कमी से अपने आप को कम महसूस करते हैं, तो उस कमी को दूर करने के लिए आपको आईने के सामने खड़े होकर कुछ देर बात करनी चाहिए और फिर देखिए उसका असर आप की जो पर्सनालिटी है वो कैसे चेंज होती है। चलिए आप कोशिश कीजिएगा, फिलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सुनाऊँ ये अगला गीत।

मस्त मस्त गाने सुन रहे हैं आप आज फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति शर्मा, और हम बात कर रहे थे कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की बात। तो

वो हमें कहीं से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर सीखना चाहिए, लेकिन हाँ कोशिश जो है वो ज़्यादा खुद से करनी है। और ये कोशिश ज़रूर करनी है कि कुछ भी जो कमियां हमें खुद से नज़र आती है उनको हमें सबसे पहले दूर करना है। और अगर आपका कोई साथी आपको बताता है कि यहाँ ये बदलाव किया जाए या यहाँ ऐसा हो सकता है तो वो कोशिश भी ज़रूर करनी है, क्योंकि कोशिश करते करते ना आप अपने आप को एक चमकता सितारा बना सकते हैं, क्योंकि काबिलियत तो हर किसी होती है, लेकिन हाँ अपनी काबिलियत को पहचानना और उसको तराशना वो सीखने वाली बात होती है। तो चलिए सीखते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो सिखाती है, हर पल सिखाती है। और सीखना जो है ना वो एक बहुत अच्छी बात है। अब ये सीखना चाहे आपको किसी बड़े से सीखना हो या किसी छोटे से, क्योंकि छोटे से सीखना भी ना कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि कभी कभी कुछ छोटे भी, ये कहूँ हमसे जो उम्र में छोटे हैं, वो भी कुछ ऐसी बात सिखा जाते हैं जो शायद बहुत बड़े या दिग्गज या जो कहें कि जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है वो नहीं सिखा पाते, जो छोटे सिखा पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीखना आपको कहीं से भी मिलता है तो ज़रूर सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी को खूबसूरत आपने बनाना है, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो आपकी है, आपको मिली है। तो अपनी ज़िंदगी को संवारिए, खूबसूरत बनाइए और हमारे साथ खूबसूरत गीतों का आनंद भी लेते रहिए।

खत्म करना होगा, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है, जुड़े रहना है हमारे साथ। और मैं ये कहूँगी जाते जाते इस कार्यक्रम को संपन्न करते करते कि आपको हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिश जो है ना वो रंग ज़रूर लाती है। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की और अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की, साथ ही साथ अपने अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने की, तो हंसते मुस्कुराते रहिए और इस खूबसूरत गीत को इन्जॉय करिए। तन्हा तन्हा आपको नहीं जीना है, आपको सबके साथ जीना है और खुशी और मुस्कुराते हुए जीना है।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके ठीक बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी व उर्दू में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति

0: एक महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है। समाचार

0: संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ। 2 to 3
1: ब्रांचेस ऑल्सो। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं

0: होता था उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फिजा से ज़मीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज के 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा सारेफीन का संगे मील पार कर लिया है। यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं। और ख्वातीन क्रिकेट में आज रात टोंटन में तीसरे और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेज़बान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM सिस्टम खिदमात की खरीद से मुतालिक मामलात की जांच के लिए 1 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी की सरबराही सलाहियत साजी कमीशन की चेयरपर्सन राधा चौहान करेंगी। कमेटी से अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अमले और तरबियत के महकमे को पेश करने को कहा गया है। तलबा को फराहम करदा स्कैंड कॉपियों में पाए गए मामलात के वेरिफिकेशन का अमल और 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच जारी है। ये सहूलत सिर्फ उन्हीं तलबा को दस्तियाब है जिन्होंने जांच किए गए अपने जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल की हैं। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: सरपंचन अनासिर की जानिब से लगातार साइबर हमलों की वजह से रुकावट के बाद CBSE पोर्टल जल्द ही लाइव कर दिया गया है। ताहम CBSE ने यकीन दहानी कराई है कि

0: तो तलबा की हर तरह से मदद को यकीनी बनाने के लिए लगातार चौकसी बरत रहा है। CBSE ने मजीद कहा है कि तलबा के फीडबैक की बुनियाद पर प्लेटफॉर्म को मजीद बेहतर किया गया है और सेशन टाइम में भी इजाफा किया गया है ताकि कामकाज को ज़्यादा आसान तर्ज पर और बिला रुकावट तरीके से अंजाम दिया जा सके। CBSE ने कहा है कि 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जाँच से मुतालिक उसका पोर्टल फिलहाल 8,000 से ज़्यादा सारिफिन की मदद कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में CBSE ने बताया है कि 16,000 से ज़्यादा तलबा अब तक कामयाबी से अपने मंदरजात पेश कर चुके हैं। CBSE का पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा और ऑफलाइन दरख्वास्तें या मुद्दत गुजरने के बाद दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: इस दौरान सीनियर IAS अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE का नया चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। जनाब सीताराम वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी की खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनकी तकरूरी राहुल सिंह की जगह हुई है, जिनका बतौर एडिशनल सेक्रेटरी ज़िरात और किसानों की बहबूद के महकमे में तबादला कर दिया गया है। हुकूमत ने वरुण भारद्वाज को भी CBSE में सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। वो आला तालीम के महकमे में डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। तकरीरों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने इन तकरूरात को मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाख्तियार बनने का ताकतवर वसीला है जो लोगों को खुदकफील, बाखबर और बासलाहियत बनाती है। सदर जमहूरिया आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप स्कीम के कबायली मुस्तफदीन से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हकीकी मायने में तरक्की तभी मुमकिन है जब माशरे के सभी तबकात समाजी, इकतसादी और तालीमी तरक्की करें।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े, तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीमों ने कबाइलियों की ज़िंदगी में यकसर तब्दीली लाई है और उनके लिए आला तालीम और नए मौक़े तक रसाई मुमकिन हो पाई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि भारत में हुनर की कोई कमी नहीं है और उन्होंने उसे फ़रोग देने के लिए उसकी निशानदेही करने, परवान चढ़ाने और सही मकाम अता करने पर जोर दिया।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के तहत भारत में खातिर खा तब्दीली लाई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में हम बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान भारत में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के सिमत में नुमाया तब्दीली हुई है, जो हुकूमत की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। इन कोशिशों का मकसद ख़वातीन को सेहत, तालीम, रोज़गार के मौाक़े, माली शमूलियत और क़्यादत के शोबों तक रसाई को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो 2015 में शुरू की गई थी, ने लाखों ख़वातीन को अपना कारोबार शुरू करने और इसे उसत देने के लिए बग़ैर ज़मानत के कर्ज़ हासिल करने के काबिल बनाया है। इस स्कीम के तहत रवा माली साल मार्च तक 40 करोड़ रुपए से ज़ायद के कर्ज मुस्तफिदीन को फराहम किए गए हैं, जिनमें से 17 लाख करोड़ रुपए ख़वातीन को दिए गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसे अहम प्रोग्रामों ने मुश्तरका तौर पर ख़वातीन की बैंककारी, बचत और कारोबारी प्लेटफार्म तक रसाई को मजबूत बनाया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 33 करोड़ अकाउंट्स ख़वातीन के नाम है। दीपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि भारत और नेपाल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात

0: में किसी तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं है। वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने नेपाल के वजीर अजम की भारत नेपाल सरहद से मुतालिक राय जनी और उसके बाद नेपाल की वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान के जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरहद से मुतालिक मामलात के सभी पहलुओं से निमटने के लिए कायम शुदा बाहमी तरीक़ाकार मौजूद है। जनाब जायसवाल ने कहा कि हालांकि भारत नेपाल सरहद के तकरीबन 98% हिस्से की वाजह तौर पर हदबंदी हो चुकी है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर काम होना है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन मुश्तरका बयान में गैर ज़रूरी तस्करों को भी मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के सिलसिले में जिनकी खुद कोई हैसियत ना हो, उन्हें कोई बात कहने से गुरेज करना चाहिए। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिगेज कल से भारत के 4 रोज़ा दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके हमरा खारजी उमूर, इकतसादी व मालियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, मवासिलात व इत्तलात और नकल व हमल के महकमों के वज़रा भी होंगे। जनाब जायसवाल ने कहा कि मोहतरमा रोड्रिगेज अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दोतरफा बातचीत करेंगी। इस बातचीत में तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल, अद्वियात और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों में इश्तराक के इम्कान तलाश करने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। मरकज़ ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक ज़ाब्तों में तरमीमात को नोटिफाई कर दिया है। ये तरमीमात 180 दिन तक भारत आ रहे गैर मुल्की अफराद को मुल्क में अपने क़याम में तौसी की ख्वाहिश की सूरत में उन अफराद के वीज़े की मुदत ख़त्म होने से पहले रजिस्टर करने को मुमकिन बनाती हैं। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तरमीमी ज़ाब्तों 2026 को नोटिफाई किया है, जिसमें इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक ज़वाबित 2025 के तहत रजिस्ट्रेशन की मुद्दत और अपील मैकेनिज्म में अहम तब्दीलियां मुतारिफ़ कराई गई हैं। ज़ाब्तों में पहली मरतबा ऑनलाइन अपील निज़ाम को जोड़ा गया है। किसी ऑर्डर से मुतासरा कोई शख्स अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के कमिश्नर के पास ऑनलाइन अपील दाखिल कर सकता है। ऑर्डर मौसूल होने के 30 दिन के अंदर अपील दाखिल करना लाजमी होगा। कमिश्नर को 60 दिन के अंदर मुतल्लिका फरीकों को सुनना और मामले को हल करना होगा। भारत ने फिजा से ज़मीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO और भारतीय फिजाइया की जानिब से सभी अहम निज़ाम की सलाहियत को कायम रखते हुए ये आजमाइशी तजुर्बा किया गया। वजारत दिफा ने कहा कि इन मिज़ाइल को पहले से तयशुदा निशाने की जानिब दागा गया। चांदीपुर में मरबूत टेस्ट रेंज पर नसबशुदा मुख्तलिफ आलात की जानिब से परवाज़ से मुतालिक डेटा में इस बात की तस्दीक की गई है कि इस आजमाइशी तजुर्बे के सभी मकासद हासिल कर लिए गए हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय फिजाइया, दिफा से मुतालिक सरकारी कंपनियों, शराकतदारों और सनतकारों को इस उसूलयाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि इस कामयाब आजमाइशी तजुर्बे से अंदरून मुल्क तैयार करदा दिफाई टेक्नोलॉजियों की बढ़ती सलाहियत का इजहार होता है और जदीद हथियार निज़ाम के सिलसिले में आत्मनिर्भरता की जानिब ये अहम कदम है। प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव्स OTT ने नवंबर 2024 में अपने आगाज़ के बाद से 2 साल से भी कम वक्त के अंदर 1 करोड़ रजिस्टर्ड सारिफिन से तजावुज़ कर लिया है। इत्तलात नशरियात की वजारत ने कहा है कि इस संगी मील से अंदरून मुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियार किए जाने की अक्कासी होती है, जो नाजरीन को काबिल भरोसा और मुख्तलिफ तरह का मवाद फराहम करता है। 1,40,00,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स के साथ अब वेव्स OTT कंटेंट के सिलसिले में शराकतदारी को वसत देने, इलाकाई और तालीमी मवाद को मुस्तहकम करने और मार्च 2027 2 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र्स के निशाने को हासिल करने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर 24,000 से ज़्यादा कंटेंट टाइटल्स, 15,000 घंटे से ज़्यादा कंटेंट, 140 से ज़्यादा लाइव TV चैनल्स और 200 से ज़्यादा रेडियो खिदमात दस्तियाब हैं। यकसां अदायगी के निज़ाम UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ मालियत के माशी लेन देन का इंदराज किया है। मालियाती खिदमात के महकमे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में डिजिटल अदायगियों को अपनाने पर शहरियों का शुक्रिया अदा किया है। रूस की जानिब से यूक्रेन की राजधानी कीव और दीगर यूक्रेनी शहरों पर रात भर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम 21 शहरियों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों में शहरी बुनियादी ढांचे और तवानाई के मराकज को निशाना बनाया गया। जनाब जेलेंस्की ने अमरीका से मजीद पेट्रियाट फिजाई दिफाई मिजाइलें फराहम करने की दरख्वास्त की। इस दौरान रूस की वजारत दिफा ने कहा कि ये हमले यूक्रेन की जानिब से किए गए हमलों के जवाब में किए गए हैं। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया कि सभी तयशुदा ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। आलमी मौसमियाती महकमे WMO ने सख्त इंतबाह जारी किया है कि एल नीनो का मौसमी निज़ाम तश्कील पा रहा है और तवक्को है कि ये इस साल दुनिया भर में शदीद मौसमी हालात पैदा करेगा। मौसमियाती इदारे के मुताबिक इस बात का 80% इम्कान है कि एल नीनो का मौसमी निज़ाम इस साल जून और अगस्त के दरमियान पैदा होगा और नवंबर तक बरकरार रहेगा। साइंसदानों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली इसके असरात को मज़ीद शदीद बना देगी। हुकूमत ने फैसला किया है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI को मरहलेवार तरीके से ख़त्म करके उसकी जगह प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI का जामे निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। ये फैसला मुल्क के अफरात ज़र और कीमतों से मुतालिक आदाद व शुमार के निज़ाम को जदीद बनाने और उसे आलमी बेहतरीन तरीक़ों से हम आहंग करने के लिए किया गया है। ख्वातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी सीरीज़ का तीसरा और आखिरी T20 बैन अलाक़वामी मैच आज रात इंग्लैंड के टोंटोन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। भारत ने चेम्सफोर्ड में खेला गया पहला मैच 38 रन से जीतकर और इंग्लैंड ने ब्रिस्टल में खेला गया दूसरा मैच 26 रन से जीतकर सीरीज़ को बराबरी पर ला खड़ा किया है। और आखिर में ख़ास ख़ास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फिजा से ज़मीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा Rudram-2 मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज़ के 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा सारिफिन का संगे मील पार कर लिया है। यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं। और ख़वातीन क्रिकेट में आज रात टोंटोन में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलाक़वामी मैच में भारत का मुकाबला मेज़बान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
2: Money Talk. This is Akashwani. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on key takeaways from RBI's annual report 2025-26. The participants are Shishir Sinha, economic analyst, and Rajesh Lekh, anchor.
3: Good evening and welcome to Money Talk. My name is Rajesh Lekh. Today we unpack the Reserve Bank of India's annual report 2025-26. Its data, policy signals, risks and what it means for the markets, banks, businesses and your savings. Joining us is economic expert Shishir Sinha. Shishir, thanks for joining us.
4: Thank you very much.
3: The RBI highlights slower credit growth but rising retail loans in 2025-26. Is this a structural repricing of risk or a cyclical reallocation of bank balance sheets?
4: I think if you go by what we call as the personal loan, or the unsecuritized loan, there we have seen a good growth there. One reason could be a very high growth in the gold-based loan. And that is something which is really putting some pressure on the balance sheet of the banks because the prices of gold is going up. So, and also default is very high in that situation. In terms of the other loan, if you talk about the corporate loan, the advances growth are slightly okay, not very much, but it is just okay. And it is in line with the investment being made by the private sector. We all are discussing that private sector investment is a bit slow than what it was expected. And that is also reflected in the loan book of the balance sheet. At the same time, we also have to go about the deposit also. Right. Because whatsoever money you are lending to the various people, you are getting only from the depositors. And there we are finding that the growth in the deposit rates are slightly on the lower side. So that is why the pricing of advances are becoming a big issue for the banks.

0: 慢谈。ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में, जिसने शहरों और कस्बों में काम करने वाले रेहड़ी पटरी वाले छोटे विक्रेताओं की मदद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राजेश कुमार जी, जो जनरल मैनेजर हैं सिडबी के, उनसे बात करेंगे। राजेश जी, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: राजेश जी। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आम लोगों के समझने के लिए कि ये पीएम स्वनिधि योजना आखिर है क्या और इससे रेहड़ी पटरी वालों को खास तौर पर क्या फायदा मिलता है।
2: पीएम स्वनिधि योजना बेसिकली एक लोन प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई योजना थी, जिसमें सिलसिलेवार ढंग से 3 चरणों में लोन मिलता था। पहला लोन 10,000 का था, दूसरा 20,000 का और तीसरा 50,000 का। इस लोन के साथ साथ उनको इंटरेस्ट सब्सिडी थी, 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता था। और डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन से मेरा मतलब है QR कोड के थ्रू पेमेंट लेना या डिजिटली पेमेंट करने पे 100 रुपए तक प्रति मंथ का इंसेंटिव था
1: जी।
2: अब उसके अलावा 400 रुपए का और इंसेंटिव ऐड हो गया है, जो कि बल्क ट्रांजेक्शन परचेज करने पे उनको मिलता है। इसके अलावा जो सरकार की 8 वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनसे जोड़ने की योजना थी और उनके स्किल के डेवलपमेंट करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम था।
1: तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस योजना को करीब 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है खासतौर पर कोरोना के बाद छोटे

0: दुकानदारों के लिए योजना कितनी मददगार साबित हुई होगी?
1: ये मददगार कितनी ज्यादा थी, ये आप इसके नंबर से समझ सकते हैं। अभी तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में लोन मिल चुका है और करीब 17,800 करोड़ के लोन, करीब 1 करोड़ 13 लाख लोन दिए जा चुके हैं। तो इसका विस्तार पूरे भारत में था, सारे स्टेट यूटीज में, स्कीम में, अर्बन एरियाज में इसके लोन दिए गए और लोगों को काफी सहायता हुई, इसलिए कि उनके पास उसमें कार्यशील पूंजी खत्म हो गई थी, बिजनेस को रिस्टार्ट करने के लिए उसमें पैसा चाहिए था।
0: जी
1: बट गरीब लोगों को पैसे की जरूरत हमेशा रहती है, कोरोना खत्म होने के बाद भी अभी तक चल रही है और उसका डिमांड है और लोगों में इसका काफी यूटिलिटी दिख रहा है।
0: जी राजेश जी, अहम चीज जो इस स्कीम में है कि वो एक बिना गारंटी के एक छोटा लोन मिल जाता है, तो ये कितना बड़ा फायदा होता है रेड़ी पट्टी वाले लोगों के लिए और ऐसे लोग जो साहूकारों के पास जाते थे पहले लोन लेने के लिए या पैसा कर्ज लेने के लिए और उसमें उन्हें काफी लंबा ब्याज भी चुकाना पड़ता था, तो ये खासतौर पर उनके जीवन स्तर में किस तरह का एक सुधार आप देखते हैं?
1: सुधार दो रूप में आप देख सकते हैं। एक तो वही अमाउंट अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर से, मनी लेंडर से लेते थे तो काफी ज्यादा ब्याज देना पड़ता था
0: जी
1: जो उनके प्रॉफिट को कम करता था। दूसरा, चूंकि काफी हाई रेट कॉस्ट पे लोन मिलता था तो वो एक छोटा अमाउंट लेते थे, जितना बेसिक जरूरत होती थी उतनी ही लेते थे क्योंकि काफी ज्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था। स्कीम में रिजनेबली गुड अमाउंट, जिसको कहते हैं कि पहले 10,000 रुपया, जो अभी बढ़ के 15,000 रुपया हो गया, फिर 25,000 रुपया और फिर 50,000 रुपये का लोन मिलता है, तो उनको सिर्फ ना बिजनेस चलाने के लिए बल्कि बिजनेस बढ़ाने के लिए में सुविधा हो रही है और इसकी वजह से उनका ओवरऑल इनकम इसलिए बढ़ रहा है कि उनके बिजनेस का साइज बढ़ रहा है।
0: जी
1: तो दोनों रूप से फायदा हुई। और हमने इम्पैक्ट स्टडी कराया, दो स्टडी कराया था, तो उसमें निकल के आया कि इनका इनकम जो है करीब करीब 20% से एनुअली बढ़ रहा है जिन्होंने इसके अंदर लोन लिया है। तो इसका दोनों वजह से है, कॉस्ट कम होना और बिजनेस का बड़ा करना।
0: कोई एक उदाहरण जो आपके जहन में ताजा हो रहा हो इस समय बात करते समय कि किसी के जीवन स्तर में आपने सुधार देखा हो, क्या काम करता था वो व्यक्ति?
1: बहुत लोगों ने बिजनेस को बड़ा किया, पहले थोड़ा सा क्वांटिटी रखते थे। जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो वो बताते हैं कि चाहे वो फल वाला हो, सब्जी वाले हो या आर्टिफैक्ट्स वाले हो, उनका दायरा बढ़ गया, उनका स्टॉक का क्वांटिटी बढ़ गया और उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। कुछ ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया कि पहले आप सिर्फ फल बेच रहे थे, अब उसका आप जूस भी बेच रहे हैं या कट फ्रूट फ्रूट्स भी बेच रहे हैं। सिर्फ आप मछली बेचते थे, अब मछली को जो है सो फ्रिज में रख रहे हैं तो उसको ज्यादा समय तक बेच पा रहे हैं या फिर उसको आप प्रोसेस करके बेच रहे हैं। पहले आप छोटी आय के आपके पास पूंजी थी तो आप छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स खरीदते थे, अब जब ज्यादा पैसा है तो बड़े बड़े महंगे आर्टिफैक्ट्स भी खरीद के आप दुकान में रखते हैं। तो हजारों ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, आपको बता देंगे लोग कि कैसे उनके बिजनेस को बढ़ावा मिला है इससे।
0: आप लोगों को कोई चुनौतियां भी सामने आई जब स्कीम को आप लोगों के बीच लेकर के गए, उनका रुझान कैसे था? क्योंकि आज तो नंबर्स बड़े अच्छे दिख रहे हैं लेकिन शुरुआती दिनों में क्या माहौल था?
1: शुरुआती दिनों में डिमांड था, इसलिए कि कोरोना के कारण लोग काफी अफेक्टेड हुए थे, उनको पूंजी चाहिए थी और सरकारी जो मशीनरी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूएलबीज हो, अर्बन लोकल बॉडी, मतलब जो शहर का जो लोकल निकाय है, उन लोगों में भी रुचि थी। बट एक मुश्किल जो थी इनको बैंक तक ले जाना, और बैंकों में भी एक थोड़ा सा ये मानसिक रूप से ये होता है कि इतने गरीब लोगों को लोन देना वापस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। शुरुआती एक उलझन थी लोगों के दिमाग में, एक दुविधा थी कि ऐसा सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बट बहुत जल्दी ये साबित हो गया कि ये काफी सक्सेसफुल है, लोग ऋण चुका रहे हैं, तो उसके बाद ये पीछे मुड़ के इस स्कीम ने नहीं देखा।
0: ये वाकई खासतौर पर बैंकों के लिए भी दिक्कत होती है कि अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं तो वापस आएगा नहीं आएगा, ये चिंता बैंकों के लिए बड़ी होती है। तो इस स्कीम में क्या कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला है जरा भी कि नहीं लोगों की तरफ से इंतजार हो कि नहीं मेरा पैसा माफ कर दिया जाएगा ऐसा कुछ, या वो अपनी क्रेडिट रेटिंग सुधारने के लिए तुरंत ही लोन का भुगतान करने में सबसे आगे बढ़कर अपना काम करते हैं?
1: मैंने नहीं देखा कभी कि किसी ने इंतजार किया हो कि उसका लोन माफ हो जाए, लेकिन चूंकि गरीब लोग हैं तो उनके जिंदगी में बहुत सारी ऐसी जेन्युइन परेशानियां आती रहती हैं, वो हेल्थ का इश्यूज हो, बिजनेस का इश्यूज हो, आपके इलाके में बाढ़ आ गया, आपके गांव में स्थिति आपदा हो गई, गर्मी है, कुछ ही कारण से आपका बिजनेस, बारिश हो गई बहुत ज्यादा तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया, तो बहुत सारे कारणों से लोग ऋण को चुका पाने में असमर्थ होते हैं। बट ऐसा मैंने नहीं देखा जहां पर कि उनके पास नियत नहीं हो चुकाने की। और इस स्कीम में इनबिल्ट इंसेंटिव है, आप पहला लोन पे करेंगे तो दूसरा बड़ा लोन मिलेगा, दूसरा लोन प्रीपे करेंगे तो तीसरा और बड़ा लोन मिलेगा, आप तभी लेंगे लोन जब आपको जरूरत है, लेकिन आपको ये पता है कि जब जरूरत है तो वो लोन मिलेगा
0: जी,
1: तो इसलिए लोगों की रुचि है लोन को लेने में और रिपे करने में।
0: जी जाहिर है, तो मतलब कर्ज चुकाएंगे तो अपने कारोबार को बढ़ाने की रुचि लोगों में रहती ही है और उसका एक इंसेंट

0: इंसेंटिव भी मिलता है कि अगर आपने लिया हुआ कर्ज समय पर चुका दिया तो आपको और ज्यादा कर्ज मिलेगा। डिजिटल पेमेंट इंसेंटिव की भी आपने बात कही थी, वो किस तरह से होता है और पिछले 6 सालों में लोगों ने इसमें किस तरह का रुझान दिखाया?
1: डिजिटल इंसेंटिव है, अगर आप जैसे ग्राहक से अपने पैसा जो है सो QR कोड के थ्रू ऑनलाइन लेते हैं तो उसके लिए हम इंसेंटिव देते हैं, या आप जो अपनी पेमेंट करना है जो आप खरीद करते हैं उसके लिए आप पेमेंट करते हैं, पर्सनल हो या बिजनेस एक्सपेंसेस हो। तो एक तो रिटेल का हम देते हैं जो साल में मैक्सिमम 1200 रुपए तक मिल सकता है, 100 रुपए प्रति मंथ। दूसरा एक अभी शुरू किया गया है जिसमें क्वार्टर में हम 100 रुपए देते हैं अगर वो स्ट्रीट वेंडर 2000 रुपए से ज्यादा का परचेज करता है और ऑनलाइन पेमेंट करता है। तो इस तरह से आप साल में 1600 रुपए तक डिजिटल इंसेंटिव के रूप में पा सकते हैं जो आपके ऑलमोस्ट लोन के इंटरेस्ट का कॉस्ट सब्सिडाइज कर देता है।
0: जी, महिलाओं के लिए इस योजना में कोई खास पहल देखने को मिली?
1: महिलाओं की भागीदारी इस स्कीम में काफी ज्यादा है, अबाउट 45% जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो महिलाएं हैं। तो दो की इस स्कीम में अलग से कोई उनके लिए इंसेंटिव का प्रोविजन नहीं किया गया था, समरूप से ये स्कीम सबको बराबर रूप से सहायता प्रदान कर रहा है। लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी में बिजनेस में महिलाएं हैं और स्ट्रीट वेंडिंग में खास करके उनका योगदान दिखता है तो उनकी भागीदारी वो हमारी स्कीम में भी दिखती है।
0: एक अहम सवाल ये भी उठता है कि जब हम अपने आसपास कारोबार में सुधार देखते हैं तो उससे उन लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है पूरी तरह से। एक तरह से अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें आप इस तरह की योजनाओं का क्या फायदा होता देखते हैं?
1: अर्थव्यवस्था को फायदा ये है कि जैसे 17,800 करोड़ ये फॉर्मल लोन्स दिए गए, ये पैसे कभी इनफॉर्मल सेक्टर से लिए जाते अब ये फॉर्मल सेक्टर से हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है और आगे बाहर से लोन लेने में सुविधा होगी। इनफैक्ट हमारे स्कीम में जो स्टडी है उसके हिसाब से 30% से ज्यादा लोगों ने अभी ही स्कीम से बाहर बैंकों से लोन लिया है, फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है, ये फायदा है। दूसरा जो इम्पैक्ट है, जब आपका इनकम लेवल इम्प्रूव होता है तो आपकी सबसे पहली इच्छा होती है कि अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड में जहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे जरूरी आपको होता है उसकी बेसिक सुविधा की उन्नति कर सके, सुधार कर सके, वो आपके घर का हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई हेल्थ का इश्यू हो। इस घर के लिए अलग अलग चीजें क्रिटिकल होंगी लेकिन जहाँ जो क्रिटिकल है वहाँ वो उस पर एक्सपेंड करते हैं, अपने को सुधारने की कोशिश करते हैं। और ये भी हमारे इम्पैक्ट रिपोर्ट में निकल के आया है कि आधे से ज्यादा लोगों के जीवन स्तर में कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है।
0: आपने इम्पैक्ट रिपोर्ट का जिक्र किया तो उसमें क्या क्या पैमाने रखे थे आप लोगों ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए?
1: एक तो हम देखना चाहते थे कि इनकम में क्या इम्प्रूवमेंट है, दूसरा ये देखना चाहते थे कि उस इम्पैक्ट उनके लिविंग्स पे आता है कि नहीं। तो 4 बेसिक पैरामीटर्स थे, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उनके घर का रहना ठिकाना था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का और परिवार का हेल्थ और खाने पीने का, एक न्यूट्रिशन जो एक बेसिक आप कहते हैं अच्छा भोजन रिलेटिवली वो मिल रहा है कि नहीं, इन 4 पैरामीटर पे स्टडी किया गया था।
0: तो क्या परिणाम इसके निकल के आए? क्या लोगों के स्तर में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला या एक नोशनल इंक्रीज जिसे कहते हैं कि एक मामूली फर्क नजर आया?
1: उस ढंग से उसको क्लासिफाई नहीं किया गया था उस रिपोर्ट में कि कितना अमूलचूल है, ये अमूलचूल तुरंत हो भी नहीं सकता
0: जी,
1: लेकिन हर एक कदम जो कि सही दिशा में बढ़ता है वो इम्पोर्टेंट है, उस तबके के लिए खास करके काफी मायने रखता है।
0: इस योजना का विस्तार भी किया गया है, आपको क्या लगता है किस तरह से और ज्यादा फायदेमंद होगा ये लोगों के लिए और नए लोग भी स्कीम में शामिल होंगे?
1: अभी तक ये सिर्फ शहरी लोगों के लिए था जो स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, अब हम इसको सेंसस टाउन में एंड पेरी अर्बन एरियाज में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक तो वो फायदा हो रहा है और दूसरा स्कीम में अब क्रेडिट कार्ड को जोड़ा गया है, दूसरा फायदा है लोगों के लिए जो एग्जिस्टिंग बोरोअर्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए है, और तीसरा हम उनके स्किल में ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनको एक बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए उस पर भी हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनका हैंड होल्डिंग कराना, उसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है।
0: सर, आपसे एक अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे लोन लेने वाले थे उनमें से कितने लोग बड़े लोन की तरफ बढ़े हैं, ऐसा कोई आंकड़ा अगर आप हमारे साथ साझा कर सके?
1: जैसे हमारा जो स्कीम है जो छोटे लोन है जिसको हम फर्स्ट लोन कहते हैं, तो उसमें करीब अभी आज की तारीख में 75-75.5 लाख लोगों ने लोन ले रखा है।
0: बिल्कुल,
1: उसमें से करीब करीब 47 लाख से थोड़े कम लोगों ने रिपे कर दिया पूरी तरह से, या तो जो जिन्होंने फर्स्ट लोन रिपे कर दिया है वो सेकेंड लोन के लिए एलिजिबल है, उनमें से करीब 29 लाख लोगों ने सेकेंड लोन लिया है और जो 13.5 लाख लोगों ने लोन रिपे कर दिया है उसमें से करीब 8 लाख लोगों ने थर्ड लोन लिया है। एक तरह से माना जाए कि काफी ज्यादा जो रिपे कर चुके हैं उनमें से मोर देन 60% 70% लोग जो है सो नेक्स्ट लोन लेते हैं।
0: तो चलिए हम बात करते हैं स्कीम के बेनिफिशरीज से भी, वो हमारे साथ जुड़

0: रहे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। विष्णु शंकर भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विष्णु जी, सारनाथ के रहने वाले हैं आप, और क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में इस योजना का लाभ लेने के बाद? बोलिए राजेश जी।
1: सर हम लोग तो रेडी वाले हैं, सारनाथ म्यूजियम पे हेलिया पे दुकान लगाता हूँ मैं सर।
0: जी
1: और जो मेरा कार्ड है काफी पुराने समय से था जी, कोरोना काल जब आया तो हम लोग लगातार 2 साल के लगभग बंद किए हुए थे, दुकान फिर से शुरू की तो हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी सर। तो उसी समय सर पीएम सुनिधि जो आई, ये सर अच्छा होगी, पहली बार तो बैंक हम लोग को सम्मान मिलने लगा। फिर उसके बाद जो हम लोग उसमें रजिस्टर कराकर अपना 10,000 का लोन लिए, जब हम लोग उसकी एक्टिविटी करने लगे तो हम लोग को उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा। पहली बार तो उसमें मंथली देना पड़ने लगा, फिर उसके बाद हम लोग जब 10,000, 20,000, 50,000 का लिए तो बैंक ऑटोमेटिक आज हमारी सर 4 लाख की लोन की हुई है। उसमें ओडी अकाउंट होती है सर, तो उससे सर हमको बहुत ही सहायता मिला, और उसके साथ साथ पीएम सुनिधि साथ साथ हमारे फैमिली मेंबरों को भी सर जोड़ा गया है।
0: बिल्कुल। तो विष्णु जी बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका कारोबार इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहे। तो राजेश जी, अभी आपने विष्णु जी को सुना, वो अपनी बात
1: जी
0: बता
1: सर,
0: रहे थे कि किस तरह से जो है उन्हें इस योजना का फायदा मिला और किस तरह से उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। तो और भी जो लोग इस तरह की योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं या उनके मन में कोई डर है, कोई शंका है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: उनको मैं कहूंगा कि आप अपने शहर के बॉडी होता है, आप उनसे संपर्क, और अगर खुद से कर सकते हैं तो हमारे पीएम स्वनिधि के वेबसाइट पे जाकर के या मोबाइल ऐप से डायरेक्टली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट है तो, और नहीं है तो वेंडिंग के लिए पहले अप्लाई करें। और स्ट्रीट वेंडिंग और लोन अप्लीकेशन अब कम्बाइन रूप से एक साथ होता है, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो पहले आप यूएलबी आपका स्ट्रीट वेंडिंग का कंफर्मेशन करेगा, जिसको हम एलओआर कहते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और जब आपका एलओआर यूएलबी अप्रूव कर देगा तो फिर आपका एप्लीकेशन बैंक को चला जाएगा लोन के लिए।
0: तो राजेश जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपका।
3: अभी आप सुन रहे थे पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थी के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता

0: ताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपुकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम ट्रू मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म विब्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा है कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच भारत ने 38 रन से जीता, वहीं दूसरा मैच इंग्लैंड ने 26 रन से जीतकर श्रृंखला को 1-1 से बराबर कर दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking system by Central Board of Secondary Education or CBSE. Online system of marking is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examination. Replacing the traditional paper checking, the committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission, S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. In another development, Senior IAS Officer Lokhande Prashant Sitaram has been appointed as the new Chairperson of the CBSE. Mr. Sitaram was earlier serving as Additional Secretary in the Home Ministry. His appointment was made in place of Rahul Singh, who has been transferred to Department of Agriculture and Farmers Welfare as Additional Secretary. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. A Delhi court today extended the judicial custody of 5 accused in the NEET paper leak case till the 15th of this month. Yesterday, 2 other accused were sent to 14 days of judicial custody. The CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Cum Entrance Test held on the 3rd of May amid allegations of paper leak. A re-examination has been scheduled for 21st of this month. India has rejected any role for third parties.

अभी आप सुन रहे थे गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं संचारी भट्टाचार्य जी का राग जोग में गायन।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे संचारी भट्टाचार्य जी का राग जोग में गायन।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा

0: कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission's S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. A Delhi court today extended the judicial custody of 5 accused in the NEET paper leak case till 15th of this month. Yesterday, 2 other accused were sent to 14 days of judicial custody. The CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Cum Entrance Test held on 3rd May amid allegations of paper leak. A re-examination has been scheduled for 21st of this month. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal, days after Nepalese Prime Minister Balendra Shah sought involvement of China and the UK to address the long-standing dispute. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said both sides have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of the border matter.
2: While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments. The shifting of the course of Gandak River has resulted in this situation. In addition, there are cases of cross-border occupation and encroachment of no man's land in demarcated segments of the boundary, which are currently being mapped jointly. We have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of boundary matters. It should be clear to all concerned that there is no role for any third parties in a bilateral matter between India and Nepal.
1: Mr. Jaiswal said India also rejects

कुछ लोग दूर होकर भी दिल के सबसे करीब होते हैं और उनकी यादें हर शाम को खास बना देती है। आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत फिल्म प्रेम दीवाने से। इस गीत की फरमाइश की थी सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम और साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी दिल्ली से प्रिया शीर, बेबी वेदांशी, एसपी सिंह, नीलम, वीरेंद्र सिंह, तनिष्का और मास्टर रणवीर ने।

कविता कृष्णामूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म चालबाज से। इस गीत की फरमाइश की थी अस्तपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद ने। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल का पता नोट कीजिए, IP रेडियो दिल्ली @gmail.com।

हर पल तेरी यादों में खोए रहते हैं, तेरा नाम लेकर ही मुस्कुराते रहते हैं। कभी तो महसूस करो इस दिल की धड़कनों को, जो हर वक्त बस तुझे ही पुकारा करते हैं। किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म ब्लैकमेल से। इस गीत की फरमाइश की थी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल, यश सफ़ी, और साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी शास्त्री नगर भीड़ शहर से किशन सा पाल, आशा सोनिया और विशाल ने।

यार मैं सपने सजाने का भी एक अलग ही मज़ा है। हर ख्वाब में बसी उसी चेहरे का बसेरा है, कभी हंसी बनकर कभी धड़कन बनकर। मोहब्बत का हर सपना दिल को हुई प्यारा लगता है। इस गीत की फरमाइश की थी चिरमिरी कुरसारिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सरोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे ने। और गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में और उदित नारायण की फिल्म दुश्मन से।

अनुपमा मोड की आवाज़ में आप सुन रहे थे एक गीत फिल्म आक्रोश से। इस गीत की फरमाइश की थी पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा ने।

हरी हरन की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म यादें से। इस गीत की फरमाइश की थी ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरफ खुराना और एस के पप्पी ने।

0: रूप कुमार राठौर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म बॉर्डर से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, GRM 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को है, इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी है। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विदेश विशेष दूत एंड्रियास काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कल मैक्सिको के विदेश मंत्री रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेज से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर

ने बताया कि उन्होंने रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेस को विदेश मंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी है। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत और मैक्सिको के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने तथा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम करने पर सहमति भी व्यक्त की है। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्स के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14 ओवर में 4 विकेट पर 122 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय समय अनुसार यह मैच रात 11 बजे शुरू हुआ। 3 मैचों की श्रृंखला फिलहाल एक-एक की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: weapon systems. The Sar Bharati's digital streaming platform Waves OTT has crossed 1 crore registered users in less than 2 years after its launch in November 2024. Ministry of Information and Broadcasting said, "The achievement marks a significant step in the growth of the country's public digital media ecosystem." The ministry said this reflects the increasing adoption of indigenous digital platforms offering trusted, inclusive and diverse content to audiences in India and across the world. It said, with more than 1 crore registered users and over 1 crore 40 lakh downloads, Waves OTT is now focused on its next phase of growth. In women's cricket, India were 132 for 4 in 15 overs against England in third and final T20 international at the Cooper Associates County Ground, Taunton, England tonight when reports last came in. England won the toss and opted to bowl. The match began at 11 p.m. Indian Standard Time. The series is levelled at 1-1. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 12:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। श्रोताओं, ये है आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर में कई ऐसे गीतकार हुए जिन्होंने शब्दों से भावनाओं का ऐसा संसार रचा कि उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। ऐसे ही एक गीतकार थे जी.एस. रावल जी, जिनके गीतों का जादू आज भी छाया हुआ है।

श्रोताओं, रावल हिंदी फिल्म जगत के उन गीतकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपने गीतों में प्रेम, विरह और संवेदनाओं को बेहद खूबसूरती से पिरोया। उनके गीतों ने उन्हें फिल्म संगीत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलवाया। 1960 और 70 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे और खासतौर पर संगीतकार जोड़ी सोनी कोमी के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी लोकप्रिय रही। गीतों में सरल भाषा, गहरी भावनाएं और मधुर अभिव्यक्ति उनकी पहचान थी और यही एक ऐसी तस्वीर उनके गानों में दिखाई देती थी कि लगता था कि हाँ, ये गाना खास है, ये गाना रावल साहब का है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और ये है आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। बात हो रही है GS रावल की, एक ऐसे गीतकार की जिनके गीतों में वो झलक दिखती है जो उनकी असली शख्सियत में थी, वो बात जो हर गीतकार की पहचान होती है, शब्दों को गीतों में पिरोना और उनके सहारे फिल्मों के गीत लिखना, ये बखूबी जानते थे रावल साहब। और उनकी यही कला फिल्मकारों को इतनी पसंद आई कि उन्हें धड़ाधड़ एक के बाद एक गाने लिखने की अनुमति मिली। हाँ, इतने गाने नहीं लिखे उन्होंने, लेकिन हाँ, जो गाने लिखे आज भी लोगों की जुबां पर है। फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाना GS रावल के लिए कभी आसान नहीं रहा, भले ही वो अच्छे गीत लिखते थे।

भले ही वो शब्दों के बाजीगर थे, लेकिन उन्हें काम मिलना इतना आसान नहीं था। उस दौर में शैलेंद्र, साहिर, मजहूर, राजेंद्र कृष्ण और आनंद बख्शी जैसे गीतकार अपनी पहचान बना चुके थे। दिग्गज गीतकारों के बीच अपनी जगह बनाना रावल साहब के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन जीएस रावल ने अपने शब्दों की ताकत से मुकाम हासिल किया। उनके गीतों से भावनात्मक गहराई और शायरी की मिठास थी। धीरे धीरे निर्माता और संगीतकार उनके लेखन की ओर आकर्षित हुए और उन्हें लगातार अवसर मिलने लगे। उन्हें गीतों से पहचान मिली।

हम बात कर रहे हैं गीतकार जी एस रावल की और आप सुन रहे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और ये है आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल।

श्रोताओं, जी एस रावल को पहचान दिलाने वाली फिल्मों में दिल ने फरियाद किया विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। इस फिल्म के गीतों ने उन्हें फिल्म जगत में एक नई स्थापित गीतकार के रूप में बड़ी पहचान दिलाई और उनके गाने, इस फिल्म के गाने और उसके शब्द आज भी लोगों की जुबां पर हैं। धर्मेंद्र और नूतन की ये फिल्म, जिसका संगीत सोनी गोमी ने दिया था और गीत ने श्रोताओं का, सुनने वालों का, रावल साहब के चाहने वालों का और धर्मेंद्र और नूतन के फैंस का दिल जीत लिया था।

जी हाँ, जब कलियों ने घूंघट खोले और फूल से भौरे बोले, कुछ इसी तरह की जो कारीगरी थी उनके गीतों में दिखती थी, जो लिखते थे G.S. रावल। G.S. रावल के गीतों में प्रेम के अलग अलग रूप दिखाई देते थे, और ये रूप जो थे वो उनके शब्दों के साथ उनकी भावनाओं में, खासकर जब वो उन गीतों को फिल्म में जो हीरो है हीरोइन है उनके लिखते थे, तो उनकी उनके पिक्चराइजेशन में खुशबू साफ साफ नजर आती थी। उनकी लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता थी सहजता। वो कठिन उर्दू और साहित्यिक भाषा की बजाय ऐसी भाषा चुनते थे जिन्हें आम श्रोता आसानी से समझ सके, जान सके और उनकी भावनाओं से मेल खा सके। इस तरह के गीत होते थे जब G.S. रावल जी किसी भी फिल्म के लिए गीत लिखते थे, क्योंकि उनके गीतों में जो भावनाएं थीं वो सीधे

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और हम बात कर रहे हैं गीतकार जीएस रावल की। श्रोताओं, जब बात होती है एक ऐसे गीतकार की जिसके गीतों में वो जादू होता है जिससे फिल्में सुपरहिट होती हैं और वो जादू श्रोताओं और फैंस के दिलों पर राज करता है, तो वाकई उन गीतों में कुछ ऐसी बात होती है जो आज भी हम सबकी जुबान पर चढ़े हुए होते हैं। श्रोताओं, संगीतकार जोड़ी सोमी कोमी और जीएस रावल का साथ कई फिल्मों में देखने को मिला। ये सहयोग उस दौर में काफी सफल रहा। मधुर संगीत और भावपूर्ण शब्दों का ये संगम श्रोताओं को खूब पसंद आया। जीएस रावल ने लड़की पसंद है जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। इन फिल्मों में जो बात थी वो शायद किसी भी फिल्म में रही होगी। इन फिल्मों के गीतों में रोमांच, मस्ती और भावनाओं का सुंदर मेल दिखाई देता है, जो जीएस रावल की गीतों की असली पहचान है।

श्रोताओं, जीएस रावल को उतनी लोकप्रियता नहीं मिली जितने कुछ बड़े नामों को मिली उनके दौर के, लेकिन उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उनके गीत आज भी रेडियो, संगीत मंचों और पुराने गीतों के कार्यक्रम में सुनाई देते हैं। उनके शब्द समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। ये किसी गीतकार की सबसे बड़ी सफलता होती है।

श्रोताओं, जी एस रावल का सबसे बड़ा सम्मान उनके गीतों की लोकप्रियता रही। उनके लिखे गीत आज भी संगीत प्रेमियों की पसंद बने हुए हैं। उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को कई ऐसे गीत दिए जो पुराने संगीत की धरोहर बन चुके हैं। तो आज सुरों के इस खूबसूरत सफर पर हमने जाना गीतकार जी एस रावल के बारे में, एक ऐसे रचनाकार के बारे में जिनके शब्दों में प्रेम, विरह और भावनाओं के संगीत को जमकर पिरोया गया था और इन्हीं संगीत के माध्यम से उन्हें अमर बना दिया। उनकी लेखनी हमें याद दिलाती है कि अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते और वो गीत आज भी हम सबकी जुबां पर होते हैं। किस तरह से उसे हमें संभालना है, किस तरह से उसे हमें संवारना है, ये सब उस विधा की बात होती है, उस संगीतकार की बात होती है, उस गीतकार की बात होती है जो गीतों को अपने शब्दों से और संगीतकार अपने संगीत से सजाता था। हमने बात की कि बहुत सारी ऐसी फिल्मों में उनका नाम नहीं जुड़ा रावल साहब का, लेकिन जिसके साथ भी उनका नाम जुड़ा, जिसके साथ उनकी पसंदीदा संगीतकार का नाम जुड़ा, वो जोड़ियां अमर हो गई। और उनकी जो फिल्म है दिल ने फरियाद किया, आबरू, ये वो फिल्में हैं जो उनके करियर में चार चांद लगाती हैं। उनके गीत आज भी, जैसा मैंने पहले बताया, रेडियो पर, सांस्कृतिक मंचों पर, संगीत के बड़े बड़े आयोजनों में उनके गीत सुनाई देते हैं। वो पुराने कार्यक्रम जो हम सुनते थे, आज भी उसी तरह से नए कार्यक्रमों में भी उनके गीत हम सुनते हैं। तो श्रोताओं, चलते चलते उन्हीं की फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सा गीत। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए AIR Live News 24/7।

0: स्वतः भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। रात के 1 बजने को है अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिक्स आज से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विशेष दूत एंड्रियास काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि वे तेलंगाना अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना के लिए प्रसिद्ध है।

0: Patriots County Ground, Taunton, England tonight. In reply, England were 53 for 3 in 6 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं और ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसमें आप सुनते हैं गोल्डन एरा के वो गाने जो आज भी आपके हमारे दिलों पर छाए हुए हैं, आज भी उनका जादू हम सबके सिर चढ़ के बोलता है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए EIR लाइव न्यूज 24/7।
2: आज की रात पीने दे साकी,

कि तेरे इश्क में दर फिरा है हमारा, तेरे इश्क में दर फिरा है हमारा, सिर्फ तू है दुनिया में कातिल हमारा।

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम गीत सुनहरे, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें

पैसे लेकर पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 4 दिन के दौरे पर भारत आ रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विशेष दूत एंड्रियाज काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि तेलंगाना अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना के लिए प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दौर में थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान को 25-23, 21-16 से हरा कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन हार कर बाहर हो गए हैं। उन्हें इंडोनेशिया के अल्बी फरहान ने सीधे गेहूं में 21-19, 21-16 से हराया। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रॉयलसीमा,

0: कॉलेज कैंप की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और प्राथमिकता के आधार पर इसे लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अगस्त्यमलाई के संरक्षित क्षेत्रों के अतिक्रमण मद्रास उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद कई दशकों से जारी हैं और लगातार बढ़ता गया है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत में 15 दिन बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में फ्रॉम एस्पिरेशन टू अचीवमेंट नामक पुस्तिका का विमोचन करेंगे। इस पुस्तिका में अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग के लिए उपक्रम, पूंजी कोष और अम्बेडकर सामाजिक नवाचार और इनक्यूबेशन मिशन के तहत प्राप्त सहायता में से सफल उद्यमियों और नवोन्वेषकों की प्रेरणादायी कहानियां हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड में खेले गए तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए थे, जिसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंदों में 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दौर में थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान को 25-23, 21-16 से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of

0: अभी आप सुन रहे थे गजल और गीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। कलाकार हैं महाराजा पूरम, संतानम, दीप्ति भाटिया और कन्ना कुमार, साथ ही कुमार देवन।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 4:20 और 55 सेकेंड होने को हैं और वक्त है कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। कर्नाटक संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उषा विजय कुमार द्वारा गाया राग चारू केशी।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे नाद ब्रह्म का कार्यक्रम वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून 2026। सुबह के 4:53 और 48 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको बताते हैं आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें।

5:20 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत, जबकि 5:30 का वक्त होगा कार्यक्रम स्वर रंजनी का।

6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जबकि अंग्रेजी में समाचार का वक्त होगा 6:05।

0: सुबह के 5 बजने को आइए सुनते हैं समाचार।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष के किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद मामलों को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और

0: नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। ये व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश आज 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने श्री खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। उद्घाटन सत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। पश्चिम बंगाल सरकार में आज से अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर चुका है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by CBSE, Central Board of Secondary Education. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12th board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission, S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE yesterday officially activated an online portal for verification of marks and evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal days after Nepalese Prime Minister Balendra Shah sought involvement of China and the UK to address the long-standing dispute. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said both sides have established bilateral mechanisms to deal with all the aspects of border matter.
0: While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments. The shifting of the course of Gandak River

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी चौखन, आपके योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम पर। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और सबसे ज्यादा

योग में शोल्डर जॉइंट के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास छोड़ते हुए यानी ब्रीथ आउट करते हुए दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब श्वास भरते हुए यानी ब्रीथ इन करते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र आकार घुमाएं। ब्रीथ इन करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। दोनों कोहनियों को चेस्ट रीजन के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर भी कोहनियों को खींच कर घुमाएं। इस प्रकार पूर्ण रूप से दोनों कोहनियों को पहले 4 से 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 4 से 5 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस योगिक क्रिया के अभ्यास में शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें होने वाले रक्त संचालन भी बढ़ता है। अगर आप यह अभ्यास प्रतिदिन मॉर्निंग में करते हैं तो आपके शोल्डर जॉइंट हेल्दी रहता है और उसमें होने वाली रुकावट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी मांसपेशियों को आप किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक सिंपल छोटी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया के साथ, जिसको हम शोल्डर मूवमेंट्स कहते हैं। तो आज के लिए हमारी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया थी शोल्डर मूवमेंट्स। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज हम करेंगे सबसे सरल व सुखद आसन ताड़ासन, जिसे कहीं भी ऑफिस में, घर में, किसी भी प्रकार के कार्यस्थल पर सावधानी से किया जा सकता है, जिसको करने से पैर के तलवे से लेकर सर की चोटी तक समस्त मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं, विशेष रूप से हमारी पसलियां एवं वेस्ट की मांसपेशियां। जानते हैं इसे करने का तरीका। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की हथेलियों को साथल से जंघा से मिलाकर रखें, धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में फंसाएं और श्वास भरते हुए सामने की ओर से ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर थोड़ा खिंचाव दें, धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं, समस्त भार अपने पैर के पंजों पर ले आए। तीन लंबे गहरे श्वास लें और प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में और ऊपर और ऊपर और ऊपर स्ट्रेच करें, खिंचाव दें। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस पुरानी स्थिति में आ जाए। दोबारा इस आसन को करने के लिए अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएं, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर ले जाएं, इस बार एड़ियों को ना उठाएं,

पूरा ऊपर की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी ओर झुकाएं। कुछ देर रुकें, श्वास भरते हुए फिर ऊपर की ओर खिंचाव दें और श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर झुकाएं। पूरे शरीर में खिंचाव अनुभव करें। श्वास भरते हुए फिर बीच में आएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं, पुरानी स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन को 2 या 3 आवृत्ति दोहराएं, रिलैक्स अनुभव करेंगे। कहीं भी इस आसन को कर सकते हैं अपने शरीर के तनाव को दूर करने के लिए, अपने को स्वस्थ अनुभव करने के लिए तनाव अथवा थकान की अवस्था में। धन्यवाद। और विशेष रूप से यह आसन बच्चों के लिए और भी ज्यादा लाभकारी है उनकी लंबाई बढ़ाने में। विशेष रूप से 25 वर्ष तक की उम्र के लोग इस आसन को रोजाना 2-3 बार करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी लंबाई भी बढ़ने की संभावना है। धन्यवाद।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत अभी आपने कंधे का मूवमेंट और ताड़ासन के बारे में जाना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए राजेश मिश्रा और गीतेश मिश्रा द्वारा गाया राग नट भैरव।